आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म तोहफा से अभी आपने गीत सुना। रास्ते चाहे जैसे भी हों, अपनी मंजिल मस्त गगन है। रास्ते चाहे जैसे भी हों, अपनी मंजिल मस्त गगन है। ना कल की फिक्र ना आज का मलाल, दिल में प्यार और होंठों पर एक तरन्नुम है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म छोटी बहन से ये गीत।

दोस्तों, जो पल हमारे पास आज हैं, उन पलों में जीना सीखिए, उन पलों का एंजॉय कीजिए, क्योंकि वो पल फिर आने वाले नहीं हैं। आइए सुनते हैं गोलमाल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत।

दोस्तों, जिन पलों के साथ हम आपस में जुड़े हुए थे वो पल भी अब जा रहे हैं, और इसी के साथ ही अब भोर सुहानी से अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 अगस्त 2026। सुबह के 5:53 और 54 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से थोड़ी ही देर में सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। 6:44 का समय रहेगा श्री रामचरित मानस गान का।

गोल्ड सुप्रभात, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 7:10 पर। आज सवेरे इस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:30। 8:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी।

दिल का मेल बॉक्स, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 10:30 पर। सुबह 11:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम तस्वीर।

3:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम मन भावन। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है।

जो अतुलनीय बल के धाम हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ सद्गुणों के भंडार हैं, जिनका शरीर सुमेरु पर्वत के समान सोने की कांति सा है, रघुनाथ प्रिय श्री हनुमान को नमन। जी हां, मंगल की इस प्रभात मंगल की मुक्ता के साथ ये है अर्पण आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। सुप्रभात।

सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति का विशेष महत्व है। महादेव की आराधना से मन का अहंकार मिटता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। संत कहते हैं कि इस महीने रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप

करने से, महादेव को जलाभिषेक करने से और भक्तिमय सात्विक दिनचर्या से आत्मशुद्धता मिलती है और जीवन में शांति आती है।

शिवत्व का अर्थ परम शून्य और आंतरिक प्रकाश है। संत गोरखनाथ भगवान शिव को आदिनाथ अर्थात सृष्टि के पहले योगी मानते हैं। उनके अनुसार महादेव परम चेतना और समाधि की अंतिम अवस्था है।

0: नहीं है दूरी प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। प्रभु से दूर बनाती तुझको तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है, भटक रहा है अंधियारे में इसे दूर जो कहता है। ज्ञान के जिसको नजर मिली वो देखे इसको अंग संग में, इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता इसके रंग में। प्रभु को जो जाने है उसकी बात को बंदे मान जरा, कहे हर देव कण कण वासी रमे राम को जान जरा। इस परमात्मा को जिसने जान लिया फिर उसे खोजने की जरूरत नहीं है, वो कण कण में मिलेगा, हर क्षण में मिलेगा। और ये भाव, ये ज्ञान का उजियारा होगा केवल और केवल अर्पण से। 6:31 और ठीक 10 सेकेंड, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: छह 6:32 और ठीक 34 सेकेंड, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं अर्पण मुक्ता के साथ। लिखा गया है, जग उजियारा हो जाएगा, मन मंदिर के दीप जलाएं।

सगल आनंद किया परमेश्वर, अपना बिरध समारिया, उतर गया सगल अंदेसा, हर हर नाम आराध्या। हे मानव, अपने मन में परमात्मा के सुंदर चरणों के प्रति प्रेम पैदा कर, ईश्वर का ध्यान कर और चिंता को छोड़ दे। परमात्मा सिमरन में सच्चा सुख है और परम शांति है।

6:44 और ठीक 36 सेकंड हो चले हैं। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर अब समय है श्री रामचरितमानस की पाठ का।

कोप भवन में बैठी रानी कैकई ने पति के कभी के दिए हुए दो वर मांगे हैं, एक भरत को राजतिलक और दूसरा राज्य और कुटुंब आदि की ओर से उदासीन विरक्त मुनियों की भांति राम का 14 वर्षों तक वन प्रवास। राजा दशरथ सहम गए हैं, सहसा कुछ कहते नहीं बना, मानो वन में बाज बटेर पर झपट पड़ा हो। कैकई ने राजा के मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को नृशंस हथनी की तरह जड़ से उखाड़ फेंका है। धर्म की धुरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धैर्य धारण कर आंखें खोली तो प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई इस प्रकार दिखाई पड़ी जैसे म्यान से निकलकर नंगी तलवार खड़ी हो। राजा ने जी कड़ा करके अत्यंत नम्रता के साथ रानी को प्रिय लगने वाली वाणी में कहा, हे प्रिय, भरत और रामचंद्र तो मेरी दो आंखें हैं, मैं सवेरे ही दूत भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा और शुभ मुहूर्त निकलवाकर सब तैयारियां करके डंके की चोट भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा गहरा प्रेम है, मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। मैं 100 बार राम की सौगंध खाकर कहता हूं, राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, अवश्य ही मैंने तुमसे पूछे बिना राम को युवराज पद देने की तैयारी कर ली थी। तुम तो स्वयं भी राम पर स्नेह रखती हो। हे प्रिय, अब हंसी और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके दूसरा वर मांग लो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का पाठ। आइए अब संस्कृत हिंदी अंग्रेजी भाषा में समाचार सुने।
1: एयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। लोकसभया सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयकं पारितम्। अनेन विधेयकेन भारतस्य प्रधान न्यायाधीशं विहाय सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या 33 इत्यतः 37 पर्यन्तं वर्धिष्यते। अस्य वर्षस्य मई मासे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अस्मिन् विषये अध्यादेशं प्रसारितवती आसीत्। केन्द्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः एतत् संशोधन विधेयकं लोकसभायां प्रस्तुतवान्। असौ अवदत् यत् एतत् न्याय व्यवस्थायां प्रवर्तमान परिष्कार प्रक्रिया दिशि महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। विपक्षदलानां विरोध कारणात् लोकसभायाः कार्यम् अशेषेऽपि दिने बहुवारं स्थगितं जातम्। कार्यारम्भानन्तरं लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला ग्लास्गो नगरे आयोजितासु त्रयोविंशतितम राष्ट्रमण्डल क्रीडासु उत्कृष्ट प्रदर्शनं कृतवतां क्रीडकानां अभिनन्दनम् अकरोत्। तदनन्तरं प्रश्नकालस्य आरम्भे विपक्षसदस्यैः छात्रान्दोलनेषु कथितस्य आरक्षकबलप्रयोगस्य विषयः उत्थापितः। अस्मिन्नेव समये सांख्यिकी कार्य क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंहः भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयकं प्रस्तुतवान्। तथा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स एविडेंस इत्येतत् विधेयकं प्रस्तुतवती। विधानसभायाः उपनिर्वाचनेषु जनसुराज दलस्य नेता प्रशांत किशोरः बिहार राज्यस्य बांकीपुर आसने विजयं प्राप्तवान्। तत्रैव गुजरात राज्यस्य मंजलपुर आसने भाजपा दलेन स्वस्थानं पुनः प्राप्तम्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च कांग्रेस दलेन विजयम् अवाप्तम्। बिहारे प्रशांत किशोरः भाजपा दलस्य प्रत्याशिनं नीरज कुमारं 24,300,000 मतैः पराजितवान्। असौ 150,000 मतानि प्राप्तवान्। गुजराते भाजपा दलस्य प्रत्याशी सतीश पटेलः कांग्रेस दलस्य भीका भाई रबारी इत्येनं 30,000 मतैः पराजितवान्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी घनश्याम सिंहः भाजपा दलस्य आशुतोष तिवारी इत्येनं 6,000 मतैः पराजित्य पुनरपि विजयं प्राप्तवान्। एतेभ्यः त्रयेभ्यः विधानसभासनेभ्यः मतदानं विगतमासस्य 30 एव सम्पन्नमासीत्। तेलंगानायाः हैदराबादस्थले अद्य ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यदलस्य सहैव सम्पत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स एक्सपोर्ट नेटवर्क इत्यस्य द्वितीयोपवेशनं प्रारप्स्यते। अस्य द्विदिवसीयोपवेशनस्य आयोजनं स्थैर्याय नवोन्मेषाय सहयोगाय निरन्तरतायै च निर्माणम् इति विषयमाधारीकृत्य क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे ब्रिक्स सदस्य देशेभ्यः वरिष्ठ नीति निर्मातारः व्यावहारिक विशेषज्ञाः सहैव भ्रष्टाचार विरोधि विधि प्रवर्तन अभिकरणानां प्रतिनिधयः अपि भागं ग्रहीष्यन्ति इति सम्भाव्यते। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः नवदिल्ल्यां उज्बेकिस्तान देशस्य विदेशमंत्रिणा बख्तियार सईदोव इत्यनेन सह वार्ताम् अकरोत्। उभाभ्यां मंत्रिभ्यां भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिक सहभागितायाः विस्तृत समीक्षा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् भारतीय क्रीडकैः ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 26,000 राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां 4th स्थापयित्वा गौरवपूर्णम् इतिहासं विरचितम्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस ली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर भी सहमत हुए। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उज्बेकिस्तान को भारत के विस्तारित पड़ोस का महत्वपूर्ण अंग बताया। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्यसमूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता उसके लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होर्मोज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमरीका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खाड़ी सहयोगी कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के आग्रह पर ईरान के खिलाफ नए बड़े हमले करने के आदेश को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। असम में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आए 7 जिलों चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाहाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर में 380 गांव जलमग्न हैं। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रिश्तों की गांठें खोलने बैठे, इतनी बातें निकल आईं कि गांठें और पक्की हो गईं। गांठ खुले नहीं तो तोड़ दें, बीती बातों पर बिंदी लगाएं और नए से शुरू कर दें। गोल्ड सुप्रभात मंगल की मुक्ता के साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

बहुत खूबसूरत समय है इस वक्त बाहर और बहुत अच्छा मौसम है। जी हाँ, बारिश तो आज होगी ही और आने वाले दिनों में भी दिख रही है दिल्ली में बारिश। आज के अधिकतम तापमान की बात करें तो तकरीबन 29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है और आज का न्यूनतम तापमान तकरीबन 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सूर्योदय हो चुका है सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त का समय है शाम 7:07 का। AQI भी बहुत बेहतर है दिल्ली का, तकरीबन 90 चल रहा है। ह्यूमिडिटी है थोड़ी सी 67% के आसपास, लेकिन जनाब इतनी फेवरेबल चीजों में अगर आप पार्क नहीं गए हैं, अगर आप वॉक नहीं कर रहे हैं, तो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खुद से मुलाकात कीजिए, अपने से मिलने का ये वक्त है।

0: जी हाँ, वक्त तो बीत जाता है, हाथ में केवल याद रह जाती है। अब इस याद को खूबसूरत बनाना है या दर्द से भरा हुआ, ये तो हमारे हाथ में है। तो चलिए अपनी यादों को खूबसूरत बनाते हैं। गोल्ड सुप्रभात करते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।
1: अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जनाब आज 4 अगस्त है और आपको पता है कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। दिल्ली हरिद्वार रूट पर भी आज से कुछ प्रबंध जो है ट्रैफिक के वो कड़े कर दिए जाएंगे। प्रशासन के अनुसार 4 अगस्त से दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे और गंग नहर रोड पर कुछ हिस्सों पर सामान्य ट्रैफिक की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा। आज से हरिद्वार और सहारनपुर से जो दिल्ली आ रहे हैं वाहन उन्हें देवबंद, मीरापुर, मवाना और मेरठ होते हुए वैकल्पिक रास्तों से डायवर्ट किया जाएगा और यही व्यवस्था दिल्ली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाने वाले वाहनों के लिए भी लागू की गई है। आप अगर हरिद्वार या देहरादून जा रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप कोशिश करें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ही उपयोग करें और इस रास्ते पर भी ट्रैफिक के प्रवाह को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि कांवड़ यात्रा के चलते अगर आप घर से इन रास्तों पर जा रहे हैं तो ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देखें। समय के साथ हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन हो, लेकिन आपकी यात्रा सुखमय बने इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सजग रहें, जानकारी अपने साथ रखें और अपनी यात्रा का पूरा लुत्फ उठाएं, भले ही वो आपकी एक मंजिल से दूसरी मंजिल की हो या फिर जीवन की यात्रा हो।

जी हाँ जनाब, चलती रहिए क्योंकि रवानगी में ताजगी बनी रहती है। जब आप रुक जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बदबू और गंदगी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। ये रवानगी बनी रहे, इसी कामना के साथ फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल सुप्रभात, और अब समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का समय है, आइए सुनते हैं।

आज का दिन रेडियो ऑन करते ही दिल में एक अजीब सी मस्ती और होठों पर मुस्कान ले आता है, क्योंकि आज जयंती है उस इंसान का जिसने हमें प्यार करना सिखाया, जिसने हमें गम में हंसना सिखाया और जो खुद में संगीत का पूरा एक समंदर है। जी हाँ, द वन एंड ओनली किशोर कुमार। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं किशोर दा के उस सदाबहार तराने के साथ जो आज भी हर दिल की धड़कन है। सुनिए और गुनगुनाइए।

0: Well, Jaya, the Indian film industry is a galaxy of superstars who sparkle with brightness, but there are very few among the lot who end up leaving an impression in our lives forever. Kishore Kumar is one such legend who is still reminisced for his multiplicity of talents, and the talents they include his a unique multiplicity of talents, images, capacities. His personality often defy the norms of conclusive evaluation. Kishore Kumar, the legend.
1: एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: तो इस बेहद खूबसूरत तराने के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो आज सवेरे। स्टूडियो में मैं हूं आपके साथ जया भारती। और श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में आज की महान विभूतियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे और सुरों के सरताज किशोर दा को उनके जयंती पर याद करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए रूबरू होते हैं देश और दुनिया की ताजातरीन हलचल से, जानते हैं आपके महानगरों की धड़कन यानी मेट्रो न्यूज, मौसम का ताजा मिजाज और आज के इतिहास के सुनहरे पन्ने। तो बने रहिए हमारे साथ, आज मेरी को होस्ट हैं शगुन चोपड़ा।
0: सो नमस्कार लिसनर्स, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, वेल अ वेरी वार्म वेलकम, एंड दिस इज इंडीड अ ग्रेट स्टार्ट टू आवर शो टुडे। आज सवेरे वेल जय टोल्ड अस देयर इज सो मच दैट वी हैव लाइंड अप फॉर यू। द हेडलाइंस मेट्रो सिटी अपडेट्स टुडे, it is 4th of august 2026 and first to begin our program we will be starting with the headlines.
2: Bilkul. ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू हो रही है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इसका उद्घाटन करेंगी। यह बैठक जून में वर्चुअल माध्यम से आयोजित पहली ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के निष्कर्षों पर आधारित है।
0: The Supreme Court has clarified that the Delhi government and various state governments are free to close or withdraw FIRs against the protesters involved in the recent student protests at Delhi's Jantar Mantar and elsewhere in the country. A three-judge bench led by Chief Justice Suryakant explained that its 28th of July order permitting the prosecution of protesters with criminal antecedents was intended to apply only to those accused of grave and heinous offences. The top court was hearing pleas alleging excessive police action against students who participated in protests at Jantar Mantar on 20th of July and at other places across the country over the NEET examination paper leak issue.
2: Sushna

0: माफी मांगने को कहा है। भाजपा सांसद ने मेटा, यूट्यूब और एक्स को अपने एल्गोरिदम और कंटेंट मॉडरेशन से संबंधित मुद्दों को ठीक से हल न करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भारत के सख्त कानूनी ढांचे के बावजूद इन प्लेटफॉर्मों ने बाल यौन शोषण सामग्री और महिलाओं को प्रभावित करने वाली सामग्री के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की है।
1: Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav has announced the designation of Glow Lake, which is in Arunachal Pradesh, as India's 101st Ramsar site. So Glow Lake will be 101st Ramsar site. This is in Arunachal Pradesh, as I told you. So in a social media post, the minister described the development as an important step for biodiversity conservation, for water and climate security, and for sustainable livelihoods. Mr. Yadav said that this pristine freshwater lake in the eastern Himalayas is a biodiversity hotspot nestled with the Kamlung Tiger Reserve and Wildlife Sanctuary. The minister said that Glow Lake is surrounded by lush vegetation with more than 150 tree species and 49 orchid species, which is recorded within the site and as well as its catchment.
0: सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने आपातकालीन चिकित्सा देखभाल में दोपहिया सड़क एम्बुलेंस शुरू करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। मंत्रालय ने प्रस्तावित एम्बुलेंस सेवा से आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया मिलने और दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल पहुंच में सुधार होने पर बल दिया। मंत्रालय ने मोटर वाहनों में वाहन से वाहन V2V संचार प्रणालियों के चरणबद्ध कार्यान्वयन में केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में भी संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसमें कहा गया है कि V2V संचार से जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी, जो अचानक ब्रेक लगाने, आगे से टक्कर का खतरा, असुरक्षित लेन परिवर्तन और आपातकालीन वाहनों के आने जाने जैसी सुरक्षा संवेदनशील स्थितियों में चालकों को प्रणालियों को अग्रिम चेतावनी प्रदान करेगी।
1: In a major push to strengthen social protection for migrant families, the Jammu and Kashmir government is integrating nearly 50,000 migrant families into the National Food Security Act, NFSA database. Founded on the government's policy framework, the exercise by the Relief and Rehabilitation Organization, in coordination with Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and the Social Welfare Department, along with Consumer Affairs actually, transitions the migrant ration card from a simple food entitlement card. So the ration card I'm talking about with the within into a simple food enlightenment card into a gateway for broader social welfare benefits. According to the spokesperson, through door-to-door outreach, e-KYC facilitation and field-level coordination, over 3,000 migrant families, they have been assisted so far.
0: तो शगुन, अब कुछ खेल के मैदान का हाल जान लेते हैं।
1: श्योर जय,
0: भारत के जो स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी है ना, आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। यह टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा और सबकी निगाहें 17 वर्ष की तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। और यह युवा भारतीय खिलाड़ी ने फाइनल में वियतनाम की गुएन थुई लिन को हराकर सुपर 300 या उससे ऊपर का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बनने का गौरव प्राप्त किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट होकर वापसी कर रहे हैं, तो भारत के पास सभी श्रेणियों में मजबूत दल है।
1: दैट इज ट्रू जया, ऑल आईज ऑन देम नाउ। सो Goa is set to strengthen its forensic science and criminal justice system with the inauguration of a forensic psychology division and an e-peshi video conferencing facility at the Directorate of Forensic Sciences in Varna. Shortly, Chief Minister Dr. Pramod Sawant will inaugurate the twin facilities. We have more details on this from our correspondent. Listen in.
2: The new Forensic Psychology Division will introduce advanced scientific tools such as polygraph examinations and the layered voice analyzer. The facility will help investigating agencies conduct evidence-based assessments within Goa, reducing dependence on laboratories outside the state and improving the speed and accuracy of criminal investigations. The directorate has also set up 5 video conferencing cubicles for e-peshi or Nyay Shruti. The facility will enable forensic experts to testify before courts virtually, saving travel time and ensuring timely expert evidence without affecting laboratory work. The initiatives are expected to modernize forensic services, strengthen scientific investigations, and support faster technology-driven justice delivery in Goa. For Art Saveri, Mahesh Sopre, Akashwani News.

0: पंछी।
1: और अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरों का, तो शुरुआत करते हैं चेन्नई से। शगुन,
2: यस जया, बिगिनिंग विद द फर्स्ट अपडेट फ्रॉम चेन्नई। सो मिशेलिन इज एक्सपैंडिंग इट्स एम्बिशंस इन इंडिया बियॉन्ड टायर मैन्युफैक्चरिंग, पोजीशनिंग द कंट्री एज अ स्ट्रेटेजिक बेस फॉर प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल सोर्सिंग एंड एक्सपोर्ट्स, एज द फ्रेंच टायर मेकर डीपन्स इट्स प्रेजेंस इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमोटिव मार्केट्स। द कंपनी ऑन मंडे रोल्ड आउट इट्स फर्स्ट लोकली मैन्युफैक्चर्ड पैसेंजर car tire, the Primacy 5, from its Chennai factory. And this marks its entry into domestic passenger vehicle tire production after a decade of manufacturing truck and base bus radial tires in India. Another update, Anna University's 4 campuses in the city have recorded 100% placement for 2025-26 academic year. So pay packages vary from 46 lakh rupees a year for courses such as electrical, industrial engineering, electronics engineering, mechanical engineering, and the highest average pay package with students getting 9.75 lakh rupees a year as the salary offers. Another update, the Central Footwear Training Institute, Chennai, has commenced admissions for its newly introduced National Council for Vocational Education and Training approved career-oriented courses aimed at creating a skilled workforce for India's rapidly expanding footwear manufacturing sector. This was all about Chennai. Over to you, Jaya.
1: And now let's talk about the national capital of Delhi. The Minister of Vastra, Giriraj Singh, has heard about the Kshetra of the Dirghakalik Vikas ko sunishchit karne ke liye pradyogiki aur parampara ke saath saath pragati par zor diya hai. Shri Singh ne kal Delhi sthit Bhartiya Pradyogiki Sansthan mein Hatkarga Pradyogiki Utkrishtata Kendra ke udghatan samaroh ko sambodhit kiya. Wahan unhone kaha ki yah kendra paramparik shilp aur aadhunik pradyogiki ke beech setu banane ka kaam karega. Yah bunkaron ki utpadakta badhane, navachar ko badhava dene aur unke utpadon ke को नए बाजारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर श्री सिंह ने हथकरघा के चौथे संस्करण हथकरघा एक्स, हथकरघा ई विद्या, कलागृह हथकरघा स्टूडियो और थ्रेड्स ऑफ वेलोर सहित 5 प्रमुख पहलों का भी शुभारंभ किया। दिल्ली से एक और खबर है हमारे पास कि दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कल उत्तरी दिल्ली स्थित नजफगढ़ नाला पर नए पैदल पुल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। यह नया फुटब्रिज गुड़मंडी, राजपुरा, रूपनगर, मुखर्जी नगर और यमुना मार्ग को आपस में जोड़ेगा। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के सभी पुल, फ्लाईओवर और फुटओवर ब्रिज का व्यापक ऑडिट करा रही है और जिससे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
2: एंड नाउ वी विल हेड टू बेंगलुरु। कर्नाटका स्टेट बायोफ्यूल डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन एस ई सुधींद्रा मेट द गवर्नर ऑफ मैरीलैंड वेस मूर इन वॉशिंगटन डीसी इन यूएस एंड हेल्ड डिस्कशन ऑन द वायबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ क्लीन एनर्जी। द डिस्कशन रिवॉल्व्ड अराउंड कोऑपरेशन इन एरियाज ऑफ बायोफ्यूल्स, कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोडीजल, ग्रीन हाइड्रोजन एंड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। एंड अ प्रेस रिलीज इश्यूड बाय द बायोफ्यूल बोर्ड इन कर्नाटका सेज दैट गवर्नर वेस मूर एक्सप्रेस कमिटमेंट टू फोर्ज अ पार्टनरशिप बिटवीन Maryland and Karnataka in the areas of clean energy.
1: अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई की जो सिविक कमिश्नर अश्विनी भिड़े हैं, उन्होंने सभी असिस्टेंट कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वे रोजाना अपने इलाकों के फुटपाथों का खुद निरीक्षण करें और अतिक्रमण रोधी उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करें। पेडेस्ट्रियन फर्स्ट कैंपेन के कार्यान्वयन पर हुई समीक्षा बैठक में सुश्री भिड़े ने कहा कि इसका मकसद मुंबई के नागरिकों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और बाधा मुक्त यात्रा सुनिश्चित करना है। कितनी अच्छी बात है ना कि ये जो फुटपाथों को अतिक्रमण से मुक्त ना केवल एक कैंपेन की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि एक प्रशासनिक जिम्मेदारी भी है, जिसका इन्होंने जिक्र किया है, कमिश्नर ने इस पर बल दिया है। अगर मुंबई से एक और खबर है हमारे पास कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल द गवर्नेंस चैलेंज के चौथे संस्करण की शुरुआत की है। इसमें भारत के 30 प्रमुख बिजनेस स्कूलों और पब्लिक पॉलिसी संस्थानों से छात्रों को ऐसे साहसिक और लागू करने योग्य समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया है जो महाराष्ट्र के इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत कर सके। इस साल की चुनौती में प्रतिभागियों को इस सवाल का जवाब देने के लिए आमंत्रित किया गया है कि महाराष्ट्र सरकार 2035 तक महाराष्ट्र को इनोवेशन हब बनाने के लिए क्या कर सकती है। इस चुनौती में 3 राउंड होंगे, कैंपस राउंड, नेशनल राउंड और समिट राउंड। शीर्ष 6 टीमों को समिट राउंड में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ कर्मचारियों और उद्योग जगत के नेताओं के सामने अपने समाधान प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। वे 9 लाख

0: के नकद पुरस्कारों के लिए भी मुकाबला करेंगे और उन्हें प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू का मौका मिलेगा। इसके बारे में अधिक जानकारी इसके आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
1: Heading now to Hyderabad, Telangana's Chief Electoral Officer C. Sudarshan Reddy has directed officials to fix errors in voter enumeration forms as part of the ongoing special intensive revision process. He asked them to correct missing photos or wrong birth dates, gender mistakes, signature errors to ensure accurate voter data. And during a video conference with additional CEO Dr. V. Venkateshwar Reddy, he reviewed polling station rationalization. He instructed officials to carefully re-examine cases of absent, shifted, dead and duplicate voters along with unmapped cases to make sure no eligible voter is wrongly removed from the list.
0: अब बात करते हैं जॉय सिटी कोलकाता की। पश्चिम बंगाल सरकार म्यूनिसिपल मंजूर प्लान का उल्लंघन करने वाले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर जुर्माना लगाने और प्लान मंजूरी के लिए नए नियम लाने जा रही है। तारातला हादसे के बाद बनी ऑडिट कमेटी के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इसकी घोषणा की। उन्होंने जोर दिया कि कंस्ट्रक्शन एजेंसियों को स्ट्रक्चरल सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और कहा कि जुर्माने की सख्ती भविष्य में होने वाले उल्लंघनों को रोकेगी। और अब बात मौसम की। राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होने की संभावना है। शहर का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से।
1: यस जया, बिगिनिंग अगेन द चेन्नई। चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस रेन और थंडर शावर्स एंड दे वुड अकर टुवर्ड्स इवनिंग और नाइट। द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन मिनिमम 26 डिग्रीज मैक्सिमम 37 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु इज फोरकास्ट टू एक्सपीरियंस अ जनरली cloudy sky with light rain. Minimum temperature will be around 22 degrees and maximum may reach 30 degrees Celsius. Hyderabad likely to see rain or thunder showers and they would occur towards afternoon or in the evening. Temperatures are expected to range from 25 degrees Celsius to 33 degrees Celsius.
0: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करने का। आज 4 अगस्त है और आज ही के दिन
1: Well, yes. In the year 1790, Jaya, U.S. Coast Guard Day is celebrated and this honors the founding of the Maritime Service and marks the creation of the Revenue Marine by Congress and Treasury Secretary Alexander Hamilton in 1790. In 1914, Britain declared war on Germany after German forces invaded Belgium, marking Britain's entry into the First World War.
0: आपने 1914 का जिक्र किया ब्रिटिश के बारे में, तो मैं बता दूं कि 1935 में आज ही के दिन ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पारित किया, जिसने भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। और 1923 में आज ही के दिन नागपुर विश्वविद्यालय ने आधिकारिक रूप से अपना शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया था। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय राष्ट्र संत तुक डोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है।
1: In 1929, the German airship Graf Zeppelin began its round-the-world journey. In 1944, Anne Frank and her family discovered by the Gestapo after spending more than 2 years in hiding during the Second World War.
0: इसके कुछ ही दिनों बाद 1956 को मुंबई के चांबे में भारत और पूरे एशिया के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा ने काम करना शुरू किया था। और 1997 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट नीलेश कुलकर्णी ने कोलंबो में श्रीलंका के विरुद्ध खेले गए टेस्ट मैच में अपनी पहली ही गेंद पर विकेट लेकर इतिहास रच दिया और वह टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली ही गेंद पर विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे। और इसके कुछ सालों बाद 2007 में आज ही के दिन अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने और के उद्देश्य से और फिनिक्स अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया था। इस मिशन का उद्देश्य था कि मंगल ग्रह की सतह पर बर्फ, जल और जीवन की संभावनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सके। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे आज के सबसे पसंदीदा और आखिरी सेगमेंट का, जिसका हमने शुरुआत में ही आपसे वादा किया था, जिसका हम जिक्र करने वाले हैं।
1: दिस इज व्हाट वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर।
0: या तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं हम

0: हमारी माटी के उस महानायक को जो माटी की खातिर जिए, जिसने आदिवासियों की अस्मिता की लड़ाई लड़ी, जिसने शोषितों और वंचितों के हक के लिए अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी। मैं बात कर रही हूं झारखंड आंदोलन के जनक, करोड़ों आदिवासियों के मसीहा और दिशोम गुरु के नाम से मशहूर बाबा शिबू सोरेन जी को। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन का जीवन संघर्षों की एक जलती हुई मशाल रहा है। जब जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों को कुचला जा रहा था, तब उन्होंने एक ऐतिहासिक जन आंदोलन की शुरुआत की। दशकों लंबे संघर्ष के बाद साल 2000 में जब बिहार से अलग होकर नए झारखंड राज्य का सपना सच हुआ, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका इसी महानायक की थी। राष्ट्र के प्रति उनकी इसी अतुलनीय सेवा को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया था। पिछले साल आज ही के दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन उनके विचार और जल, जंगल, जमीन की रक्षा का संकल्प आज भी हमारे दिलों में जिंदा है।
1: That is true. Listeners, today we are remembering Percy Shelley, English writer, considered one of the major English romantic poets. He did not achieve fame during his lifetime, but recognition of his achievements in poetry grew steadily following his death. Nonetheless, he achieved success and he's very popular and he became an important influence on subsequent generations of poets. They include Thomas Hardy as well and W.B. Yeats. And his works, among his best known works are the long poems, The Spirit of Solitude and The Mask of Anarchy and The Triumph of Life, the short poems, Ode to the West Wind, which is quite popular, and To a Skylark. I was telling you about Percy Shelley.
0: आज ही के दिन साल 2020 में भारतीय आधुनिक रंगमंच के असली वास्तुकार और पितामह इब्राहिम अलकाजी ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। पुणे महाराष्ट्र में जन्मे अलकाजी साहब भारतीय रंगमंच के प्रसिद्ध निर्देशक और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक थे। अगर आज हम नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर और रोहिणी हटगंडी जैसे दिग्गज कलाकारों के अभिनय के कायल हैं, तो इन सबको तराशने वाले जौहरी खुद इब्राहिम अलकाजी साहब ही थे। और यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वे सिर्फ एक डायरेक्टर या टीचर नहीं थे, वे अनुशासन की एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी थे। साल 1962 से 1977 तक जब वे दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD के डायरेक्टर रहे, तो उन्होंने थिएटर को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। अलकाजी साहब सिर्फ बंद थिएटर्स तक नहीं रहे, बल्कि तुगलक, आषाढ़ एक दिन और अंधा युग जैसे नाटकों को दिल्ली के ऐतिहासिक ओपन एयर स्टेज पर लाकर उन्होंने नया इतिहास रचा। और जब अंधा युग का जिक्र होता है, तो वो रोंगटे खड़े कर देने वाला संवाद जहन में आता है। कल्पना कीजिए, महाभारत के युद्ध के बाद वो भयानक सन्नाटा, चारों तरफ तबाही और खामोशी है। उस माहौल में गूंजते हैं ये शब्द, युद्धोपरांत यह कैसा अंधा युग आया, जिसमें मर्यादाएं टूट गई, विवेक हार गया, विजय जिसकी हुई वह भी अंधा था, और जो पराजित हुआ वह तो अंधा था ही।

आज जयंती है हिंदी के एक ऐसे महान लेखक, आलोचक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान का, जिन्होंने सात समंदर पार जर्मनी और हॉलैंड जैसी जगहों पर भी हिंदी की महक बिखेरी। मैं बात कर रही हूं डॉक्टर इंदु प्रकाश पांडे जी की। रायबरेली के एक छोटे से गांव से निकलकर प्रयाग विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाले इंदु प्रकाश जी ने हिंदी उपन्यासों पर ऐसा काम किया कि हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ने उन्हें डीलिट की उपाधि से नवाजा। विदेशों में रहकर भी उनके सैकड़ों लेख, कहानियां और कविताएं भारतीय संस्कृति का झंडा बुलंद करती रहीं। और आज ही जयंती है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, भारतीय सिनेमा के वर्सटाइल और जादुई फनकार किशोर कुमार की।

0: 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे आभास कुमार गांगुली कब पूरे देश के लिए प्यारे किशोरदा बन गए पता ही नहीं चला। कोई उन्हें एक्टर कहता है, कोई डायरेक्टर, कोई संगीतकार तो कोई सिंगर, लेकिन सच कहूं तो वो एक ऐसी जादूगर थे या फिर उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो जज्बात बदल देते थे।
1: टाइमलेस आइकॉन ऑफ इंडियन सिनेमा।
0: बिल्कुल। तो राजेश खन्ना के स्क्रीन पर मस्ती हो, अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन लुक हो या देवानंद का चुलबुलापन, किशोर दा की आवाज हर किसी पर बिल्कुल फिट बैठती थी।
2: मेरी टोपी पलट के आ।

0: किशोर दा जितने बेमिसाल सिंगर थे उतने ही बड़े सतरंगी और मनमौजे इंसान भी थे। तो चलिए किशोर दा के उस फनी और बेहद नटखट अंदाज को याद करते हैं और सुनते हैं ये एनर्जेटिक गाना।
1: यह कच्चा तुर

जहाँ एक तरफ किशोरदा अपनी कॉमिक टाइमिंग और मस्ती के लिए जाने जाते हैं, तो जब दिल के टूटने की हो बात या फिर गहरे इश्क की, तो किशोरदा की आवाज सीधे रूह को छू जाती है।

0: That is why he was awarded 8 times the Filmfare Award. And yes, his voice hits the mic straight at its most sensitive point.
1: बिल्कुल, तो इसी खूबसूरत से गाने के साथ अनुमति दीजिए हमें आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने के, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड.
0: नमस्कार.
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा. वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है. मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ. जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज. और अब मुख्य समाचार. संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की. एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका. ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया. और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे. और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं. सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की. बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है.
4: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए. महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है. भारत सरकार के ये नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं. इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए.
0: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी. इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है. पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था. एक रिपोर्ट.
5: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी. प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है. पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके. अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी. समाचार कक्ष से मैं चाहत.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं.
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान यह बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: Deeply appreciate that the government and people of
3: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय असैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
4: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
5: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मोज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन किया है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
6: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
7: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, क्योंकि मुख्य नदियां में पानी

0: का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य जरूरी मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कचार, डिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारून मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजर अहमदाबाद पर, भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट। डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लिमानी कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा पर नुक्ताचीनी की है और सीईओ मार्क जगरबर्ग से माफी का मुतालबा किया है। एनडीए पार्लिमानी पार्टी की हफ्तावार मंगल मिलन मीटिंग आज सुबह नई दिल्ली में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासती सरकारें हालिया एहतजाज में शामिल तलबा के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर बंद कर सकती हैं या उन्हें वापस ले सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अमरीका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका है। ईरान ने मुजाकरात की इत्तलात को गलत बताया है। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। अब खबरें तफसील से। मुआसलात और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्लिमानी कायमा कमेटी ने फेसबुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो आर्जी तौर पर हटाए जाने के मामले पर नई दिल्ली में मेटा के ओहदेदारों से बात की। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट और कमेटी के चेयरपर्सन निशिकांत दुबे ने वजीर आजम की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा इंडिया की नुक्ताचीनी की। मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए जनाब दुबे ने कहा कि कमेटी ने इस हरकत के लिए मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग से मुआफी का मुतालबा किया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो दफा 79 के तहत उन्हें हासिल कानूनी तहफ्फुज वापस लिया जाना चाहिए।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग की तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के ये नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सलाहियतें मुसलसल मेहनत, लगन और मुस्तकिल कोशिश के जरिए निखरती और परवान चढ़ती हैं। एक संस्कृत श्लोक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज मुल्क के नौजवान इन्हीं औसाफ को अपना रहे हैं और अपनी सलाहियतों के जरिए दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लिमानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है, जिसे मंगल मिलन कहा जाता है। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। गुज़श्ता मीटिंग 28 जुलाई को हुई थी। तृणमूल कांग्रेस से इलाहदा होने वाले ग्रुप नई तश्कील दी गई नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के अरकाने पार्लियामेंट में एनडीए की इस मीटिंग में शिरकत की थी। ब्रिक्स मुल्कों के बदउनवानी मुखालिफ वर्किंग ग्रुप और असासों की बाजियाबी से मुतालिक ब्रिक्स के माहिरीन के नेटवर्क की दूसरी मीटिंग आज तेलंगाना में हैदराबाद में शुरू हो रही है। अमले और तरबियत महकमे के सेक्रेटरी रचना शाह इस मीटिंग का इफ्तिताह करेंगी। जून में वर्चुअल वसीले से मुनाकिदा ब्रिक्स की बदउनवानी मुखालिफ वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग के नतीजों के तनाजुर में आगे इकदामात करने के लिए आज की ये मीटिंग हो रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: इस दो रोजा मीटिंग का अहतमाम भारत की ब्रिक्स की सदारत के खास मौजू मजबूती इख्तरा इश्तराक और पायदार निज़ाम के लिए तामीर के ऐन मुताबिक किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसमें ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों के नुमाइंदों के साथ साथ आला पॉलिसी साज अहलकार माहरीन नीज बदउनवानी की रोकथाम और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग के दौरान ब्रिक्स के मेंबर मुल्क असासों की बाजियाबी बदउनवानी से निमटने और हुक्मरानी के अमल में शफाफियत और जवाबदेही को बढ़ाने की खातिर बैनुल अक्वामी इश्तराक को मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया

0: करेगी जिसके तहत पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सके। बेंच ने मजीद कहा है कि वह पुलिस की मुबैना ज्यादतियों की तहकीकात के लिए पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक खसूसी जांच टीम SIT तश्कील देने या मुतबादिल के तौर पर एक रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम करने की तजवीज पर गौर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की मजीद समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। सड़क ट्रांसपोर्ट की वजारत ने मोटर गाड़ियों से मुतालिक मरकजी जवाबित 1979 में तरमीम के लिए एक मुसविदा नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें हंगामी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए दो पहियों वाली रोड एम्बुलेंस मुतारिफ कराने की तजवीज पेश की गई है। वजारत ने कहा है कि इस मुजवजा हंगामी एम्बुलेंस सर्विस से एमरजेंसी की सूरत में फौरी रसाई मुमकिन होगी और दूर दराज इलाकों में तिब्बी इमदाद की फराहमी को मजीद बेहतर बनाया जा सकेगा। खुराक से मुतालिक इंजिबाती इदारे FSSAI ने डाबर इंडिया को 100% दावे का इस्तेमाल करते हुए शहद, गाय का घी और खुर्दनी तेल जैसी कई अशिया फरोख्त करने से रोक दिया है और कहा है कि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भारत की फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI ने बताया कि उसने 100% का गुमराह कुन दावा करने वाली गजाई अशिया की फरोख्त के मामले पर डाबर इंडिया लिमिटेड को मुमानियत से मुतालिक हुक्म जारी किया है। इन अशिया में शहद, सेब का सिरका, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, नारियल पानी, कोकोनट मिल्क और इस तरह की दीगर अशिया शामिल हैं। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने अरुणाचल प्रदेश की गलोज झील को भारत का 101वां रामसर मकाम करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब यादव ने इस पेशरफ्त को हयातियाती तनव्वु के तहफ़ आबी वसाइल और मौसमियाती तहफ़ नीज पायदार जरिए माश के फरोग की जानिब एक अहम कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि मशरकी हिमालय में वाकई ये साफ शफाफ मीठे पानी की झील हयातियाती तनव्वु का एक अहम मरकज है और ये कमलांग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर वाकई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत और उज़्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत के दौरान अहम मादनियात, कानकनी, तिजारत, तवानाई, बुनियादी ढांचे, दिफा और तालीम के शोबों में तआवुन को मजीद मजबूत बनाकर अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद उसत देने पर इत्तेफाक किया। ये बातचीत उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार सईदोव के भारत के 4 रोजा सरकारी दौरे के दौरान हुई, जिन्होंने वज़ीर ख़ारिजा डॉ जयशंकर से मुलाकात की। उज़्बेकिस्तान के वफद का खैर मकदम करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि उज़्बेकिस्तान भारत के वसी हमसाया खित्ते का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान तवील अरसे से कायम तारीखी, सकाफती और तहजीबी ताल्लुकात को उजागर करते हुए कहा कि पिछले बरसों में बाहमी ताल्लुकात मुसलसल मजबूत हुए हैं और अब इनका दायरा तामीरात, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तवानाई, सेहत और तालीम समेत मुतअद्दी शोबों तक फैल चुका है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दोनों ममालिक अब कानकनी के शोबे, बिलखसूस अहम मादनियात और नायाब जमीनी मादनियात में बाहमी तआवुन को मजीद वसअत देने के ख्वाहां हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन $1 अरब की दो तरफा तिजारत का जिक्र करते हुए उन्होंने यकीन जाहिर किया कि आने वाले बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान इकतसादी तबादले में नुमाया इजाफा होगा। डॉक्टर जयशंकर ने 2026 में भारत की ब्रिक्स सदारत के दौरान भारत के इकदामात की हिमायत पर उज़्बेकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने 2027 से 2029 की मुद्दत के लिए गैर वाबस्ता तहरीक की सरबराही के लिए उज़्बेकिस्तान की उम्मीदवारी की हिमायत का भी इजहार किया। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में आज और कल इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसकी वजह से आसाम के कई जिले, खासतौर पर वो इलाके जो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से मुत्तसिल हैं, मुतासिर हो सकते हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मौसमियात के महकमे के मुताबिक शदीद बारिश से आसाम के कछार, दीमा हसाव, मगरबी कर्बी ओंगलांग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिले मुतासिर हो सकते हैं। IMD ने आसाम की सरहद से मुतसिल नागालैंड के कई जिलों में शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके बायस आसाम के जोरहाट और गोलाघाट अजला भी मुतासर हो सकते हैं। आसाम की कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली अथॉरिटी ने मुतालिका जिलों के लोगों से अपील की है कि वो तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और हालात पर कड़ी नजर रखें। उधर सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आने के बाद इमदादी कैंपों में

0: टीम ज्यादातर अफराद अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। ताहम शिवसागर जिले में अब भी तकरीबन 11,000 अफराद राहती कैंपों में मुकीम हैं। कल सैलाब से मजीद दो हलाकतों की इत्तला के बाद रियासत में सैलाब से हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 87 हो गई है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ओडिशा में बड़े दरियाओं और मुआविन नदियों में पानी उतरने के साथ ही सैलाब की सूरत हाल में लगातार बेहतरी आ रही है। रियासत के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने सैलाब से मुतासिरा लोगों के लिए 110 करोड़ रुपए के इब्तदाई इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल रफ्तार रफ्तार मामूल की तरफ आ रही है। हीराकुड डैम के हुकाम ने मजीद 4 फाटक बंद कर दिए हैं और अब सैलाब का पानी 13 फाटकों के जरिए रफ्तार रफ्तार छोड़ा जा रहा है। बालेश्वर, भद्रक और जासपुर जिलों में राहत बचाव और बाज आबादकारी का काम जोरों शोर से जारी है, जहां लोगों को दुश्वारियों का सामना है। सैलाब का पानी उतरने के साथ ही कई जिलों में स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। रियासत के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने हुकाम को हिदायत दी है कि वो नुकसान का शुरुआती जायजा लेने के बाद फौरी माली इमदाद फराहम करें। बुनियादी ढांचे और इमलाक को होने वाले नुकसान के तफसीली जायजे के बाद जामे पैकेज का ऐलान किया जाएगा। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: इधर केरलम में 14 में से 12 जिलों में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: केरलम में तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर रियासत के बाकिया सभी जिलों में कहीं कहीं बहुत तेज बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रियासत में 353 इमदादी कैंप काम कर रहे हैं, जहां 13,496 अफराद ने पनाह ले रखी है। बारिश से वाबस्ता वाकयात में 56 मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि कोई 500 मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। 16 अमवात की इत्तला मिली है, जबकि 5 अफराद अब भी लापता बताए गए हैं। इधर मौसमियात महकमे के मुताबिक रियासत में कल से बारिश का जोर कम होने का इम्कान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: मौसमियात के महकमे के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाज़ हिस्सों में भी औसत से लेकर तेज बारिश होने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमरीका के साथ मुआहिदा करने के लिए एक आखिरी मौका दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान पर एक मंसूबा बंद हमला उस वक्त मौखर कर दिया गया जब ईरान और खलीजी मुल्कों ने सिफारतकारी जारी रखने की अपील की। जनूबी कोरिया के शहर आसन में सरकर्दा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में आज अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। यह टूर्नामेंट इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा। सबकी निगाहें 17 साल तन्वी शर्मा पर होंगी, जो ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीतने के बाद इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
0: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा, इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने 3 रियासतों गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में हुए जिमनी चुनाव के नतायज के ऐलान को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि बिहार में बांकीपुर से प्रशांत किशोर, मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस जबकि गुजरात की मांजल सीट से बीजेपी उम्मीदवार कामयाब। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के उस बयान को सफे अव्वल पर शाया किया है कि उभरते हुए चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मजबूत दिफाई निजाम में फौजी और सिविलियन अहलकारों के दरमियान ताउन बेहद जरूरी है। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने वाले बिल को मंजूरी दी। ये बिल कानून इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था। इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
1: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामानी कमेटी ने फेसबुक से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा पर नुक्ताचीनी की है और सीईओ मार्क ज़करबर्ग से माफी का मुतालबा किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी की हफ्तावार मंगल मिलन मीटिंग आज सुबह नई दिल्ली में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासती सरकारें हालिया एहतजाज में शामिल तलबा के खिलाफ दर्ज की गई FIRs बंद कर सकती हैं या उन्हें वापस ले सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अमरीका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका है। ईरान ने मुज़ाकरात की इत्तला को गलत बताया है और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

माना कि बहुत है महफिल में तेरे चाहने वाले, माना कि बहुत है महफिल में तेरे चाहने वाले, मगर मेरे आने से पहले चेहरे पे ऐसी रौनक तो न थी। जी हाँ, ये म्यूजिकल दिल लगी है मुक्ता के साथ।

0: इस जिंदगी की पता है आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है जनाब? जब उम्र, हालात और समझ बदलने लगती है ना, तो ये जिंदगी भी एकदम अलग दिखने लगती है। तो फिर चिंता किस बात की है, मजा लीजिए इस बदलाव का। करते रहिए म्यूजिकल दिल लगी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अगर अच्छा दोस्त जीवन में है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है जनाब, लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं है तो अपने दोस्त खुद बन जाइए ना। आपको वेकेशंस पर जाना पसंद है? अगर नहीं तो जनाब इसे जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि यात्रा केवल टाइम पास नहीं है, हमारे सोचने और रहने के अंदाज को भी बदल सकती है। किसी के लिए यात्रा रूटीन लाइफ में चेंज है, किसी के लिए नॉलेज गेनर है। कारण सबके हैं, लेकिन जानते हैं मनोचिकित्सक

अनुसार यात्रा हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अचूक दवा है। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन के हालात में ट्रैवलिंग बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। हम प्रकृति के करीब होंगे, सूरज की रोशनी, ताजा हवा, नए अनुभव, नया खान पान, नया रहन सहन, ये सब हमारी सोच को पॉजिटिव करता है, डोपामाइन बढ़ाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि नई जगह पर दिमाग अलग तरह से संदेश लेता है, और ऐसे में जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं उनके बीच खुद को साबित करने का प्रेशर नहीं होता है, और ये सब सुकून भरी नींद भी देता है और एक्साइटमेंट के लेवल को भी बढ़ा देता है। तो जनाब, यात्रा अच्छी है, समय निकालिए और घूम के आइए।

0: क्या सोच रही हो?
1: अब कुछ मत सोचिए, अगर आप माउंट आबू जाना चाहते हैं तो इंदु आपको लेकर जाएंगी 11:10 पर। फिलहाल मंगल की मुक्ता को दीजिए इजाजत म्यूजिकल दिल्लगी को यहीं समाप्त करने की। हिंदी और अंग्रेजी में अब होंगे समाचार और 9:10 पर एक बार फिर आप करेंगे म्यूजिकल दिल्लगी, साथ ही होंगी आपकी इंदु। मुक्ता को दीजिए इजाजत, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों के साथ बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं, इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
0: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी, उसमें तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है कि पुलिसकर्मियों पर हमले किए गए। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के अनुरोध के बाद ये कार्रवाई टाल दी गई। श्री ट्रंप ने होर्मोज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरला, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा टूर्नामेंट में भाग नहीं ले रही हैं, इसीलिए तीसरी वरीयता प्राप्त तन्वी महिला एकल वर्ग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली भारतीय खिलाड़ी होंगी। वहीं किदांबी श्रीकांत जुलाई में कनाडा ओपन में पहले दौर में हार के बाद इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बिल्कुल सही कहा है कि आज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज एक से बढ़कर एक गाने किशोर दा के होंगे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पे। तो जिंदगी में कम न हो जोश और जुनून, इसलिए सुनते रहें मॉर्निंग एंड आफ्टरनून एफएम गोल्ड। आप सबका स्वागत है म्यूजिकल जिंदगी में। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 9:15 और ठीक 36 सेकंड। मैं आप सबको इनवाइट करना चाहती हूँ कि आइए एक से बढ़कर एक जो गाने हैं वो हर युग के हैं और हर मूड के हैं यहाँ पे हमारे पास।

और इसी स्वागत के साथ हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। और कभी कभी लगता है ये कि जो पहला प्यार होता है ना, वो सिर्फ प्यार नहीं होता बल्कि वो टीचर की तरह होता है, जो हमें सिखाता है कि हमें क्या क्या नहीं करना होता प्यार में। अच्छा लगता है जब किसी के हाथों में हम फूल देखते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब ये फूल जवान लोगों के हाथों में नजर आते हैं, तब लगता है कि हाँ भाई, प्यार पे यकीन और ज्यादा हो जाता है। कितना उम्मीद भरा होता है ना ये सब कुछ, किसी भी शहर में फूलों को बिकते हुए देखना। यही कि इस शहर में प्यार अभी तक बना हुआ है। इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बत की कहानियां, जो कहा नहीं वो सुना करो, और जो सुना नहीं वो कहा करो।

और कई बार पता है कि हम अपने आप से बच के रह जाते हैं और फिर कई बार अपने आप को अपनी अचानक सी याद आ जाती है और लगता है कि भाई क्या बंदा मस्त हुआ करता था मैं। और ऐसे में अगर कभी कभी खुद को याद कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है। म्यूजिकल दिल्ली की है ये और मैं आपको बताऊं कि आज यानी कि 4 अगस्त 1929 को जन्मे किशोर कुमार भारत के सबसे कामयाब सिंगर्स में से एक माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे किशोर कुमार ने सिर्फ 58 ईयर की जिंदगी में वो मुकाम हासिल किया जहां से वो अपनी मौत के 3 दशक के बाद भी लोगों के दिलों में बने हुए हैं। हालांकि किशोर कुमार को बॉलीवुड में ब्रेक मिलने का वाकया बड़ा दिलचस्प है, ये सब बताऊंगी मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। और इसके अलावा कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आप भी जानते हैं तो आप हमें मेल करके बता सकते हैं। कहते हैं कि किशोर ने बहुत ही डूब के जो सैड सॉन्ग्स गाए हैं उनकी बात बड़ी निराली है। तो एक गाना इसी बात पे आपके

जिंदगी के सारे एक्सप्रेशन सब मिलेंगे आपको किशोर दा की आवाज में, उनके गानों में। और इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 9:28 और ठीक 45 सेकंड। यह है म्यूजिकल दिल्लगी और मैं हूं आपके साथ। सावन का महीना है और तीज के अवसर पे होने वाली जो पतंगबाजी है उसको लेकर के चाइनीज मांझे का प्रयोग मत करिए, ऐसा बार बार कहा जा रहा है। मेट्रो में भी इसकी सूचना दी जा रही है, तो ये सब कुछ आपने भी जरूर सुना होगा। पतंग उड़ाइए बड़े शौक से, लेकिन फिर भी पतंग उड़ाने के साथ साथ जो कुछ नहीं करना और कुछ करना है, ये दोनों चीज़ें हम सबको पता होनी चाहिए। और इसी बात में मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के लाल कुआं की बात हो या फिर जामा मस्जिद के पास आप चले जाइए, यहाँ पे आपको पतंगे मिल जाएंगी बड़े आराम से। इसके अलावा सराय काले खां बांसेरा पार्क में जो पतंगबाजी होगी उसके लिए क्या आप तैयार हैं?

कसम तो हम बार बार खाते हैं और कई बार इस बात की भी खा लेते हैं कि कुछ कुछ हम ऐसा ढूंढने लगते हैं आसपास जो हमारे पास ऑलरेडी होता है। जैसे कि कभी कभी दोस्ती रिश्तेदारी में हम बदल देते हैं और रिश्तेदारी भी दोस्ती में बदल जाती है। घर में हम रेस्टोरेंट जैसे खाना खाने की उम्मीद करते हैं और जब रेस्टोरेंट के बाहर जाते हैं तब हमें लगता है कि भाई घर जैसा खाना मिल जाए तो फिर बात बन जाए। और कई बार ऐसा भी तो होता है, हाय रे कोई तो आए हमें सरप्राइज कर जाए। म्यूजिकल दिल्ली में मैं आपको सरप्राइज तो कर सकती हूँ एक से बढ़कर एक गानों के साथ। सुनते रहिए हमारे साथ।

0: और एक चीज आपके लिए है, डीओ के रेगुलर कॉलेजेस में दाखिला ना ले पाने वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी भी उनकी जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उसमें उनको पढ़ाई का चांस मिल सकता है। रेगुलर कॉलेजों की ज्यादातर सीटें भर गई हैं, तो अब आप स्टूडेंट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का विकल्प है जिसे आप चुन सकते हैं और जा सकते हैं और अपना पसंदीदा जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे लीजिए और उसके बाद फिर एक नई कहानी बनेगी आपकी जिंदगी में।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर,
8: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: '69 में एक हवा का झोंका आया, साथ में राजेश खन्ना और किशोर कुमार की आवाज दोनों एक दूसरे के लिए बन गए।

0: तो चलिया।
1: ये तो हम सबको पता चलता है कि कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो फिल्मी पर्दे पे दिखाई देती हैं, वो झूठी हैं, लेकिन फिर भी सच्ची लगती हैं। और कुछ कहानियां जो सच्ची होती हैं, वो झूठी लगती हैं। क्या करें, दिमाग तो है हमारे पास, चलता नहीं वो अलग बात है। हम बहुत स्मार्ट हैं कोई मानता नहीं, ये भी अलग बात है। लाइफ के इस दौर में जहाँ पे हम इंसान खामोश हो रहे हैं, ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा शोर है। बात कीजिए आपस में, जो आपके सामने है, जो आपके आजू बाजू में बैठा है, जो आपके पड़ोस में है, जो आपके दिल में है, क्योंकि बात से बात निकलती है और बात से बात बढ़ती है और कई बार बात से बात वहीं रुक जाती है। म्यूजिकल दिल्ली की है ये, आकाशवाणी दिल्ली।

0: चले आइए आप भी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। ये है म्यूजिकल दिल्ली और हम बता रहे हैं आपको अब जननी सुरक्षा योजना के बारे में। भारत सरकार की एक सुरक्षित मातृत्व योजना है जिसे इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है गरीब गर्भवती महिलाओं में अस्पताल में प्रसव को बढ़ावा देकर के मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना। आप इसके बारे में अधिक जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पोर्टल पर जाकर के देख सकते हैं। वो जो हमारे पास स्मार्ट सा फोन है उसका इस्तेमाल कीजिए और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम सबके लिए बनी हैं उनको देखिए।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: आपको भी ऐसा लगता है कि रात को 12 बजे नोएडा से ड्राइव करके गुड़गांव जा सकते हैं लेकिन अकेले नहीं रह सकते? अकेले होते हैं तो बड़े सारे ख्याल बेहिसाब आते हैं, एंजाइटी होती है, तो ये नॉर्मल नहीं है। इसे डिपेंडेंसी से बाहर निकलना होगा तो फिर उसके लिए डॉक्टर के पास जाइए। तन के लिए सलाह और मन के लिए भी डॉक्टर की सलाह ली जा सकती है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम उसके ऊपर खामोश रहते हैं, बोलिए, अपने आप से बोलिए और उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये सारी की सारी चीजें काफी यूजफुल हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 9:50 और ये गाना हम सबके दिलों में आज भी है और यूं ही बना रहेगा। फिल्म 1981 की सिलसिला।

वैसे ये कितना कमाल है ना कि किसी के ना रहने पे भी हम उसको महसूस करें उनके गीतों के माध्यम से। किशोर दा का जो योगदान है भारतीय संगीत में, उसको हम सलाम करते हैं और वो एक ऐसा योगदान है जो सदियों तक ऐसे ही चलता रहेगा। आने वाली हर पीढ़ी उन्हें यूं ही याद करती रहेगी और अपने हर भाव उनके साथ यूं ही गुनगुनाती रहेगी। म्यूजिकल दिल्ली आपको कैसा लगा? आप हमें मेल कर सकते हैं fmgold@gmail.com।

0: com पे और बता सकते हैं कौन सा गाना है जो आपके दिल के बहुत पास है।
1: रुकते चलते मंजिल है किसको प्यारी हो, अरे हम तो है मन के राजा।

0: हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्र अल्लाहु अकबर
0: हर हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्र अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह
0: अल्लाह अल्लाह
2: किशोर कुमार के गाने और उनकी बातें यूं ही चलती रहेंगी एफएम गोल्ड पे। कलाकार बेमिसाल राम प्रकाश वर्मा के साथ सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। ये है म्यूजिकल दिल्ली की। फिलहाल बजने वाले हैं 10। समय है यही समाचारों का। इसके बाद फिर से मैं हूँ आपके साथ यूं ही बनी हुई।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों के साथ बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने बताया कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इससे माफी मांगने

0: की मांग की है।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग की तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं, इन सारे चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही में प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है कि पुलिसकर्मियों पर हमले किए गए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन संसद भवन में हो रही है। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी, उसमें तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स और पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन में हिस्सा लिया। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान में परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करने को दूसरा चरण बताया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। और खेलों में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। यह 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और उन्नति हुडा टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही है, इसलिए तीसरी वरीयता प्राप्त तन्वी महिला एकल वर्ग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली भारतीय खिलाड़ी होंगी। किदांबी श्रीकांत जुलाई में कनाडा ओपन में पहले दौर में हार के बाद प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The National Democratic Alliance Parliamentary Party's weekly strategy meeting, known as Mangal Milan, is underway at the Parliament House. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ एस जयशंकर एंड अदर लीडर्स आर अटेंडिंग द मीटिंग. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 28th of July. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India,

0: 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। और अब समाचार विस्तार से। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं, इन सारे चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
0: भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर भी सहमत हुए। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदौव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान यह बैठक हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उज्बेकिस्तान को भारत के विस्तारित पड़ोस का महत्वपूर्ण अंग बताया। लगभग $1 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का जिक्र करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
0: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज से हैदराबाद में शुरू हो रही है। 2 दिवसीय बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण के अनुरूप आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास समझौता करने का अंतिम मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के अनुरोध के बाद यह कार्रवाई टाल दी गई। श्री ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि ईरान अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है, इसका हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने से कोई संबंध नहीं है। विश्व दर्पण के लिए मैं चाहत।
0: गाजा में युद्ध के बाद के बदलाव की देखरेख करने वाले बोर्ड ऑफ पीस के एक अधिकारी ने कल इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। एक बयान के अनुसार इस मुलाकात का एक मुख्य उद्देश्य हमास के साथ हुए नए निरस्त्रीकरण समझौते पर चर्चा करना था। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि गाजा के उच्च प्रतिनिधि निकोले म्लोदिनोव ने प्रधानमंत्री और उनकी टीम के साथ रचनात्मक और विस्तृत बातचीत की। बयान में यह भी कहा गया है कि लक्ष्य स्पष्ट है और इस पर कोई संदेह नहीं है कि गाजा पट्टी में हथियारों का पूर्ण निरस्त्रीकरण और बंदूक के शासन का अंत होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार देर रात इस समझौते की घोषणा की, जो पिछले साल हुए व्यापक युद्ध विराम समझौते का हिस्सा है। इसमें इसराइल से अपने सैन्य अभियान रोकने और गजा में हमास और उसके सहयोगियों से सभी प्रकार के उग्रवादी गतिविधियों को बंद करने का आह्वान किया गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले 25 अमरीकी राज्यों के समूह ने भारत सहित 60 देशों पर नए शुल्क लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इन राज्यों का तर्क है कि इस शुल्क से अमरीकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए लागत बढ़ जाएगी। 10-12% तक ये शुल्क 24 जुलाई को पिछले वैश्विक शुल्क की समय सीमा समाप्त होने के बाद लागू किए गए थे। श्री ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि नए उपायों का उद्देश्य वैश्विक व्यापार में जबरन श्रम से निपटना है। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स और अन्य राज्य नेताओं ने अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय से इन शुल्क को अवैध घोषित करने का अनुरोध किया है। उनका दावा है कि प्रशासन जबरन श्रम संबंधी चिंताओं को बहाना बनाकर व्यापक शुल्क लगा रहा है, जो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। भारत ने अपनी व्यापार नीति में संशोधन करके जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। रोम में रूस के दूतावास ने कल मॉस्को के एक रेस्टोरेंट में हुए घातक बम विस्फोट के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराया है और इसे रूस में तालवी समुदाय को डराने का प्रयास बताया। दूतावास ने कहा है कि शनिवार रात रेस्टोरेंट पर हुए हमले में 5 लोग मारे गए और 19 घायल हो गए। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानिन ने इस बम विस्फोट को एक क्रूर आतंकवादी कृत्य बताया। यूक्रेन के अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई। यूक्रेन द्वारा रूस के कई क्षेत्रों में सैन्य, ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए व्यापक ड्रोन हमले में 8 लोग मारे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उसकी सेनाओं ने एंगल्स में एक सैन्य हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जहां लंबी दूरी के रूसी बम वर्षक विमान रखे जाते हैं। इथियोपिया के अमहारा क्षेत्र में तेज बारिश के कारण भूस्खलन में 14 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। बचाव दल खोजबीन में लगे हैं और कई अन्य अभी भी लापता हैं। स्थानीय आपदा निवारण कार्यालय के विशेषज्ञों की टीम को खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए तैनात किया गया है। यह आपदा सातकाने देबरे मितमाक सेंट मैरी मठ में हुई, जहां सैकड़ों श्रद्धालु पवित्र जल अनुष्ठान के लिए एकत्रित हुए थे। समारोह के दौरान पास के पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी गिर गए। 11 पीड़ितों को मठ में ही दफना दिया गया है, जबकि अन्य को उनके गृह नगर ले जाया गया है। कुछ शवों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। घायलों को लगभग 70 किलोमीटर दूर देबरे ब्रहान के अस्पतालों में ले जाया गया है। मूसलाधार बारिश और जलवायु संबंधी चरम मौसम के कारण बरसात के मौसम में इथियोपिया में भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाल के वर्षों में इसी तरह की आपदाओं में सैकड़ों लोगों की जान गई है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट होकर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नेपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। महिला युगल में सोनाली सिंह और ऋतिका ठाकर के साथ प्रिया कोंजिंगबाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग। भारत और उज्बेकिस्तान महत्वपूर्ण खनिजों और क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ उज्बेकिस्तान के दृढ़ रुख की सराहना की। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से हैदराबाद में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौते का अंतिम मौका। ईरान का बातचीत की खबरों का खंडन। और भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good morning. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with World News. The headlines. Parliamentary committee criticizes Meta over removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook, seeks apology from CEO Mark Zuckerberg. India and Uzbekistan agree to expand strategic partnership in critical minerals and mining. External Affairs Minister S. Jayashankar also appreciates Tashkent's firm stand against terrorism. Second BRICS Anti-Corruption Working Group meeting to begin in Hyderabad today. US President Donald Trump warns Iran

लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल का मेल बॉक्स में आपकी चॉइस के साथ आपका नाम आता है ना, और बड़े सारे जो सॉन्ग चॉइसेस हैं उनके साथ सलीम अख्तर, रेशमा बेगम अलीगढ़ से बहुत सारे गाने ये अपने भेजते हैं, मुझे अच्छा लगता है। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा भूमिका हैं, और इसके अलावा जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना, सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप है। और कहते हैं कि खुलूस आदाब है, नमस्कार है, ट्रिब्यूट देना चाहते हैं किशोर कुमार को, और इनका नाम है डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव और डॉली बेबी पूजा, राधिका प्रभा देवी, पोता भी है इनका मास्टर अल कबीर। आप सबकी

हमारे पास कई ऐसे मैसेजेस आते हैं, वो पूछते हैं कि कुछ और तो बताइए। तो बताना ये है कि दिल का मेल बॉक्स रिक्वेस्ट बेस्ड हमारा शो है, fmgold@gmail.com पे आप अपनी चॉइस का जो गाना है वो भेजिए। उसके साथ अगर कोई आपकी कोई फीलिंग है, मतलब क्यों आपको वो गाना अच्छा लगता है, वो भी बता दीजिए। अगर थोड़ा सा ये भी बता दें कि कहाँ से बोल रहे हैं तो और अच्छा होगा। जैसे कि बोलते हैं बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से कि मैडम जी गुड मॉर्निंग, किसी भी रोमांटिक गाने में हमारा नाम ले लीजिए। देखिए क्लियर कट, ये बिल्कुल आपने में मतलब सटीक है। और ये कहते हैं तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य, मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रुचिता खुराना, केशु, रिधान खुराना, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से नमस्कार कहते हैं ये खोरवाल फैमिली पूरी की पूरी, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, ये सब लोग हैं इस वक्त हमारे साथ दिल का मेल बॉक्स में। आप सबका स्वागत है।

0: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
1: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
0: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
1: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

इसे कहते हैं माहौल बनाना। दिल का मेल बॉक्स है ये और फिल्म का नाम है आग गले लग जा और पसंद करने वाले हैं संदीप मकर, ज्योति मन्नत, भारत कमल और ये है पिंगला वाला चौक से जलंधर, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना। और कहते हैं कि हमें तो आप किसी भी गीत में शामिल कीजिए और अच्छे गीत सुनवाइए। देखिए सारे गाने सब के सब आपके हैं और सारी की सारी चॉइसेस भी आपकी हैं। जय जैनेन्द्र श्रोता संघ परस परभणी महाराष्ट्र से रूपेश, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा संघई परिवार है। गांव टोरोवाल नवाशहर पंजाब से है। गगन है, तृप्ता है, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका और वाणी है और कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु भी हैं। कहते हैं भाई देखिए आपकी फिल्म जो आपने बोली है आराधना वो मैंने आपको सुनवाया था, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, एक से बढ़कर एक अनमोल जो नगमे हैं किशोरदा की आवाज में वो सब के सब यहाँ पे आते रहेंगे और आपकी चॉइस जो है जितनी भी आपने लिखी है ना वो सब है हमारे पास, वो सब प्ले हो रही है। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू। और इसके बाद बारी है भावी निमगांव शेव गांव से श्री राम, उषा, कोपरगांव से सुरेश, वर्षा। और ये रहा आपका गाना।

जहाँ दिल का मेल बॉक्स है वहाँ पे कुछ नाम तो बिल्कुल पक्के हैं, जैसे कि अब्बासी परिवार। भाई अब्बासी परिवार जी, आप ना 10:50 पे हमें करते हैं अपनी चॉइस वाला मेल और फिर बोलते हैं इंदु जी ठीक नहीं है, आपका ध्यान किधर है। देखिए, मैं तो बहुत सारे हमारे ऐसे श्रोता हैं, जब मैं 10:30 पे यहाँ पे शुरू हो जाती हूँ दिल का मेल बॉक्स लेकर के, तो उनकी चॉइसेस ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी होती हैं। वेल, फिर भी बहुत सारे हमारे पास मेल हैं, हमारे पास समय कम है, लेकिन मैं नाम ले देती हूँ। जय है, कुणाल सिंह है, उग्रसेन यादव है, सुरेश चौरसिया है, और उसके बाद जय जो है इनकी 5-6 मेल हैं, दीपक परिहार हैं, अफरोज शेख हैं, संदीप मकर हैं, बबलेश पवार हैं, जॉन डी कैस्ट्रो भी हैं उनके साथ, रोजी पर विलिस डी कैस्ट्रो हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबके मेल के लिए। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए दिल का मेल बॉक्स आपकी चॉइसेस के साथ।

और ये रास्ता इतना खूबसूरत है और इतने प्यार से बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। दिल का मेल बॉक्स आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। और अभी तो समय है ये समाचारों का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। इस बीच राज्यसभा में आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया। आज सुबह नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष ने उन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में

0: भाग नहीं लिया जो दोनों सदनों में नागरिकों के हित में सफलतापूर्वक पारित हुए। श्री पात्रा ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस ने उनके समर्थन में एक शब्द भी नहीं कहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई अन्य नेता भी मौजूद थे। ये बैठक संसद सत्र के दौरान प्रत्येक मंगलवार को आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। इसमें तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी बैठक में शामिल थे। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों के साथ बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने बताया कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं, इन सारे चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी।
0: ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू हो रही है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इसका उद्घाटन करेंगी। इस बैठक में संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श होगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरुणाचल प्रदेश की ग्लो झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती पेश करेंगे। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, known as Mangal Milan, was held at the Parliament House today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and other leaders were present at the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 28th of July. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India, also attended the alliance meeting. Lok Sabha is scheduled to take up the Bankers Books Evidence Bill 2026 today. Finance Minister Nirmala Sitharaman is likely to move the bill to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. The Finance Minister is also scheduled to introduce the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 and the Appropriation Bill 2026 in the lower house today. Meanwhile, Rajya Sabha is scheduled to take up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 today. Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. BJP today accused the Congress and other opposition of disrupting the proceedings of the monsoon session of Parliament. Briefing the media in New Delhi this morning, BJP national spokesperson Sambit Patra alleged the Congress and its alliance of creating a ruckus during question hour and 0 hours. He further claimed that the opposition had not participated in discussions on important bills which passed successfully in the houses for the benefit of citizens. He also accused the opposition of hurting the sentiments of Hindu and Hindu saints through its protest at the Makar Dwar in the Parliament. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him.
1: ये माफी नामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस लेना चाहिए.
2: The second meeting of the BRICS Anti-Corruption Working Group and the BRICS Expert Network on Asset Recovery will begin in Hyderabad, Telangana today. The two-day meeting is being organized in line with the theme of India's BRICS presidency, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. India and Uzbekistan have agreed to expand their strategic partnership by strengthening cooperation in critical minerals, mining, trade, energy, infrastructure, defense and education during high-level talks held in New Delhi yesterday. The discussions took place during the four-day official visit of Uzbekistan's Foreign Minister Bakhtiyor Saidov, who met External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall in Meghalaya and Arunachal Pradesh today and tomorrow. The weather system is likely to impact several districts of Assam, particularly those bordering the two neighbouring states. The Assam State Disaster Management Authority has urged people in the concerned districts to take all necessary precautions and remain vigilant. U.S. President Donald Trump said Iran has been given a last chance to reach an agreement with Washington, claiming that a planned military strike was paused after Iran and several Gulf countries urged diplomacy. Trump also said discussions were underway to reopen the Strait of Hormuz completely, possibly by tomorrow. However, Iran's foreign ministry spokesperson Ismail Baghaei denied reports of direct or indirect negotiations with the U.S., saying Tehran was not holding talks with Washington. And India's badminton stars will begin their campaign today at the Korea Masters 2026, a BWF Super 300 tournament beginning today in South Korea. The tournament will run until the 9th of this month. All eyes will be on 17-year-old Tanvi, who enters the tournament after winning her first BWF World Tour title at the Taipei Open last Sunday. And that is the end of this news bulletin.

एक बात तो बिल्कुल पक्के तौर पे तय है और वो ये कि जिंदगी एक यात्रा है और हम सब यात्री हैं, और उस यात्रा में अगर हम कोई और भी यात्रा कर लें तो भला उससे अच्छी चीज कोई हो सकती है? नहीं ना। आप सबका स्वागत है तस्वीर में, और आज हम तस्वीर लेकर के आए हैं माउंट आबू की। अरावली की गोद में बसा माउंट आबू है, जहां पे आप जाएंगे तो फिर हरियाली की चादर पाएंगे। नक्की झील की शांत लहरें सुकून तो देती हैं, लेकिन ये भी कहती हैं आइए, सबका जुनून बढ़ा देती है। गुरु शिखर की ऊंची चोटी, ऐसा लगता है कि जैसे आसमान छू रही हो। सूरज ढलते रंग बिखेरे और हर कोई देखना चाहता है उसको। प्रकृति का ये सुंदर गिफ्ट हम सबके लिए है। माउंट आबू की शीतल वादियां जीवन में एकदम खुशियों की तरह होती हैं। तो चलिए बैग पैक कीजिए, माउंट आबू की तस्वीर हम दिखाते हैं आपको।

लंबे रास्तों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे साथ चलने वाले कई लोग मुझे मिल जाएंगे। तो चलिए तस्वीर में माउंट आबू। माउंट आबू में है बहुत कुछ। माउंट आबू राजस्थान का सबसे प्यारा हिल स्टेशन है। राजस्थान के सूखे रेगिस्तान में माउंट आबू एक ताजा हवा की तरह है। अरावली की पहाड़ियों की सबसे अधिक ऊंचाई पर माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। महाराजाओं के शासन के वक्त शाही परिवारों के लिए छुट्टी बिताने का सबसे फेवरेट प्लेस हुआ करता था। और यहां पर बने विशाल बड़े बड़े घर, ब्रिटिश स्टाइल के बंगले, हॉलिडे लॉज, सब कुछ अनोखा अंदाज बताते हैं। और उसके बाद ये गाना

और पता है जिसने एक बार ये कसम खा ली कि हमें तो भाई घूमना है और हर बार किसी नई जगह पे जाना है, तो उनके लिए किसी चीज की कमी नहीं होती, वो ढूंढ लेते हैं। तो आज हम तस्वीर में लेकर के आए हैं आपके लिए माउंट आबू। नेचुरल जो ब्यूटी होती है उससे ये भरपूर है। इस हिल स्टेशन में बड़े सारे आपको हरे जंगल, झरने और झीलें मिल जाएंगी, और इसके अलावा कुछ ऐसी प्रजाति के पौधे मिलेंगे जो हो सकता है कि जिनको देखने के बाद आप कहें कि भाई ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। आप शायद हैरान भी हो सकते हैं। माउंट आबू में एक जंगल भी है जिसमें कई तरह के जानवर भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कई सारे धार्मिक स्मारकों के लिए भी ये बहुत फेमस है, जैसे कि दिलवाड़ा के मंदिर, ब्रह्म आश्रम, गुरु शिखर और जैन तीर्थ मुख्य रूप से हैं। और इसके साथ साथ माउंट आबू की जो ब्यूटी है, माउंट आबू के बारे में जो भी वहां से होके आता है, वो हमेशा एक दूसरे को यही इंस्पायर करता है कि भाई आप भी माउंट आबू होकर के आइए, क्योंकि वहां का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है। गर्मियों में ठंडे मौसम की वजह से काफी फेमस है ये जगह माउंट आबू।

क्या आप जानते हैं कि जब आप माउंट अबू पहुंचेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपका कोई एक सुंदर सा सपना है जो सच हो गया है। सच्ची माउंट अबू ऐसी ही आपको फीलिंग देगा। और यहाँ पे जब आप नकी लेक देखेंगे, जो बहुत ही शांत है, बहुत ही सुंदर है, बोटिंग करेंगे, शाम को सैर पे जाएंगे, तो आपको और अच्छा लगेगा। फिर जाइए दिलवाड़े टेम्पल, जो कि विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर है, संगमरमर की अद्भुत नक्काशी के लिए जाना जाता है। और फिर गुरु शिखर, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, यहां से आसपास का जो शानदार नजारा है उसको देखना और उसको अपने कैमरे में, मोबाइल में नहीं, कैमरे में जरूर लीजिएगा। और फिर सनसेट पॉइंट है, जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे। और अगर हम बात करें मौसम की, तो अक्टूबर से मार्च तक यहाँ का मौसम बहुत सुहाना रहता है। अप्रैल से जून तक गर्मियों में भी राजस्थान के दूसरे शहरों की तुलना में ये बहुत ठंडा है। जुलाई से सितंबर मानसून में हरियाली और नेचुरल ब्यूटी बड़े आराम से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कैसे जाएं ये तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मन बनाइए, प्लान कीजिए। और फिर अगर आप अकेले हैं तो इस बात का इंतजार बिल्कुल ना करें कि कोई मिल जाए तब जाएं, बस निकल पड़िए।

जाइए माउंट आबू। सबसे पास का जो रेलवे स्टेशन है वो आबू रोड रेलवे स्टेशन है, जो माउंट आबू से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पे है। राजस्थान और गुजरात के प्रमुख शहरों से अच्छी सड़क सुविधा आपको मिल जाएगी। अगर आप जाना चाहते हैं हवाई जहाज से, तो फिर सबसे पास का जो हवाई अड्डा है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर, वहां से। और उसके बाद वो नज़ारा देखिए, थोड़ी सी शॉपिंग कीजिए, वहां का खाना खाइए, और उसके बाद आप मुझे कह सकते हैं कि तस्वीर माउंट आबू की सच में खूबसूरत है। और नक्की झील के आसपास बड़े आराम से सिर्फ और सिर्फ टहलिए, अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो ख्यालों में आ रही हैं।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
3: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
2: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
3: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

इसी बात पे हम आपसे कहेंगे और साथ ही चल माउंट आबू। माउंट आबू में बड़ी सारी चीजें हैं, मैंने आपको बताया दिलवाड़ा जैन मंदिर है, गुरु शिखर है, गोमुख है, अर्बुदा देवी मंदिर है, टॉड रॉक है, रघुनाथ मंदिर है, यूनिवर्सल पीस हॉल है, अचलगढ़ का किला है, सनसेट पॉइंट है। लेकिन पता है कई बार हम, मतलब ये मेरा अपना अनुभव है कि हम बहुत सारी चीजें देखने के चक्कर में ऐसा लगता है कि कहीं गए हैं और दौड़ते दौड़ते थोड़ा थक जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जहां हम गए हैं वहीं के होके थोड़े दिन रहें और उसको महसूस करें, उस जगह को ऐसा करके देखिएगा, तब आपको लगेगा कि शायद वो जगह बड़े अच्छे से आपने महसूस की, देखी और उसको समझा है। यह है तस्वीर माउंट आबू।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

फिर इस दिल को मनाइए और इस दिल को कहिए कि देखिए जितना जरूरी घर है उतना ही जरूरी है इस घर से बाहर निकलना और इस दुनिया को देखना। अब माउंट आबू आए हैं तो दाल बाटी चूरमा तो जरूर खाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे ना आपको वड़ा पाव बहुत अच्छा मिलेगा, ठंडी हवा चल रही हो, लच्छा रबड़ी का स्वाद आपके पास हो, हाथ में गर्म चाय हो, और क्या चाहिए भला, बहुत है इतना।

0: क्योंकि ये तस्वीर है माउंट आबू की। अब हम तो चले घूमने। आप सुनिए समाचार 12 बजने वाले हैं, लेकिन घूमने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हैप्पी यात्रा आपकी। आज की
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की बैठक दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा दिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही, चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
3: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस बीच राज्यसभा में आज जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओकावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। महिला डबल्स में प्रिया कोनजेंगबाम और श्रुति मिश्रा तथा पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय आज कोर्ट में उतरेंगे। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. The Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. and the Rajya Sabha till 12 noon following repeated disruption by opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest over NEET paper leak issue. When the Lok Sabha began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. The opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah on alleged police action during students' protests. Mr. Birla urged all members to cooperate in running the House, saying that disruption during question hour is not appropriate. As the pandemonium continued, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. The Rajya Sabha has also been adjourned till 12 noon over the same issue. When the House assembled at 11 a.m., the ministers laid papers on the table of the House. The report of the department-related parliamentary standing committee on housing and urban affairs was tabled. Then Chairman C.P. Radhakrishnan took up the zero hour amid opposition uproar. Leader of opposition Mallikarjun Kharge raised the matter of alleged theft of donations from the Ayodhya Ram temple. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the Congress and Samajwadi Party, which opposed the Ram Temple in Ayodhya, are now attempting to mislead the public by staging a drama regarding the alleged theft of donations. Mr. Rijiju said the House belongs to everyone and the main opposition party, Congress, is misusing the time allotted to them. The opposition members came to the well demanding a reply from Union Home Minister Amit Shah on alleged police action against students. As the ruckus continued, the chairman adjourned the House till 12 noon. The National Democratic Alliance, NDA, parliamentary party is weak.

आंगन। लेकर ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है घर आंगन। और आज के अंक में आपके साथ है आपकी रेडियो सखी कल्पना। तो स्वीकार कीजिए सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल यानी कि मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। और आज है मंगलवार, सावन के महीने का जो प्रत्येक मंगलवार होता है वो जाना जाता है मंगला गौरी व्रत के लिए। और आज हमारी बहुत सी सखियां हैं जिन्होंने

व्रत रखा होगा, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अलावा विज्ञान भी ये मानता है कि भाई उपवास जो है वो तन और मन दोनों को शुद्ध करता है। तो इसी पर एक दोहा याद आता है मुझे, सुनिएगा, कि रूप राशि की प्रभा से मन नहीं होत पवित्र, जितना सुंदर चित्त हो उतना सुंदर चित्र। और इसी बात से संबंधित है हमारा आज का प्रश्न भी, क्योंकि हम हमेशा आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न वो ये है कि जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो मन शांत करने के लिए आप क्या करते हैं? अपने जवाब, अपने उपाय हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो हमें आपके उत्तरों की, आपके जवाब की प्रतीक्षा है। और फिलहाल तब तक सुनिए ये खूबसूरत सा प्यारा सा गीत।

दोस्तों, ये खूबसूरत सा जो गीत आप सुन रहे थे, इस फिल्म का नाम एक बार मुस्कुरा दो, जिसे गाया मुकेश और आशा भोसले जी ने। और देखिए, हम किसी का दिल नहीं तोड़ते बल्कि हम दिलों को जोड़ने की बात करते हैं। मुझे एक शेर याद आता है कि जो अपनी ज़िंदगी दुनिया के नाम करता है, उसी का सारा जहां एहतराम करता है। तो आज है दिन विशेष में खास बातें आपके लिए। तो आज है जयंती भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता, समाज सुधारक और प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं में से एक, फिरोज शाह मेहता की। वे भारत के अग्रणी राष्ट्रवादी नेता, प्रख्यात विधिवेत्ता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक नेता।

में से एक थे जिन्हें बॉम्बे का शेर नाम से जाना जाता है। आज उनकी जयंती पर हम अपनी पूरी टीम की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें शत शत नमन करते हैं। साथ ही साथ आज एक और महान गायक की जयंती है जो हम सबके पसंदीदा है और जिनका नाम है किशोर कुमार। ये भारतीय सिनेमा के महान पार्श्व गायक, अभिनेता, संगीतकार, निर्माता और निर्देशक थे। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और सदाबहार गीतों के लिए वे आज भी करोड़ों लोगों के प्रिय बने हुए हैं। फिल्म फेयर जो कि सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार मिला उन्हें, पुरुष के उसमें जो पुरुषों वाला कैटेगरी होता है उसमें, तो 8 बार उन्होंने ये पुरस्कार जीता था और ये भी एक रिकॉर्ड रहा। और क्योंकि उनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था, इसलिए जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने उनके सम्मान में किशोर कुमार पुरस्कार की स्थापना की। तो आइए हम भी उन्हें स्मरण करते हैं और उनके ही गाए हुए इस गीत को सुनते हैं फिल्म बुढ़ा मिल गया से।

और दोस्तों देखिए, हमारा एक प्रश्न था हमारे श्रोताओं से कि भाई जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप अपना गुस्सा शांत करने के लिए क्या करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स आए हुए हैं, तो चलिए मैं पहला ईमेल जो हमारे पास आया है बुशरा रेहान का, वो लिखती हैं कि गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड कल्पना, जैसा कि आज का प्रश्न है, जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मुझे क्या होता है कि माइल्ड एंड फेवरेट म्यूजिक सुनना पसंद है। अच्छा, इन्हें गाने सुनना पसंद है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको हम अच्छे अच्छे गाने सुनवाएंगे अपने कार्यक्रम में। नवीन भाटिया जी हैं, वो लिखते हैं, ये तो हमारे रेगुलर श्रोता हैं और हमें नियमित इनके

मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं, लिखते हैं कि पानी पी के एकांत में चले जाते हैं। नवीन कुमार जी और हैं, वो लिखते हैं कि मैं नवीन कुमार, मेरा मानना है कि गुस्सा किसी समस्या का समाधान नहीं होता, इसलिए जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं कुछ पल शांत रहता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ, पानी पीता हूँ और प्रतिक्रिया देने से पहले बहुत बार सोचता हूँ, इससे मेरा मन शांत होता है। अनुपम जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो लिखते हैं कि कल्पना जी नमस्कार, जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं कुछ देर शांत रहता हूँ, गहरी सांस लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि तुरंत कोई प्रतिक्रिया न दूँ, से जब मन धीरे धीरे शांत हो जाता है तो बात भी नहीं बिगड़ती है। और चरण दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लिखते हैं कि क्रोध में मनुष्य अपना ही नुकसान करता है, मैं तो रेडियो सुनता हूँ और अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं बाद में पछतावा कर लेता हूँ। प्रेमलता सोनी है हमारे साथ, वो लिख रही हैं कि हम एक गिलास पानी पीते हैं और उस स्थान को छोड़कर कहीं चले जाते हैं जहां हमें सुकून मिलता है। क्या बात कही है। ऐसे ही हमारे एक श्रोता हैं अफरोज शेख, वो बिहार से लिखते हैं, मुझे गुस्सा आता है तो मैं घर से बाहर चला जाता हूँ, ये तो अच्छी बात है। ऐसे ही स्मिता पांडे हमें लिखती हैं कि शानदार जानदार प्रोग्राम और आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन आपको हमें ये भी लिखना है कि भाई आपको गुस्सा आता है तो आप उसको कैसे शांत करती हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और ईमेल आया है, नाम है अस्मिता, वो लिखती हैं कि मैं तो भगवान का नाम लेती हूँ और थोड़ी देर चुप रहती हूँ, इससे मेरा मन शांत हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि बुशरा रेहान जी ने लिखा था कि भाई उनको मन जब शांत करना होता है तो वो गाना सुनती है, तो ये वाला जो गीत है ना, ये हमारे सभी श्रोताओं के लिए ताकि उनका मन शांत हो जाए।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे, बहुत प्यारा सा गीत कि भई यूं ही तुम मुझसे बात करती हो सच्चा झूठा फिल्म से, और जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो कई बार हमारी मुलाकात हो जाती है कांवड़ियों से, क्योंकि वो गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए जा रहे होते हैं। तो मुझे बस दो पंक्तियाँ याद आती हैं कि गंगा जल की कांवड़ हाथों में भोले का नाम जपते हैं, राहें कितनी भी कठिन क्यों ना हो कांवड़िए हर हाल में हंसते हैं। और सावन का जो महीना है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हम सभी करते हैं, और उनमें से कांवड़ यात्रा है। तो सावन की ऐसी कई कांवड़ यात्राएं चर्चा में हैं, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे अपने कार्यक्रम में। तो सबसे पहले बात करते हैं जिस कांवड़ यात्रा ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा है, वो है महिला कांवड़ यात्रा। देश के कई राज्यों में बड़ी संख्या में महिलाएं समूह बनाकर कांवड़ यात्रा कर रही हैं और नारी शक्ति का संदेश भी दे रही हैं। इसके साथ ही कई दिव्यांग श्रद्धालुओं ने व्हील चेयर, वैसाखियों या फिर कृत्रिम अंगों के सहारे यात्रा पूरी कर ये संदेश दिया कि भाई दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। इसके साथ हम बात करें तो पर्यावरण मित्र कांवड़ यात्रा को हम कैसे भूल सकते हैं। अनेक कांवड़ियों ने प्लास्टिक का उपयोग न करने, कपड़े के थैले अपनाने और यात्रा मार्ग पर पौधरोपण व स्वच्छता अभियान चलाने का संकल्प भी लिया है। इसके साथ ही हमारे जो कुछ कांवड़िए हैं, उन्होंने बताया क्या क्या है। उन्होंने रक्तदान और सेवा कांवड़ यात्राएं भी करनी शुरू की हैं, जहां पर कई शिवभक्तों ने कांवड़ यात्रा के दौरान रक्तदान शिविर, निःशुल्क जल सेवा, चिकित्सा सहायता और भंडारों का भी आयोजन कर सेवा को ही शिव भक्ति बताया है। इसके साथ ही कुछ युवा जो हैं, वो युवा जागरूकता कांवड़ यात्राएं भी कर रहे हैं, जहां कांवड़ यात्राओं में बहुत से सामाजिक संदेश भी दिए जा रहे हैं, जैसे नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा, बेटी शिक्षा और जल संरक्षण जैसे सामाजिक संदेशों वाली झांकियां विशेष आकर्षण बन रही हैं। तो इसके आगे अगर हम बात करें तो भाई जो सावन की कांवड़ यात्रा है ना, वो केवल जल अर्पित करने की परंपरा नहीं है, बल्कि सेवा, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता और अटूट आस्था का भी एक प्रेरक उत्सव बनती जा रही है। साथ ही मन में ये आत्मविश्वास भी भरती है हमारे कि भाई अगर ईश्वर हमारे साथ है तो हर काम आसान है।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत अभी जो आप सुन रहे थे तुम साथ हो जब अपने कालिया फिल्म से, और जिसे गाया किशोर कुमार और आशा भोंसले ने। तो आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ बच्चों की बचपन की। तो मुझे एक शेर याद आता है कि उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। तो मेरे कहने से आपको करना क्या है, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए वो बचपन जब आसमान में काले बादल छाते ही दिल खुशी से उछल पड़ता था, किताबें एक तरफ और कागज की नाव दूसरी तरफ। बारिश शुरू होते ही ना छाते की चिंता होती थी ना कपड़ों की, बस दोस्तों की टोली, गलियों में चप चप, पेड़ों से टपकती बूंदे और मिट्टी की सौंधी महक, यही तो बारिश का असली जश्न होता था हमारे बचपन का। फिर घर लौटते ही जब हमें माँ की हल्की सी डांट पड़ती थी कि देखो पूरे भीग गए, और उसी डांट के साथ हमें गर्मा गर्म पकौड़े या भुट्टा, मानो बारिश का स्वाद वहीं पूरा हो जाता था। बारिश तो दोस्तों आज भी होती है, लेकिन नज़ारे कुछ बदल से गए हैं। कागज की नावों की जगह मोबाइल की स्क्रीन ने ले ली है, दोस्तों की आवाज़ की जगह नोटिफिकेशंस की टन टन सुनाई देती है। बारिश बाहर बरसती है, लेकिन कई बार हम उसे खिड़की के शीशे के उस पार से ही देखते रह जाते हैं, खिड़की खोलना भी भूल जाते हैं। तो क्यों ना इस बार बारिश के साथ अपने बचपन को भी थोड़ी देर के लिए वापस बुलाया जाए। बच्चों के साथ एक नाव बनाइए, कुछ बूंदों को हथेली पर गिरने दीजिए, भीगी मिट्टी की खुशबू को महसूस कीजिए और कुछ यादें फिर से जी लीजिए। क्योंकि जो बारिश का मौसम होता है ना, वो सिर्फ मौसम नहीं बदलती, बारिश ये यादों के बंद दरवाजे भी खोल देती है।

श्रोताओं, अभी आप खूबसूरत सा जो गीत सुन रहे थे वो सुन रहे थे एक फूल दो माली फिल्म से, और जिसे गाया था आशा भोसले जी से, वो आशा भोसले जी ने गाया था ये, उनकी मधुर आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे। और अब हम बढ़ेंगे आगे अपने ईमेल्स की ओर, क्योंकि हमने अपने श्रोताओं से जो एक प्रश्न पूछा था कि भाई जब आपको गुस्सा आता है तो आप अपना गुस्सा जो है गुस्सा कैसे शांत करते हैं, तो उन्होंने हमें बहुत सारे अपने उपाय लिख के भेजे हैं, तो उनमें से कुछ ईमेल्स मैं पढ़ देती हूँ। हमारे पास वैभव सिंह जी का ईमेल आया है प्रयागराज यूपी से, वो लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम सुनकर भी गुस्सा शांत हो जाएगा, पर मुझे जब गुस्सा आता है मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करके उनसे बात करता हूँ और मेरी माँ की आवाज़ सुनकर मेरा सब गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है। तो ऐसे हमें महेश अग्रवाल जी भी ईमेल करते हैं, उन्होंने लिखा है कि जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं पानी पीता हूँ और गाने सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। स्मिता पांडे जी का मुझे ईमेल मिला है, वो लिखती हैं कि जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं जो प्रवचन होते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, अच्छे विचार होते हैं, उनको सुनती रहती हूँ तो मेरा गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास गौरी शंकर वर्मा जी का ईमेल आया है, जो हमें रोज़ाना ईमेल करते हैं, और वो लिखते हैं कि कल्पना बेटा राम राम, राम राम आपको, और मुझे किसी बात पर अगर गुस्सा आता है तो फिर मैं उस दिन बात नहीं करता, दूसरे दिन खुद ही माफ़ी मांग लेता हूँ और फिर सब कुछ सही हो जाता है। ऐसे ही एक ईमेल आया है हमें बबली सिंह का, वो लिखती हैं कि जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं फ़ोन को साइलेंट करके म्यूज़िक लगा देती हूँ और उसके बाद मैं सुनते हुए सो जाती हूँ, जब मैं उठती हूँ तब तक मेरा जो मूड होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो क्या बात है, हमारे जो श्रोता हैं वो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हमें ईमेल करते रहें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com, और तब तक आप ये सुनिए खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे पेइंग गेस्ट फिल्म से, और जिसे गाया आशा भोसले और किशोर कुमार ने। तो चलिए अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और बात करते हैं खादी की, जो भारत की स्वदेशी परंपरा, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण रोजगार का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात कार्यक्रम में खादी को आत्मनिर्भर भारत का सशक्त प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि खादी आज केवल वस्त्र नहीं बल्कि देश के कारीगरों, बुनकरों और स्थानीय उद्यमों को सशक्त बनाने का माध्यम बन गई है। इसके साथ ही पिछले वर्षों में खादी की जो बिक्री है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे लाखों बुनकरों और ग्रामीण परिवारों की जो आय है वो भी बढ़ी है। उन्होंने गुजरात के कच्छ के कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे वे पारंपरिक हस्तकला को आधुनिक बाजार से जोड़कर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से बात करी और कहा कि वोकल फॉर लोकल का संकल्प अपनाएं और खादी व स्थानीय उत्पाद को प्राथमिकता दें, और यही कदम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को नई गति देता है। तो आइए हम भी बढ़ाते हैं एक कदम स्वदेशी की तरफ और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करते हैं। फिलहाल इस प्यारी सी जानकारी, इस अच्छी सी जानकारी और इस जरूरी जानकारी के बाद मैं आपको सुनाऊंगी एक प्यारा सा गीत नौकर फिल्म से, जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले।

नौकर फिल्म से आप ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में बातें करने के लिए बहुत सी बातें हैं, तो अब बात करते हैं भारत सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही पीएम यशस्वी योजना की। पीएम यशस्वी का पूरा नाम प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया है। ये योजना ओबीसी, ईबीसी तथा डीएनटी, एनटी और एसएनटी वर्ग के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी को कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। इसे जुड़ने के लिए आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी के माध्यम से किया जाता है। पोर्टल पर पंजीकरण कर PMYASASVI यानी PMYASASVI योजना का चयन करें, आवश्यक जानकारी भरकर दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें, और सत्यापन के बाद जो पात्र विद्यार्थी होंगे, जिनकी पात्रता होगी, जो योग्य होंगे, उनको छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है। याद रखें, ये जो योजना है ये आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनको बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। युवा सक्षम होंगे तभी तो हमारा देश भी उन्नति करेगा। तो आइए इन्हीं भावों से भरा हुआ एक गीत सुनते हैं, आन मिलो सजना फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में।

श्रोताओं, देखिए हमारे अन्य दोस्तों ने भी हमें ईमेल किया है, जिसमें से एक हैं प्रद्युम्न वर्मा। वो लिखते हैं कि मुझे जिस व्यक्ति पर गुस्सा आता है, मैं उस व्यक्ति के लिए अपने दिल की जो छिपी हुई बात है उसको पेपर पे लिख लेता हूँ और फिर मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अपूर्व पांडे हमें लिखते हैं श्रीनगर से कि मुझे गीत सुनवा दीजिए, तुम मुझे यूँ बुला ना पाओगे। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे FM गोल्ड पे बहुत से ऐसे कार्यक्रम आते हैं जिन पे आप जो है अपनी फरमाइश का गीत सुन सकते हैं, लेकिन ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है। तो यहाँ पर तो जो हम प्रश्न आपसे पूछते हैं आपको उसका उत्तर देना होता है। तो आइए चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब आपसे बात करते हैं थोड़ी घूमने की कि अगर इस मानसून आपका मन कुछ नया देखने, खरीदने और भारतीय संस्कृति के रंगों में रंगने का है तो आपके लिए लगा हुआ है दस्तकार मानसून मेला 2026। ये मेला 6 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक नोएडा हाट में आयोजित किया जा रहा है। मेले का समय है प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से आए कारीगर अपनी हस्त निर्मित कलाकृतियां लेकर आए हैं। यहाँ आपको हाथ से बुने वस्त्र, पारंपरिक आभूषण, मिट्टी, लकड़ी और बांस से बनी सुंदर वस्तुएं, घर की सजावट का सामान, लोक चित्रकला और अनेक राज्यों के जो स्वादिष्ट पकवान है ना, वो भी आपको एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो ये केवल खरीदारी का मेला नहीं है बल्कि भारत की समृद्ध कला संस्कृति और कारीगरों के अद्भुत हुनर को करीब से देखने का मौका भी है। तो इस मानसून अपने परिवार और दोस्तों के साथ दस्तकार मानसून मेले का आनंद जरूर लीजिए, क्योंकि हर हस्तनिर्मित वस्तु सिर्फ एक उत्पाद नहीं होती बल्कि किसी कारीगरों के सपनों, मेहनत और हुनर की कहानी भी कहती है।

श्रोताओं अभी अभी प्यारा सा गीत सुन रहे हैं चोर मचाए शोर फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में, और इसी गीत के साथ मुझे यानी अपनी रेडियो सखी कल्पना को अनुमति दीजिए घर आंगन कार्यक्रम से। नमस्कार।

7. घर आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
1: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। राष्ट्रीय लोकदल के सांसद चंदन चौहान ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के बीच मंगल मिलन जैसी बातचीत समन्वय और संवाद को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। श्री चौहान ने बताया कि बैठक के दौरान नेताओं ने ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने आज कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मंगल मिलन बैठक में 2037

1947 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि ने विवादास्पद बयान दिया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2026 के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉ. मांडविया ने युवा खिलाड़ियों को निरंतर सफलता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को एशियाई खेल 2026 और ओलंपिक खेल 2028 की तैयारियों के लिए शुभकामनाएं दी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओगावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज चहलुम जुलूस को देखते हुए दक्षिण दिल्ली में विशेष यातायात व्यवस्था और मार्ग परिवर्तित किए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि दोपहर 2 बजे से अरबिंदो मार्ग, लोधी रोड, रिंग रोड, बीपी मार्ग और उनसे जुड़ी सड़कों पर यातायात जाम होने की आशंका है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है दोपहर के 1:11 और 8 सेकंड्स। मैं आपका रेडियो हम सफर राम प्रकाश लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल।

दोस्तों, हिंदी फिल्म संगीत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा उसमें एक ऐसा नाम होगा जिसके बिना ये इतिहास कभी भी पूरा नहीं हो सकता। एक ऐसी आवाज जो कभी शरारती बच्चे जैसी लगती थी तो कभी किसी आशिक का धड़कता हुआ दिल बन जाती थी। एक ऐसी आवाज जो कभी दर्द में डूब जाती तो कभी इतनी मस्त हो जाती थी कि सुनने वाले भी अनायास ही मुस्कुरा उठते। जी हाँ दोस्तों, आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारतीय संगीत के मशहूर गायक, अभिनेता और फिल्म निर्माता किशोर कुमार के बारे में। किशोर कुमार सिर्फ एक गायक नहीं थे बल्कि फिल्मी दुनिया की एक

घूमती फिरती एकेडमी थे, क्योंकि उनके अंदर फिल्म निर्माण की हर कला मौजूद थी। उनकी आवाज हर उम्र, हर मौसम और हर एहसास के साथ खुद को बदल लेती थी, और यही कारण है कि आज भी नई पीढ़ी उन्हें उतने ही प्यार से सुनती है जितना उन्हें उनके दौर के लोग सुना करते थे।

0: किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के एक खूबसूरत शहर खंडवा में एक बंगाली परिवार में हुआ था। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार यानी दादामुनि हिंदी सिनेमा में एक मशहूर अभिनेता थे, जिसकी वजह से किशोर कुमार भी फिल्मी दुनिया के संपर्क में आए। किशोर कुमार को बचपन से ही संगीत की तरफ काफी रुझान था और वो मशहूर गायक KL सहगल के गाने बड़ी खुशी से गाया करते थे और उनकी आवाज भी कॉपी किया करते थे। लेकिन उनका फिल्मी सफर एक गायक के रूप में नहीं बल्कि एक अभिनेता के रूप में शुरू हुआ। सन 1986 में आई फिल्म शिकारी में पहली बार वो अपने बड़े भाई अशोक कुमार के साथ एक छोटी सी भूमिका में नजर आए।
1: दिलों का न पूछो सनम आपका।

दोस्तों बात करें किशोर कुमार के गायक के रूप में फिल्मी करियर की, तो संगीत निर्देशक खेमचंद प्रकाश ने अपनी फिल्म जिद्दी में उन्हें एक गाना गाने का मौका दिया। इसके बाद उन्हें कई अन्य प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव भी मिले। अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोर कुमार

और के एल सहगल की गायन शैली की नकल किया करते थे, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि बाद में खुद किशोर कुमार के स्टाइल को सारी दुनिया कॉपी करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, किशोर कुमार ने अपने गीतों में योडलिंग का प्रयोग किया और बाद में ये उनके गीतों की एक अनिवार्य और मुख्य विशेषता बन गई।

0: दोस्तों, आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मशहूर पार्श्व गायक किशोर कुमार के बारे में। किशोर कुमार से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें मैं आपको सुनाऊंगा, बस एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।

0: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। दोस्तों, किशोर कुमार की गायन प्रतिभा को पहचानने का श्रेय मशहूर संगीतकार SD बर्मन को दिया जाता है। सन 1950 में आई फिल्म मशाल के निर्माण के दौरान SD बर्मन अशोक कुमार के घर गए, जहां उन्होंने किशोर कुमार को KL सहगल की नकल करते हुए सुना। उन्होंने किशोर कुमार की बड़ी प्रशंसा की और उन्हें कहा कि उन्हें अपनी खुद की शैली विकसित करनी चाहिए। इसके बाद किशोर कुमार ने अपनी खुद की गायन शैली विकसित की। 50 के दशक से लेकर 70 के दशक के आरंभ तक SD बर्मन ने किशोर कुमार से देवानंद के लिए कई गाने गवाए। SD बर्मन ने किशोर कुमार को संगीत का प्रशिक्षण भी दिया और उन्हें संगीत के लिए काफी प्रोत्साहित किया। इसी के परिणाम स्वरूप आने वाले वर्षों में किशोर कुमार एक महान गायक के रूप में विकसित हुए।

दोस्तों बात करें किशोर कुमार के और रिश्तों की, तो उनका रिश्ता संगीतकार आरडी बर्मन के साथ भी काफी गहरा रहा। उन्होंने किशोर कुमार से कई सेमी क्लासिकल गाने गवाए। इसके अलावा किशोर कुमार अपने समय के लगभग सभी मशहूर संगीतकारों की पहली पसंद बन चुके थे। किशोर कुमार ने अपने करियर में सबसे अधिक गाने अभिनेता राजेश खन्ना के लिए गाए। उन्होंने उनके लिए तकरीबन 92 फिल्मों में 245 गाने गाए। इसके अलावा अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के गानों की आवाज भी किशोर कुमार ही बने। और अभिनेता राजेश खन्ना ने तो यहां तक कह दिया था कि किशोर कुमार मेरी आत्मा थे और मैं उनका शरीर।

0: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
0: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
2: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। दोस्तों, बात करें किशोर कुमार के अभिनय से सजी कुछ चर्चित फिल्मों की, तो फिल्म चलती का नाम गाड़ी, नौकरी, बाप रे बाप, मुसाफिर, नई दिल्ली, नया अंदाज, भागम भाग, भाई भाई, दिल्ली का ठग, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मनमौजी, झुमरू, हाफ टिकट और दूर गगन की छांव आदि फिल्में ऐसी फिल्में हैं जिनमें किशोर कुमार ने दमदार अभिनय किया और इनमें से कुछ फिल्मों में उन्होंने संगीत भी दिया।

दोस्तों बात करें किशोर कुमार की उपलब्धियों की तो भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के पुरस्कार से कई बार नवाजा गया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। उनके नाम पर सन 2016 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने खंडवा में उनकी एक स्मारक स्थापित की जिसमें एक छोटा रंगमंच और संग्रहालय भी शामिल है।

किशोर कुमार 13 अक्टूबर 1947 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। दिल का दौरा पड़ने से अचानक उनका निधन हो गया। दोस्तों, किशोर कुमार भले आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी गायन शैली और उनकी आवाज हमेशा भारतीय संगीत का हिस्सा बनी रहेगी। आज भी उनको फॉलो करने वालों की अनगिनत संख्या है। कुमार सानू, अभिजीत भट्टाचार्य, अमित कुमार, विनोद राठौड़, मोहित चौहान, आयुष्मान खुराना और शान आदि गायक किशोर कुमार की ही गायन शैली से प्रेरित हैं।

दोस्तों, इसी गीत के साथ अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को अनुमति दीजिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं आपसे मिलूंगा ठीक 2:30 पर।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। अपोजिशन मेंबरों की तरफ से मुख्तलिफ मामलात पर दोनों ऐवानों में रुकावट डालने की वजह से पार्लियामेंट में तातुल जारी है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है क्योंकि बड़े दरियाओं के पानी की सतह कम हो रही है। तमिलनाडु में अपोजिशन लीडर उदयनिधि स्टालिन को मुतनाज़ रिमार्क की वजह से पुलिस तहवील में ले लिया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाग जिले में नहते अफराद पर पाकिस्तानी फौज के गोली चलाने से बेचैनी और बढ़ गई है। आबनाए हुरमुज में जहाजों पर फिर से हमले की वजह से अमरीका और ईरान के दरमियान जंग खत्म कराने से मुतालिक अमन बातचीत पर गैर यकीनी बढ़ गई है। और आसान में कोरिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है। अब खबरें तफसील से। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इनमें नीट के सवाल पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला भी शामिल था। जब पहले इल्तवा के बाद दिन में 12 बजे राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो शोर शराबे के दौरान चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने सवालों का वक्फा शुरू किया। कई अराकीन ने सवाल पूछे और वजीरों ने उनके जवाब दिए। ताहम अपोजिशन मेंबरों के एहतजाज और नारेबाजी की वजह से चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी कर दी। इससे पहले जब दिन में 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो वजीरों ने ऐवान में जरूरी दस्तावेजात पेश किए। मकानात और शहरी उमूर के बारे में पार्लिमानी कायमा कमेटी के महकमे से वाबस्ता रिपोर्ट ऐवान में पेश की गई। इसके बाद चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने शोरगुल के दौरान वक्फे सिफर की शुरुआत की। हिजब इख्तलाफ के रहनुमा मलिक अर्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की मुबैना चोरी का मामला उठाया। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जो अयोध्या में राम मंदिर की मुखालफत कर रही हैं अब मुबैना चढ़ावे की चोरी का मामला उठाकर आवाम के सामने ड्रामा करके उन्हें गुमराह कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहाकर मुल्क को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें मुल्क से माफी मांगनी चाहिए।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते। इधर अपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा की कार्रवाई भी इसी मामले पर दिन में 2 बजे तक

0: मुलतवी कर दी गई। जब लोकसभा की कार्रवाई दिन में 11 बजे शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने सवालों का वक्फा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन मेंबरों ने तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई का मामला उठाया। अपोजिशन मेंबर मुबैना पुलिस कार्रवाई पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का मुतालबा कर रहे थे। जनाब बिरला ने सभी अराकीन पर जोर दिया कि वह ऐवान चलाने में ताउन करें और कहा कि सवालों के वक्फे के दौरान खलल डालना मुनासिब नहीं है। स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट नारेबाजी या कतबे लाने का प्लेटफार्म नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा को 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। बीजेपी ने कांग्रेस और दिगर अपोजिशन पार्टियों पर पार्लियामेंट के मानसून इजलास की कार्रवाई में रखना डालने का इल्जाम लगाया है। नई दिल्ली में आज सुबह नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां सवालों के वक्फे के बाद भी ऐवान में शोरगुल कर रही हैं। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आवाम के फायदे के लिए मंजूर किए गए अहम बिलों पर होने वाली बहस में कोई हिस्सा नहीं लिया। इन बिलों में पैदाइश और अमवात के इंदराज से मुतालिक तरमीमी बिल और बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 भी शामिल है। बीजेपी के तर्जुमान ने यह इल्जाम भी लगाया कि पार्लियामेंट के मकर द्वार पर एहतजाज करके अपोजिशन हिंदुओं और हिंदू सनतों के जज्बात को ठेस पहुंचा रही है।
1: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। 0 आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि झारखंड में हजारों तलबा एहतजाज कर रहे हैं और कांग्रेस ने उनकी हिमायत में एक लफ्ज भी नहीं बोला, जिससे जाहिर हो जाता है कि वो पेपर लीक जैसे मामलों में अलग अलग मौकिफ अख्तियार कर रही है। कौमी जमहूरी इतिहाद एनडीए पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग, जिसे मंगल मिलन कहा जाता है, आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुई। वजीर आजम मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर खारजा डॉ जयशंकर और दिगर रहनुमाओं ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। गुज़श्ता मीटिंग 28 जुलाई को हुई थी। ओडिशा में सैलाब की सूरतहाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है, क्योंकि महानदी और दिगर बड़े दरियाओं का पानी मुसलसल कम हो रहा है। इसके बावजूद सैलाब से शदीद तौर पर मुतासर गांव में हजारों अफराद अब भी पानी भर जाने और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बायस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने आइंदा 2 दिन के दौरान मजीद बारिश की वार्निंग जारी की है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में सैलाब के बाद की सूरत हाल लगातार बेहतर हो रही है, क्योंकि पीर की रात से महानदी दरिया का पानी कम होना शुरू हो गया है, जिससे जगत सिंहपुर जिले की कई गांवों को जजवी राहत मिली है। ताहम नशीबी इलाकों से पानी मुकम्मल तौर पर ना निकलने के बायस बहुत से कुनबे अब भी बेघर हैं। मौसमियात के महकमे ने रियासत के 7 जिलों में शदीद बारिश के लिए वार्निंग जारी की है और आइंदा 2 दिन के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और आसमानी बिजली गिरने के पेशगोई की है। मयूरभंज जिले में सबसे ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तमिलनाडु में अपोजिशन लीडर उदयनिधि स्टालिन को उनके एक मुतनाज़े बयान पर पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये कार्रवाई कल DMK की किसानों की एहतजाजी रैली में कावेरी आबी तनाज़ों पर उनकी तकरीर के बाद की गई है। ये मामला थंजौर की एक खातून की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसमें खातून ने इल्जाम लगाया कि उनकी तकरीर में खवातीन के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में बढ़ती हुई बदअमनी के दौरान मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने बाग जिले में निहत्ते शहरियों पर बराह रास्त फायरिंग की और उन पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी ने यह दावा एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जमीनी सतह के मनाजिर की वीडियो जारी करते हुए किया। कमेटी ने यह भी इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने मुजफ्फराबाद जिले के मकरी इलाके में शहरियों की मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। آبنائے ہرمز میں ایک تجارتی جہاز پر پھر سے حملے اور بحر احمر میں ایک تیل ٹینکر کا راستہ بدلے جانے

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इस तरफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त

0: रख दूंगा।
1: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
2: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
3: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल DMK के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
4: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
1: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
5: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक

0: धक्के से हुआ है, इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
2: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
1: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री VD सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज दलदमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार यह घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है दोपहर के 2:30:59। मैं आपका रेडियो हमसफर राम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका कार्यक्रम संगीत.com में।

दोस्तों एक खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म संगीत से, आवाज अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की, संगीत आनंद मिलिंद का और गीत संतोष आनंद का। अगला गाना जो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ, उस गाने का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। हुआ यूं कि एक बार संगीतकार श्रवण कुमार अपने साथी नदीम के घर खाना खाने पहुंचे। उनकी माँ ने खाना इतना स्वादिष्ट बनाया था कि बातों बातों में इन्होंने काफी ज्यादा खाना खा लिया। इस पर उनकी माँ ने कहा कि बेटा क्या करते हो, थोड़ा कम खाया करो। और इस पर श्रवण कुमार ने कहा, क्या करे मम्मी जी, दिल है कि मानता नहीं। बातों बातों में उनके मुंह से निकली इस लाइन ने आगे चलकर 90s के एक मशहूर गाने का रूप ले लिया। वैसे तो ये गाना आशिकी एल्बम के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इस गाने को किसी और फिल्म में ले लिया गया। आइए सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत नगमा।

0: आप सुन रहे थे फिल्म दिल है कि मानता नहीं से, आवाज अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की, संगीत नदीम श्रवण का और गीत फैज अनवर का। दोस्तों, कार्यक्रम संगीत.com में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, आइए कार्यक्रम संगीत.com में आपको सुनवाते हैं एक बेहद ही खूबसूरत नगमा फिल्म गंगा जमुना सरस्वती से। आवाज लता मंगेशकर की, संगीत अनु मलिक का और बोल इंदीवर के।

दोस्तों, एक बार जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था नमक हलाल। इसमें एक गाना था जिसे वो किशोर दा से गवाना चाहते थे। गाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अनजान साहब जो कि इस गाने के लेखक थे, वो किशोर दा को गाना लिखवा रहे थे और एक अंतरा किशोर दा को लिखवाते तो किशोर दा नजर उठाकर ऊपर अनजान साहब की तरफ देखने लगते। इसके बाद फिर एक अंतरा लिखते और फिर उनकी तरफ देखने लगते। भाई मसला कुछ यूं था कि गाना बहुत लंबा हो रहा था और किशोर कुमार समझ नहीं पा रहे थे कि मुझसे इतना लंबा गाना क्यों गवाया जा रहा है। आखिरकार उन्होंने बोल ही दिया, भाई अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और तुम लोग मुझसे इतने लंबे लंबे गाने क्यों गवाते हो। इस पर प्रकाश मेहरा ने कहा, देखिए इसके दो कारण हैं। एक तो आप लंबी फीस लेते हैं और दूसरा इस गाने में काम करने वाला जो एक्टर है वो भी बहुत लंबा है। यानी वो बात कर रहे थे अमिताभ बच्चन साहब की। श्रोताओं, ये वो गाना था जो इंडियन क्लासिकल और डिस्को का एक बेहतरीन फ्यूजन था। आइए आपको सुनवाते हैं ये बेहतरीन नगमा।

दोस्तों एक खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म नमक हलाल से, आवाज किशोर कुमार की, संगीत बप्पी लहरी का और गीत अनजान और प्रकाश मेहरा के। दोस्तों इसी के साथ कार्यक्रम संगीत.com यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को अनुमति दीजिए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है। उधर पहले स्थगन के बाद राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: राज्यसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक के अनुसार यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना उसकी घटना के एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल जिला मैजिस्ट्रेट, उपमंडल मैजिस्ट्रेट या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किसी कार्यपालक मैजिस्ट्रेट की स्वीकृति से ही किया जा सकेगा। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया है। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया है कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है, जहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता बढ़ गई है। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास एक वाणिज्यिक पोत पर हुए ताजा हमले और सऊदी अरब के टैंकरों को लाल सागर से दूर ले जाने की घटना ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बढ़ते खतरों को उजागर किया है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा लेकिन युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। ओडिशा में महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम होने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में आज हल्की वर्षा हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आने के साथ और फिर बताएंगे आपको कि पहली रिक्वेस्ट हो रही है किसकी पूरी। पराया धन फिल्म से ये गाना आप सबके लिए।

बिल्कुल, आपकी मुलाकात हमसे हो चुकी है और आपकी ईमेल्स हम तक पहुंच रही हैं और वो इसकी साक्षी हैं कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमें खूब सारे मैसेजेस रिक्वेस्ट अपने लिखकर भेज रहे हैं। तो मैं शामिल करती हूं आपका पहला संदेश जो हमें मिला है। वैसे तो अगर मैं पहला संदेश ढूंढने लगी तो मुझे बहुत समय लगेगा क्योंकि इतने सारे पेजेस भर चुके हैं, और मैं ये बता सकती हूँ कि 3 बजे से ही मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, हालांकि हमारा प्रोग्राम 3:10 पर शुरू होता है। तो पहला मैसेज गौरव राजपूत का हमें मिलता है और आप हमें उत्तर प्रदेश से मैसेज भेज रहे हैं। आपके साथ हैं नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह और जानवी राजपूत, दर्श राजपूत। दीवाना फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया का अगला मैसेज हमें मिलता है, एंजल, सोनू, पप्पी और तमन्ना भाटिया के साथ जमशेदपुर से। प्रोग्राम आप ये वाला पसंद करते हैं ऐसा बताते हैं। सोमदत्त जी का भी मैसेज मिला है हमें पटियाला से, और आपके साथ हैं कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु और तीसरी कसम फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। अगला मैसेज हमें मिलता है, इससे पहले कि पढ़ें वो मैसेज जो है ना अगले पेज पर पहुंच जाता है। भूषण खेरा है हमारे साथ और आपके साथ हैं, देखिए बिना कॉमास के जब आप लिखते हैं ना तो थोड़ा तो हमें भी रुकना पड़ता है। फाजिल्का पंजाब से, खेड़ा परिवार जो है वो प्रोग्राम सुन रहा है। भूषण, विशु, विशाल, लाडी, शालिनी, तिवांशी खेड़ा, और आप सुनना चाहते हैं खिलौना फिल्म से किशोरदा की आवाज में एक गाना। प्रकाश वर्मा का भी मैसेज हमें मिलता है और आप मुकद्दर का सिकंदर से एक गाना सुनना चाहते हैं। और आज आप सबके मैसेजेस पढ़कर पता चल रहा है आप किशोर कुमार जी को याद कर रहे हैं और उन्हीं की आवाज में ज्यादा से ज्यादा गाने सुनना चाहते हैं। हालांकि एक प्रोग्राम हमारा जो है वो किशोरदा पर जो है आप सुन चुके हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो सुबह से, है ना, सुन चुके हैं ना, कलाकार बेमिसाल। सतीश अनेजा भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, रिमझिम गिरे सावन ये सुनना चाहते हैं आप गाना, और आपके साथ बिमला अनेजा भी हैं चंडीगढ़ से। हरजिंदर सिंह भाटिया का मैसेज हम शामिल कर चुके हैं। मस्कीन दादा का मैसेज मिलता है हमें, आपके साथ है वीना, आशीष, चैतन्य, तुलसी मस्कीन, मेघा मस्कीन और राहुल, रचिता खुराना, केशु, रिधान खुराना, आप सब प्रोग्राम सुन रहे हैं। धर्मेंद्र छीपा भी है प्रोग्राम सुनने वालों में। आप हमारे साथ भोपालगढ़ राजस्थान से हैं और आपके साथ है ईशान, कपिल और पूजा परिहार। और बस एक और संदेश शामिल करके हम बताएंगे कि अगला मैसेज या कह सकते हैं कि अगली रिक्वेस्ट, पहली रिक्वेस्ट आज के प्रोग्राम की किसकी है। राशिद हुसैन अंसारी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और आज और कल फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ है नसरीन अंसारी, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी। तो अगला जो गाना है इसे सुनने की रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेजी है सनावत से शेख मूसा मोहसिन ने, तुम्हें देखती हूं तुम्हारे लिए फिल्म से आप ये सुनना चाहते हैं। ये गाना आप सबके लिए आपके अपने आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आप सुन रहे हैं मन भावन अपराजिता के साथ। और अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं आज अब से लेकर 4 बजे तक। वैसे 3:10 से ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो आपके पास अभी लगभग आधा घंटे का समय और है। आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं fmgold@gmail.com पर, जैसे आपके तमाम दोस्तों ने हमें भेजी है, और कंप्यूटर स्क्रीन पर ये बहुत सारे पेजेस में रन हो रही हैं आपकी ईमेल्स। तो पढ़ते हैं अगली ईमेल हमारे पास किसकी पहुंचती है। अकरम हुसैन प्रिंस हमें मैसेज भेजते हैं नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से। आपके साथ है मुसर्रत जहां नाज, तलत जहां नाज, फरज जहां, रिफत जहां, नुजहत, साजिया, शाहीन, नाजिया, नूरी। और ये कहते हैं कि हम बहनों को प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करें, तो बिल्कुल आपके नाम शामिल हो चुके हैं। मास्टर अशोक वर्मा का मैसेज हमें मिलता है, मेरे महबूब कयामत होगी ये गाना आप सुनना चाहते हैं। खरगोन सनावत से आप हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं अर्चना, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, भाई राजकुमार बुडाना, सुदामन नगर खंडवा से, लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। साई गायकवाड़ का अगला मैसेज आता है, याराना फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं किशोरदा की आवाज में। और आपके साथ हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, आप सब प्रोग्राम को सुन रहे हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी का भी मैसेज हमें मिलता है, और फिल्म मेरे जीवन साथी से आप एक गाना सुनना चाहते हैं बुलंदशहर से। आपके साथ हैं निगत, परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आपके परिवार के सभी सदस्य। इसके बाद मैसेज आता है बोधराज खोरवाल का, उत्तम नगर दिल्ली से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, हाफ टिकट फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ है कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। और इसके बाद कौन क्या कहता है ये देखते हैं, विनोद मूणत प्रोग्राम सुन रहे हैं, और आपके साथ है नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन नाहटा, और आप उज्जैन से सुन रहे हैं प्रोग्राम। सुमेरा परवीन का भी मैसेज हमें मिलता है, और आप भी प्रोग्राम पसंद कर रही हैं। नवाब अहमद भारती है हमारे साथ, शबाना भारती, अरहान अहमद, सूफिया नवाब, आप सब बलीमारा से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और रोते हुए आते हैं, सब ये गाना सुनना चाहते हैं। पंकज कुमार का मैसेज हमें मिलता है दिल्ली से, और आप मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला ये गाना सुनना चाहते हैं। गोविंद वैष्णव का मैसेज मिलता है हमें, और दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा अमानुष फिल्म से सुनना चाहते हैं इसे आप। और आपके साथ हैं जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगला गाना है दिग्दर्शन गौर और कविता गौर की पसंद का, जो शोभापुर से प्रोग्राम सुन रहे हैं, शोले फिल्म से आप सुनना चाहते हैं ये प्यारा सा गाना।

हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोर्ड, सीताराम कांगड़ा, साहिल कांगड़ा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। और अगला मैसेज जगदीश का आता है हमें। आप हमें हिंगड़ी आलोट से मैसेज भेजते हैं। आपके साथ हैं श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़। अगला मैसेज है हमारे पास मास्टर खिल्लू परवेज का, और आप अनुराग फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ है बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव। और इसके बाद जो मैसेज हमारे पास आया है, बेबी शालिया खत्री, बेबी हलीमा और जिक्रा, आप सब हैं हमारे साथ खंडवा से। और परदेसी पूरा खंडवा से शेख सैयद राही और अनस भाई का भी मैसेज आता है। रंग बिरंगे हार्ट वाले इमोजीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मैसेज मास्टर खिल्लू परवेज का हम जो है वो शामिल कर चुके हैं। चलते हैं स्वरूप आनंद सरजल के मैसेज की तरफ। और आपका मैसेज हमें छत्तीसगढ़ से मिलता है। आप प्रोग्राम को पूरे परिवार के साथ सुन रहे हैं और आप कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में गाना सुनना चाहते हैं। और आपके साथ स्वरूप आनंद सरजल, जोड़ा पीपल अंबिकापुर, ये नाम आप हमें लिखकर भेजते हैं। आर्यन वर्मा का मैसेज हमें मिलता है और आप सनावत से प्रोग्राम सुन रहे हैं। जगदीश जी का मैसेज हम शामिल कर चुके हैं। इसके बाद मैसेज आता है हमारे पास बीरेंद्र कुमार गुप्ता का। आपके साथ है अंजलि गुप्ता, योगिता, गजेंद्र गुप्ता और भूषण सोनी। आप गेंदा टोला बाजार चौक से प्रोग्राम सुन रहे हैं। आरजू फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। अगला मैसेज सुमेरा परवीन का है और आप मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान के साथ मैसेज भेजते हैं। हमें मेरे जीवन साथी से गाना सुनना चाहते हैं। और मोहम्मद इरशाद भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। आप मरियम जैनब, शाहजहां बेगम और इरशाद अहमद शाह के साथ हमें कस्बा बिलराम से मैसेज भेजते हैं। अगला मैसेज जो पहुंचता है वो शंकरलाल जायसवाल का है। आंधी फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। और आपके साथ है गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल। इसके बाद हमें मैसेज मिलता है ताज मोहम्मद का। आपके साथ हैं गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्षर, हरिद्वार से आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगला जो मैसेज है वो किसका है और गाना कौन कौन सा सुनना चाहता है। तो भाई हमारे पास मैसेज आता है जगदीश कुमार, राहुल, रितिका का, नांगलोई से, और आप सुनना चाहते हैं डॉन फिल्म से ये बहुत ही खूबसूरत गाना लता जी और किशोरदा की आवाज में।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मैसेज हमारे पास जो पहुंचता है वो है फारूक अली खान का। आपके साथ हैं फैजी, फरहास, फरहीन, फाहिरा, ताहिरा और आप गुन्नौर उत्तर प्रदेश से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। महबूबा फिल्म से या रोटी फिल्म से या अमर प्रेम फिल्म से आप कोई भी गाना सुनना चाहते हैं और थोड़ा शिकायती संदेश है आपका, थोड़ा लंबा है, वैसे आप छोटे मैसेजेस लिखते हैं तो नाराज ना होए, आपका मैसेज शामिल हो गया है और ऐसा कुछ नहीं है कि आपका मैसेज छोड़ा गया है ना पढ़ने के लिए, है ना, ये तो आप मानते हैं ना। आप यहां आए स्टूडियो तो हम आपको दिखाएंगे कि ईमेल्स कैसे पढ़ते पढ़ते आंखों से गायब हो जाती है, यानी कि इतनी ज्यादा ईमेल्स आ रही होती है, हम सोच रहे होते हैं इस पर क्लिक करें और वो खिसक जाती है। तो देखते हैं कि अगली ईमेल किसकी है। संदीप मक्कड़ का मैसेज हमें मिलता है, आपके साथ है ज्योति, मन्नत, भरत मक्कड़, कमल साहनी भी हैं आपके साथ, पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और डॉन फिल्म से ही एक और गाना सुनना चाहते हैं, तो डॉन से एक गाना हम सुनवा चुके हैं। सुनील गायकवाड़ का मैसेज हमें मिलता है और आप थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं, आपके साथ हैं सुषमा, अनन्या, राजवीर और आप लिखते हैं कि हम रोज इस प्रोग्राम को सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने के लिए, पसंद करने के लिए और एफएम गोल्ड के रेगुलर लिसनर बने रहने के लिए। मुकेश कश्यप का भी मैसेज हमें मिलता है मुरादाबाद से, आपके साथ हैं शीतल कश्यप, सोनू, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं आप। और देव शंकर तामुरिया का मैसेज भी आता है हमारे पास और आप भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। भारत भूषण का मैसेज मिलता है हमें बेंगलुरु से, आपके साथ है अंजू भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति और पौरुष। वैसे हम आपको बता दें कि अगला जो मैसेज है वो हमें लिखकर भेजा है लीलाधर मुडासिया, पुष्पा, दीपा, गौरव और अंश ने और आप प्यासा सावन फिल्म से सुनना चाहते हैं ये गाना।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: ढेर सारे संदेश आपके हमें मिल रहे हैं और मनभावन में अगला मैसेज बिट्टू भाटिया का आता है और आपके साथ झज्जर से हैं रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया। बेखुदी में सनम इस गाने को आप सुनना चाहते हैं। कुणाल सिंह भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। दादरी गेट भिवानी से आपके साथ है कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल, कुणाल मेहरा और कृष्ण मेहरा। अगला मैसेज हमारे पास पहुंचता है अहमद साहब का और आपके साथ है नूर आयशा, अहमद बागवान, इकबाल अहमद, अखलाक अहमद, आमना आसमा, राबिया परी, आशु जूही, सदफ, आरजू बारवान बागबान और आप बलिया से प्रोग्राम सुन रहे हैं। अगला गुड़िया कुरेशी का संदेश हम तक पहुंचता है। KH रही गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी हमाद जमील, आप सब प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं गंज डुंडवारा से। और सुदर्शन, अनीता, सिमरन मुखी का भी संदेश हमें सोनीपत से मिलता है और प्रोग्राम को आप पसंद कर रहे हैं। अगला संदेश हमारे पास मोहम्मद इरशाद का आता है। आपके साथ शबनम, आयशा, जहरा, शाहजहां, मरियम, जैनब हैं और आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। प्रकाश साहब का भी मैसेज हमें मिलता है। श्यामला प्रकाश, आप तिरुपति से प्रोग्राम सुन रहे हैं। वैसे मैं बता दूं अगला जो गाना है वो देव शंकर, अजय, तुषार देव, डॉली बेबी, राधा और प्रभा देवी, आप सबकी पसंद का है, देवता फिल्म से।

लालगिरी, बिट्टू भाटिया, अजीत भावसर, प्रमिला भावसर, जाकिर, देवशंकर तामुरिया, अमर रमेश कुमार, आफताब अंसारी, सुदर्शन मुखी, और इसी के साथ हमारे पास मैसेज आता है राजा नंदवादनी का, कौशल्या देवांगन, बबलेश पवार, राजकुमार डूडी, गिरीश बम, नासिर शेख, जॉन पर्ल, विलिस डिकॉस्ट्रो, बबलेश पवार, उत्तम कुमार भगत, ताज मोहम्मद, भगवत वर्मा, सलीम अख्तर, मुकेश कुमार, कमलकांत गुप्ता, मोहसिन रजा, सुशील आर पठानिया, मोहम्मद इरशाद, मोहसिन रजा, गुप्ता जी, आप सब प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, और जाते जाते आप ही में से एक की पसंद का ये गाना आपके लिए छोड़े जा रही हूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मांग की है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इससे पहले वित्त मंत्री सीतारामन ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में आगे संशोधन करेगा। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है, जिसे आज राज्यसभा ने भी स्वीकृति दे दी। लोकसभा पहले इस विधेयक को पारित कर चुकी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। विधेयक में यह प्रावधान है कि यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना पंजीयक को उसके घटित होने के एक वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष के भीतर दी जाती है तो जन्म या मृत्यु की प्रामाणिकता के सत्यापन के बाद ही जिला मैजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से इसका पंजीकरण किया जा सकता है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को एक विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया है। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएम के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के एक विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें यह आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने विधिक मापन के लिए योग्य पॉलिटेक्निक संस्थानों, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेजों और परीक्षण इकाइयों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र नियम 2013 के अंतर्गत सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र के अंतर्गत किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि आवेदन इस महीने की 17 से 31 तारीख तक विभाग के आधिकारिक पोर्टल के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। यह योजना भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन अब छत पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वालिफायर मुकाबले में आज तुषार सुवीर ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। पुरुष सिंगल्स में तुषार ने कनाडा के शौर्य गुल्लेया को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुडा इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रही हैं और यह प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। ओडिशा में महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम होने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाके और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home, Nityanand Rai, moved the bill in the Upper House, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. Earlier, when the Upper House reassembled after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan took up the question hour amid uproar by the opposition members. Several members asked questions which were replied to by the ministers. However, due to protest and sloganeering by the opposition members, the chairman adjourned the House till 2 p.m. Earlier, when the Upper House assembled at 11 a.m., Leader of the Opposition, Mallikarjun Kharge, raised the matter of alleged theft of donations from the Ayodhya Ram Temple. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the Congress and Samajwadi Party, which opposed the Ram Temple in Ayodhya, are now attempting to mislead the public regarding the alleged theft of donations. Mr. Rijiju said the House belongs to everyone, and the main opposition party, Congress, is misusing the time allotted to them.
2: They create a ruckus outside the parliament as well over the issue rather than letting it function. Whatever time has been given to the leader of the opposition, Mr. Kharge, he wants to misuse it every single time. We cannot accept this, and the other members who have submitted notices should also get an opportunity. Every time in the name of the leader of the opposition, they keep raising the same single issue all day long.
1: The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman today introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including the alleged police action during students' protest over the NEET paper leak issue. India has brought back 274 fugitive criminals from 36 countries between 2021 and 2026. The Ministry of Home Affairs said to strengthen action against fugitives, the government enacted the Fugitive Economic Offenders Act in 2018. It added that India has developed an integrated intelligence-led and technology-driven model to combat fugitive criminals. The ministry said that before 2014, India had extradition treaties with only 37 countries, and there was also no dedicated law to deal with economic fugitives or to confiscate their assets. It informed that between 2004 and 2013, India secured the extradition of only 4 fugitives per year on average, while 110 extradition requests remained pending. The flood situation in Odisha continues to improve as water levels in the Mahanadi and other major rivers recede steadily. However, thousands of people in the worst affected villages continue to face waterlogging and disruptions of essential services. In Kerala, red alert for extremely heavy rainfall has been declared in 8 districts today. The IMD has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for today. Heavy rainfall is expected to prevail over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. The unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK continued to mount after Pakistani forces opened fire on unarmed civilians in Bagh district today. The Joint Awami Action Committee said Pakistani forces also used tear gas against unarmed civilians. The Joint Awami Action Committee said this on a social media platform while sharing the ground footage. The group said Pakistani forces set civilians' motorcycles ablaze in the Makri region of Muzaffarabad district in the occupied territory. These latest incidents came amid escalating brutality by Pakistani forces. Benchmark domestic equity indices ended in a negative zone today, snapping a 4-day gaining streak. The Sensex shed 210 points, or nearly 0.3%, to close at 78,429. And that is the end of this news bulletin.

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
0: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: जवानी दीवानी फिल्म से ये गाना आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I'm Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
1: the Warehousing Development and Regulatory Authority, WDRA, under the Government of India, has invited applications from eligible officers serving in the central government, state governments, central and public sector undertakings, autonomous bodies and statutory bodies for recruitment to one anticipated vacancy for the post of Assistant Director, Administration, Finance and Contracts on a deputation or absorption basis. The post is placed in Level 8. Interested candidates should submit their applications in the prescribed format available on the authority's website to the Assistant Director, Human Resource, WDRA, New Delhi, within 30 days from the date of publication of the vacancy circular in the Employment News. Detailed eligibility conditions, application format, and other recruitment details are available on the official website, that is at www.wdra.gov.in. I repeat the website, it is www.wdra.gov.in. The National Centre for Disease Control, NCDC, under the Directorate General of Health Services, Government of India, has invited applications for engagement on a contract basis under the National Polio Surveillance Project funded by the WHO World Health Organization up to 31st December 2028. The recruitment is for 2 junior laboratory technicians, grade 2 post, and 1 field worker post, with the place of posting being Delhi. Selection will be conducted through screening cum written test at the NCDC campus 22 Shamnath Mark, Delhi 110052, near Civil Lines Metro Station. Eligible candidates possessing the prescribed qualifications and experience may appear for the selection process. Registration for the screening cum written test will be held on 13th August 2026 from 9:30 a.m. to 10:30 a.m. and candidates reporting after the stipulated time will not be entertained. The exact date of test, eligibility criteria, application procedure and other terms and conditions available on the NCDC website. Do refer to www.ncdc.mohfw.gov.in. The Railway Recruitment Board under the Ministry of Railways, Government of India, has issued a centralized employment notice for the recruitment of 4,098 vacancies for the post of Junior Engineer JE, Depot Material Superintendent DMS and Chemical and Metallurgical Assistant CMA across various railway zones. The posts are placed in pay level 6 as per the 7th CPC, carrying an initial basic pay of 35,000 per month, and candidates in the age of 18 to 33 years age group as on 1st January 2027 are eligible to apply, subject to applicable age relaxations. The online application process is tentatively scheduled to close by 13 September 2026. Applicants are advised to verify their identity using Aadhaar while submitting the online application and ensure that their name, date of birth, photograph and biometrics of Aadhaar exactly match their Class 10 certification. For details, kindly look up the website at www.rrb.indianrailways.gov.in. I repeat, it is www.rrb.indianrailways.gov.in. The National Disaster Management Authority, NDMA, Government of India, has invited applications from eligible Indian nationals for 1 consultant post of Project Review and Coordinator, DM Division, Ministry of Home Affairs, and the post is on contractual basis. The position offers a monthly remuneration of 75,000 to 1 lakh, while remuneration for retired government employees will be regulated as per the Ministry of Finance guidelines. The maximum age limit is 40 years, while retired government employees may apply up to 62 years of age. Interested candidates may apply online through the NDMA website. And the website is www.ndma.gov.in. Kindly apply within 20 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News.
0: And now we have the Employment News in Hindi.
2: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत वस्त्र आयुक्त कार्यालय मुंबई में 6 युवा पेशेवरों और एक विधि पेशेवर की नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मानदंड जैसे विस्तृत विवरण के लिए देखिए कार्यालय की वेबसाइट www.txcindia.gov.in। व्यय विभाग के प्रापण नीति प्रभाग के अंतर्गत लेवल 13 में निदेशक के एक तथा लेवल 11 में उपनिदेशक के एक पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाना है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदवार, पात्रता मानदंड और अन्य विवरणों के लिए देखिए वेबसाइट doe.gov.in अथवा 1 से 7 अगस्त 2026 के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित QR कोड को स्कैन करके भी आप आवश्यक जानकारी हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा आमंत्रित कर रहा है प्रोफेसर के 6 पदों के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के 3 पदों के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पदों के लिए आवेदन। पात्रता की शर्तों, वेतन, आरक्षण, तैनाती का स्थान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindiviswa.org। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 17 अगस्त 2026। सैनिक स्कूल अमरावती नगर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। स्नातकोत्तर शिक्षक गणित, स्नातकोत्तर शिक्षक अंग्रेजी, स्नातकोत्तर शिक्षक भौतिक विज्ञान, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक गणित, प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान, परामर्शदाता, बैंड मास्टर और कला शिक्षक, सभी पदों के लिए रिक्तियों की संख्या 1-1 है। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के लिए देखिए सैनिक स्कूल अमरावती नगर की वेबसाइट sainikschoolamravatinagar.edu.in। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। रजिस्ट्रार, अधिशासी अभियंता सिविल, चिकित्सा अधिकारी एलोपैथी और सहायक रजिस्ट्रार। चयन प्रक्रिया भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी भर्ती नियमों और कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार संचालित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट www.nitap.ac.in। मुरगांव पत्तन प्राधिकरण में वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक और वरिष्ठ उप मुख्य लेखाधिकारी के एक पद रिक्त हैं। अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.mormugaonport.gov.in। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक

0: प्राध्यापक ग्रेड टू, सहायक प्राध्यापक ग्रेड वन, सह प्राध्यापक समूह ए और प्राध्यापक समूह ए। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.manit.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार। शाम के 4:30 बज चुके हैं और अब हम लेकर हाजिर हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा। आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जानकारियों से भरे इस न्यूज मैगजीन प्रोग्राम में हम देंगे आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी और जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या उनके पास खास रिपोर्ट्स हैं, और खेल गतिविधियों, आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी डालेंगे एक नज़र। और कार्यक्रम के आखिर में बात होगी कुछ विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार।

0: Hello, Vishal. Yes, this song indicates that Independence Day is very near the corner, and we are all gearing up for our 80th Independence Day on 15th of August this year, marking 79 years of freedom. Of course, the national flag is hoisted by the Prime Minister at the iconic Red Fort in the national capital, and the chief ministers in different states also hoist national flags in their respective states. But since last few years, under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav, Har Ghar Tiranga has become an Indian campaign that encourages citizens to bring the national flag home and hoist it to build a personal bond with the flag, spark patriotism, and celebrate the national pride.
1: जी अनुजा, देश की आन बान शान तिरंगा सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे सामूहिक गौरव और एकता का प्रतिनिधित्व करता है ये तिरंगा। ये हर घर तिरंगा अभियान इसे एक गहरे व्यक्तिगत और दिल को छू लेने वाले रिश्ते में बदलने की प्रयास करता है। संस्कृति मंत्रालय ने इसकी ये पहल है और 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी। और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत और भावनात्मक जुड़ाव स्थापित किया जा सके, इसके पीछे एक यही उद्देश्य रहा है।
0: Of course, it unites people across the country under one symbol to think about nation building. It also teaches people more about the history and the rules of the Indian national flag. One can also make digital participation by taking selfies with the flag and uploading them online to share support, isn't it, Vishal?
1: जी बिल्कुल। और ये अभियान, हर घर तिरंगा अभियान जो है, देश भर के लोगों को राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचने के लिए एक ही प्रतीक के नीचे एकजुट लाने का काम करता है, एकजुट करने का काम करता है, और साथ ही लोगों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास और नियमों के बारे में भी अधिक सिखाने की प्रयास है।
0: And it stemmed from the thought that our relationship with the national flag has always been more formal and institutional rather than personal. So bringing the flag home collectively as a nation, it became a symbolic of not only an act of personal connection to the Tiranga, but also an embodiment of our collective commitment to nation building. And in the last 4 years, Har Ghar Tiranga has grown to be a people's movement. People across the country have embraced the idea and infused it with their warmth and support via participation in online and offline programs and events. Tiranga yatras are a key part of the Har Ghar Tiranga movement these days.
1: उद्देश्य यही है कि प्रत्येक नागरिक के दिल में, हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम और गौरव जगाने का उद्देश्य है, और ध्वज के प्रति, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति एक जागरूकता का भाव भी पैदा करना है। इतिहास इसका क्या रहा है, महत्व क्या है राष्ट्रीय

0: का और इसके सम्मान के क्या क्या नियम हैं, इसके बारे में भी इस अभियान के माध्यम से लोगों को जानने का बहुत अच्छे से मौका मिलता है।
1: ऑफ कोर्स विशाल, दीज इवेंट्स एम टू क्रिएट अ फेस्टिव एटमॉस्फेयर एंड सेलिब्रेट आवर नेशनल प्राइड थ्रू म्यूजिक। अ नेशनल फ्लैग इवोक्स पेट्रियोटिज्म एज यू जस्ट सेड बाय एक्टिंग एज अ पावरफुल विजुअल सिंबल ऑफ अ कंट्रीज हिस्ट्री, शेयर्ड वैल्यूज एंड कलेक्टिव सैक्रिफाइसेस। इट यूनाइट्स डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल अंडर अ कॉमन आइडेंटिटी एंड रिमाइंड्स सिटीजन्स ऑफ देयर हेरिटेज एंड नेशनल गोल्स।

0: तो आइए तिरंगे की इस यात्रा में जुड़ें, हर घर तिरंगा अभियान में जुड़ें और उन शहीदों को नमन करें जिन्होंने आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर आप तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर के अपलोड भी कर सकते हैं और उसके लिए आप डिजिटल प्रमाण पत्र भी हासिल कर सकते हैं।
1: राइट विशाल, सो नाउ शैल वी बिगिन विद द न्यूज़ हेडलाइंस फर्स्ट विशाल, बिफोर वी टेक अप द कॉरेस्पोंडेंस फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स।
0: जी बिल्कुल,
1: पार्लियामेंट पासेस रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2026 विद राज्यसभा अप्रूविंग इट टुडे। लोकसभा पासेस एप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल 2026।
0: ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है और तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदय निधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया।
1: Unrest mounts in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir after Pakistani forces open fire on unarmed civilians in Bagh district.
0: Hormuz Jaldamru मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है।
1: And Indian shuttlers begin campaign at Korea Masters Badminton Tournament in Asan. And Vishal, it's night time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we are talking about something that has quietly saved millions of lives, India's vaccine ecosystem. Absolutely, a tiny vaccine dose can make a huge difference. Vaccination strengthens our body's natural defense system and protects us from dangerous diseases before they even get a chance to attack.
0: और अनुजा, जब हम टीकाकरण की बात करते हैं तो भारत की उपलब्धि वाकई उल्लेखनीय है। टीकों ने भारत को चेचक, पोलियो, टेटनस को खत्म करने में मदद की है टीकाकरण ने, और साथ ही साथ खसरा, रुबेला और तपेदिक जैसी बीमारियों को भी काफी हद तक कम किया है।
1: Yes, Vishal, that's incredible. And during the COVID-19 pandemic, India lived up to its reputation as the pharmacy of the world by administering and supplying over 200 crore vaccine doses, including vaccines developed and manufactured right here in India.
0: और ये सफर यही नहीं रुका है। 2026 में भारत ने दो बड़े कदम उठाए। 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए पूरे देश में HPV वैक्सीनेशन अभियान और देश में ही बनी टेटनस डिप्थीरिया TD वैक्सीन, ये बड़े कदम रहे हैं।
1: These are major milestones, but here's something many people may not know. Behind every successful vaccination campaign is the universal immunization program.

0: 26।
1: और एक दिलचस्प बात ये भी है अनुजा कि वैक्सीन को जो है तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होती है, और अगर इसे बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर रखा जाए तो ये अपना असर भी खो बैठती है।
0: And which is why India has built one of the largest vaccine cold chain networks in the world, with nearly 30,000 cold chain points ensuring vaccines remain safe and effective from the factory to the vaccination center.
1: टीकाकरण का संबंध बेहतर समग्र स्वास्थ्य से भी है। बेहतर पोषण, साफ सफाई, मातृ देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के साथ साथ इसने देश भर के बच्चों और माताओं की मृत्यु दर को कम करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाई है।
0: And newer vaccines like rotavirus, pneumococcal conjugate vaccine, and measles rubella vaccines are protecting children against some of the leading causes of serious illness and death.
1: एक बात और कि भारत हर वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाता है। ये दिन 1995 में ऐतिहासिक पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दिए जाने की याद में मनाया जाता है।
0: Yes, it's a day that reminds us how collective action can transform a nation's health.
1: तो ये बिल्कुल याद रखा जाए कि टीके न सिर्फ बीमारियों से बचाते हैं बल्कि स्वास्थ्य देखभाल का खर्च भी कम होता है इससे, और देश का भविष्य भी मजबूत बनता है।
0: And from eradicating smallpox, eliminating polio and neonatal tetanus, administering over 200 crore COVID-19 vaccine doses, to expanding protection through HPV and TD vaccines, India's immunization journey is a story of commitment, science and hope.
1: इसलिए अगर आपको या आपके परिवार को वैक्सीन लगवानी है तो देर ना करें और न ही किसी तरीके की झिझक करें। वैक्सीन सुरक्षित और असरदार होती है और खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के सबसे आसान तरीकों में से एक है टीकाकरण।
0: Absolutely. Stay healthy, stay informed, and remember, every vaccine is a step towards a healthier India. And now moving on to our next topic, which is International Clouded Leopard Day, which is being observed today. Clouded leopard are found in the dense forests and foothills of the Himalayas, Northeast India, mainland Southeast Asia, and South China. Listed as vulnerable on the International Union for Conservation of Nature Red List, with fewer than 10,000 estimated mature individuals remaining nowadays, India has also reaffirmed its commitment to the conservation through the newly launched Clouded Leopard Conservation Action Plan, which provides a comprehensive framework for securing habitats, restoring forest connectivity and empowering local communities for conservation of the species.
1: जी, ये दिन उन खतरों को उजागर करने का भी दिन है जिनका सामना दुर्लभ और वन्यजीव पशु कर रहे हैं, और उनके रहने की जगह का खत्म होना, उनके प्राकृतिक वास का खत्म हो जाना, धीरे धीरे जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ता जा रहा है और वन्य पशुओं का गैर कानूनी व्यापार, और क्लाउडेड लेपर्ड की बेहतर सुरक्षा की जरूरत पर जोर देने का भी आज का दिन यह है। और अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि आज उनके पास क्या क्या विशेष खास रिपोर्ट्स हैं।
0: And Vishal, I take you to Jammu first, where in Jammu and Kashmir, the government has approved the construction of two unity malls, one each in Srinagar and Jammu, at a cumulative cost of 255 crore rupees, in a major push to promote local artisans, handicrafts, handloom products and other indigenous goods. We have more on this from our correspondent.
2: In Srinagar, the Unity Mall is proposed to come up at a state-of-the-art facility at Kashmir Hut at an estimated cost of Rs 130 crore, with the project scheduled to be completed within 18 months. The facility will showcase unique One District One Product ODOP and District Export Hub DEH products, providing a common platform for local as well as national products and traditional crafts. A major component of the Srinagar Unity Mall will be a trade facilitation center and export hub, which is expected to provide greater opportunities for artisans, craft producers and entrepreneurs to connect with domestic and international markets. The proposed facility will also include an auditorium cum convention center, providing space for exhibitions, conventions, conferences, trade events and other programs. The project will further feature an amphitheater, retail, commercial marts and food courts, besides a cultural center with an art gallery and dormitory facilities. The Unity Mall in Jammu is expected to serve a similar purpose.

0: creating another major platform for the promotion of local and regional products. Together, the two Unity Malls are expected to strengthen the government's efforts to promote vocal for local while providing a dedicated platform for India's diverse handicraft, handlooms, GI tagged products and regional specialties. This is N. Gulshan Rana for Parikrama from Akashvani Jammu.
1: अनुजा कहते हैं कि बदलाव की शुरुआत जो है वो किसी बड़े मौके से नहीं बल्कि एक छोटे से फैसले से होती है।
2: I totally agree to this.
1: बिहार के औरंगाबाद जिले की नीलू तिवारी ने भी ऐसा ही एक फैसला लिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक प्रेरक कहानी देखी और जो उनके आत्मनिर्भर बनने का आधार बन गई। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और जीविका के सहयोग से कैसे नीलू ने अपने सपनों को नई उड़ान दी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा प्रखंड का तमसी गांव। कुछ महीनों पहले तक नीलू तिवारी की पहचान यहां एक सामान्य गृहिणी के रूप में थी। परिवार की आमदनी सीमित थी लेकिन उनके मन में कुछ करने की इच्छा थी। इसी दौरान सोशल मीडिया पर उन्होंने जीविका से जुड़ी एक महिला की सफलता की कहानी देखी। बस यहीं से उनके मन में भी एक नया सपना जन्म लिया। आज नीलू के यहां नीम, तुलसी, हल्दी, चंदन, मिंट, लेमन, एलोवेरा और चारकोल कॉफी जैसे 5 तरह के हर्बल साबुन तैयार होते हैं। इन साबुनों में हनी, ग्लिसरीन, विटामिन ई जैसे प्राकृतिक तत्व मिलाए जाते हैं। नीलू का कहना है कि उनके उत्पादों में किसी तरह के हानिकारक रसायन का इस्तेमाल नहीं होता।
4: हम 5 तरह का साबुन बना रहे हैं जिसमें एक नीम तुलसी का है, एक हल्दी चंदन है, एक मिंट है, एक लेमन है और एक चारकोल कॉफी, एलोवेरा जेल और हल्दी विटामिन ई के ऑयल है और विटामिन ई और एलोवेरा जेल तो सभी में है।
3: नीलू का सपना अब सिर्फ अपने कारोबार तक सीमित नहीं है। वो चाहती हैं कि आगे चलकर एक बड़ी हर्बल साबुन निर्माण इकाई स्थापित करें, अपने गांव और आसपास की जीविका दीदियों को भी इस रोजगार से जोड़े। परिक्रमा के लिए निधिश्री
2: एंड विशाल। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर डी के शिव कुमार हैज लॉन्च फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट कैंपेन इन बेंगलुरु। द कैंपेन इज एम्ड एट क्लियरिंग फुटपाथ्स, रोड साइड्स, पब्लिक स्पेसेस एंड वेकेंट साइट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डेब्री, मड, डिस्कार्डेड मटेरियल्स एंड अदर लेगेसी वेस्ट दैट हैव एक्यूमुलेटेड ओवर सेवरल इयर्स। वी हैव मोर ऑन दिस फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम बेंगलुरु।
5: The Greater Bengaluru Development Authority is steering the campaign across the city along with other civic agencies. This is an intense drive to reclaim public spaces as footpaths buried under debris will emerge for the public convenience. Since several years, indiscriminate dumping along roadsides has allowed weeds and vegetation to grow, leading to making them off-limits for the pedestrians. These places were infested with snakes, rats and other rodents, causing health hazards and unsafe environment. A survey conducted by the municipal corporation had revealed that more than 1 lakh tons of such waste may exist across Bengaluru in total. Around 100 vehicles are deployed for clearing the waste. All the vehicles with GPS devices will be monitored to see that the waste collected are dumped at designated places. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
1: और अब बात खेलों की। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के असन में शुरू हो गया है। कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है।
2: एंड इन सम बिजनेस न्यूज, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन अ नेगेटिव जोन टुडे, स्नैपिंग अ 4-डे गेनिंग स्ट्रीक। द सेंसेक्स शेड 210 पॉइंट्स और नियरली 0.3% टू क्लोज एट 78,429। द निफ्टी ड्रॉप्ड 159 पॉइंट्स और मोर देन 0.6% टू सेटल एट 24,615।
1: और आइए अब याद करते हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया।
6: वी रिमेम्बर द नेशनलिस्ट लीडर फिरोज शाह मेहता, हु वाज बोर्न ऑन अगस्त 4, 1845 इन मुंबई।
7: मेहता एंटर्ड द लिंकन्स इन 1864 एंड क्वालिफाइड फॉर द बार। आफ्टर बीइंग कॉल्ड टू द बार ही लेफ्ट फॉर होम इन सितंबर 1868। व्हाइल इन इंग्लैंड ही यूज्ड टू विजिट दादाभाई नौरोजी and these visits were to remain as an important influence in molding his liberal outlook. Besides Telang and Badruddin Tayabji, some of his close friends were Ranade, Gokhale, Dinshaw Vacha, Umesh Chandra Banerjee and Bal Mohan Bagle. Education absorbed his interest throughout his life, Firoz Shah Mehta saw in education the means by which India could modernize itself rapidly. He helped in the establishment of a Swadeshi bank, the Central Bank of India.
6: Firoz Shah Mehta is remembered mainly as the founder of the modern Bombay Municipal Corporation, which he fostered and served in a distinguished manner for nearly half a century. He was mainly responsible for the founding of an English newspaper, the Bombay Chronicle, which became an important agency for expressing Indian public opinion.
7: Along with Justice Telang, he founded the Bombay Presidency Association in 1885 and served as its secretary. Firoz Shah Mehta was one of the founding members of the Indian National Congress. He presided over the Congress session held in Kolkata in 1890.
1: और अब याद करते हैं उन व्यक्तित्वों को जिनकी आज पुण्यतिथि है या आज ही के दिन जिनका जन्म हुआ था. और इस कड़ी में सबसे पहला नाम जो आज हमारे सामने है वो है जाने माने हिंदी सिनेमा के बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार किशोर कुमार का. जी, किशोर कुमार, उन्होंने अभिनय, संगीत, निर्देशन और फिल्म निर्माण किया. आज इनका जन्मदिन है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी आवाज़ बनी. चार दशक तक उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और मन्ना डे जैसे दिग्गजों के बीच अपनी एक अलग जगह बनाई.
2: यस विशाल, द मैन हु सैंग एवरी इमोशन वी डिडंट हैव वर्ड्स फॉर. सम सॉन्ग्स नेवर ग्रो ओल्ड, दे सिंपली फाइंड न्यू लिसनर्स.
8: मैं गाना गाऊं? अरे भाई, मुझे गाना कहाँ आता है?
9: The undying talisman of Indian cinema, the yodeling king, Kishore Kumar. Gata.

0: He was a performer on All India Radio and Doordarshan who participated in Sangeet Sammelans, outdoor broadcasts and national programs innumerable times.
1: और आज ही जन्मदिन है बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार, गीतकार, पटकथा लेखक और निर्देशक विशाल भारद्वाज का। गॉड मदर और इश्किया फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया और इसमें सबसे जो चर्चित फिल्में रही हैं मकबूल रही है, ओमकारा रही है और इसके अलावा कई फिल्मों में इन्होंने संगीत भी दिया, सत्या, चाची, 420, मकबूल, ओमकारा, इश्किया और सात खून माफ और हैदर इनमें प्रमुख फिल्में हैं और सुनते हैं एक इन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ गीत फिल्म गॉडमदर से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा करार दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते। पीओजेके में जो हो रहा है वो जनता का विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सेना द्वारा अंधाधुंध हत्याएं हैं।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दुनिया को मानवाधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडी उपदेशों को देखना चाहिए। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। विधेयक में प्रावधान है कि यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना पंजीयक को उसके घटित होने के एक वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष के भीतर दी जाती है तो जन्म या मृत्यु की प्रमाणिकता के सत्यापन के बाद ही जिला मजिस्ट्रेट, उपविभागीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से इसका पंजीकरण किया जा सकता है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि मांगी है। यह राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि ये योजना लोगों को सशक्त बना रही है। ये योजना भारत के स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन अब छत पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। सरकार परीक्षण अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का उपयोग शुरू करेगी। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली में कहा कि ऐसी अवसंरचना से नमूनों के परीक्षण की लागत कम होगी, इससे सटीकता और पता लगाने की क्षमता में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक कम होकर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में आज हल्की वर्षा हो रही है। ओडिशा ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन किर्तामोर्न को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत अभिनंदन आप सभी का गाते गुनगुनाते शो में जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता और एक बार फिर गाते गुनगुनाते में लेकर आई हूं सिलसिला सवाल और जवाब का। सवाल मैं पूछूंगी आपसे और जवाब आप लिखकर भेजेंगे हमारी ईमेल आईडी पर। तो इससे पहले कि मैं आपसे पहला सवाल पूछूं, गाना सुनवा देती हूं आपको हम दिल दे चुके सनम से।

तो पहला सवाल आप सबके लिए है सुभाष घई की एक फिल्म से, जिसे अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर। ये कहानी है मानव की जो मानसी से मिलता है। इस मल्टी स्टारर फिल्म में आलोक नाथ और अमरीश पुरी जो है उन्होंने हीरो हीरोइन के पिताओं की भूमिका जो है वो निभाई है। जब हीरो हीरोइन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो वो अपने परिवारों से मिलने की जो प्रक्रिया है इसे शुरू करते हैं, मिलना चाहते हैं और शादी की इच्छा जाहिर सी बात है कि वो अपनी उनके सामने रखते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाता है कि उनके जो रिश्ते हैं ना वो उलट से जाते हैं। कब, कैसे और कौन सुलझाता है उलझी हुई कड़ियों को, इसी के इर्द गिर्द घूमती है फिर इस फिल्म की कहानी। अगर आप इस कहानी को पहचान चुके हैं, इसका नाम जान चुके हैं, इन किरदारों को फिल्म के साथ समझ चुके हैं तो लिखकर भेजिए फिल्म का नाम fmgoldaiidelhi@gmail.com पर। जी हाँ, यही है हमारा ईमेल आईडी जिस पर आपको फिल्म का नाम लिखकर भेजना है। तब तक सुनते हैं रोजा फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, जिसे मैं ये कहना चाहूंगी कि इस ट्रैक में वादियों की खूबसूरती को लिरिक्स में क्या खूब उकेरा है।

आप में से बहुत लोगों ने सही जवाब हमें लिखकर भेज दिए हैं। तो पहला सही जवाब जो हम तक पहुंचता है, वैसे मैं बता दूं दो फिल्मों में कन्फ्यूजन यहां दिख रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि सही नाम के साथ 70-80% हमारे लिसनर्स हैं, और कुछ लोग जो कन्फ्यूज्ड हैं उन्होंने परदेस लिखा है। तो अब तो पता चल गया है आपको कि फिल्म का नाम परदेस नहीं है, और क्योंकि सुभाष गई की हैं दोनों फिल्में तो हो सकता है कि ये कन्फ्यूजन इस कारण हुआ हो। वैसे मैं आपको फिल्म का नाम बता देती हूँ, फिल्म का नाम है ताल, और नाम अनाउंस होने के बाद जो मैसेज आएगा उसे मैं शामिल नहीं करूंगी। नागेंद्र ठक्कर ने हमें पहला सही जवाब लिखकर भेजा, दूसरा जवाब भेजने वाले हैं सही प्रणव शिंदे मुंबई से, और उसके बाद पंकज कुमार भी बिल्कुल सही बताते हैं तीसरे नंबर पर। बहुत बहुत बधाई आप तीनों को। इसके बाद रोहित ठाकुर, ललित कुमार नोएडा से, भगवती सिंह दिल्ली से, जगदीश बजाज विकासपुरी दिल्ली से लिखते हैं सही जवाब, रंजीत कुमार, गिरीश, वैशाली, अंजलि, रिया, जीत वडोदरा से सही जवाब लिखकर भेजते हैं, और प्रबुद्ध सिंह और पुष्पा सिंह सिन्हा का वाराणसी से बिल्कुल सही जवाब आता है, नवीन भाटिया है मोती नगर से, इद्रिस सैफी मुलाहेड़ा गांव एनसीआर से, पुष्पेंद्र सिंह और योगेश नागर ने बिल्कुल सही बताया, वैशाली, ज्योत्सना शाणे, अंजलि निम्बकार का भी सही मैसेज आता है, बबलेश पवार हैं बाड़मेर से, और सही जवाब देने वालों में हैं सुदर्शन, अनीता, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान बुलंदशहर से, अजीत भावसर गुजरात से, प्रमिला भावसर के साथ बिल्कुल सही बताते हैं जवाब, और सही जवाब देते हैं फारूक, फैजी, फरहीन, फाहिरा, ताहिरा। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और ताल फिल्म में जैसा कि आप जानते ही हैं, आपने नाम भी बताया, जो नहीं बता पाए उनको मैं बता देती हूं, अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय, अक्षय खन्ना इस फिल्म में रहे, और मानव और मानसी की बात हुई तो मानव कुमार का जो रोल है वो प्ले किया अक्षय खन्ना ने, और ऐश्वर्या राय ने मानसी का रोल प्ले किया, और मानव का रोल अक्षय खन्ना ने प्ले किया। फिलहाल अगला जो सवाल है वो आप सबके लिए मैं जो लेकर आई हूँ वो मिड 90s की एक सुपरहिट फिल्म से है, जो एक मल्टी स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया सूरज बड़जात्या ने और प्रोड्यूस किया राजश्री प्रोडक्शंस ने। इस फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के साथ दो पुरस्कार जीते। इसके अलावा 40th फिल्म फेयर अवार्ड में इस फिल्म को 14 नॉमिनेशंस मिले, जिनमें से 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने जीते। वैसे मैं आपको बता दूं कि शादियों में इस फिल्म के गाने बहुत प्ले होते थे उस समय में, और आज भी प्ले होंगे तो उतने ही तरोताजा ये गाने इस फिल्म के लगते हैं। ताल फिल्म से गाना मैं आपको सुनवा रही हूं, आप सुन रहे होंगे बैकग्राउंड में, तब तक आप इस फिल्म का नाम लिखकर भेजिए जिसकी बात मैंने अभी आपसे की।

0: आप लोगों को पता है कि जो हमारा इनबॉक्स है जहां आप अपने मैसेजेस भेजते हैं वो इस समय भर चुका है आपके सही जवाबों से। उन्हें शामिल करूंगी मैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

गाते गुनगुनाते में आपके ढेर सारे सही जवाब वाले मैसेजेस मेरे सामने हैं। हमने एक सवाल पूछा था आपसे ब्रेक पर जाने से पहले और उसके सही जवाब, पहला सही जवाब जो हमें लिखकर भेजा है, मुझे लग रहा है शायद ज्यादा इजी तो नहीं आपसे पूछ रही मैं, क्योंकि आप सबने इतने सारे सही जवाब भेजे हैं, बस इक्का दुक्का होगा जो नहीं लिख पाए होंगे या जिन्होंने, जैसे सूरज बढ़ जातिया की बात हो रही है तो उन्हीं की कोई और फिल्म लिख दी है। खैर मैं आपको बताती हूँ, पहला सही जवाब दिया है आदित्य कलेले ने, उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं नवीन भाटिया साहब मोतीनगर से, और फिर इसके बाद सही जवाब देते हैं प्रणव शिंदे। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, और मुबारकबाद उन्हें भी जिनके नाम मैं अब शामिल करूंगी। नागेंद्र ठक्कर कौशल नोएडा से हैं, धीरज अरोड़ा हैं हमारे साथ सही जवाब देने वालों में, अमित नरूला रोहित ठाकुर गुरुग्राम से, संकेश पाटिल पंकज कुमार ललित कुमार नोएडा से, राजेश मानकलाल शाह और आपके साथ हैं परिमल झा भी, अतुल अग्रवाल ने गाजियाबाद से बिल्कुल सही बताया है, इदरिस सैफी हैं मुल्लाहेड़ा गांव एनसीआर से, और इसके बाद मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान आपने भी बिल्कुल सही पहचाना है, आशीष मिश्रा हैं हमारे साथ, डीबी राणा साहब ने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है नेहरू विहार से, रंजीत कुमार गिरीश अजिंक्य बम वैशाली बम आप सबने वडोदरा से बताया है, जगदीश बजाज ने विकासपुरी से सही जवाब लिखकर भेजा है, रवि वैश है हमारे साथ, और उमेश कुमार साहब खयाला से बताते हैं, सुशील आर पठानिया का भी सही जवाब हमारे पास आता है, और चंदा पठानिया आपके साथ हैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, पहली बार मैंने अपने शो में आपका नाम पढ़ा है। अजीत भावसार हैं विरमगाम से, आपके साथ प्रमिला भावसार भी हैं, और सही जवाब देते हैं ईमन डे और रितेश कुमार शर्मा, आप दोनों का भी स्वागत है। वैशाली ज्योत्सना बम वैशाली ज्योत्सना शाणे आपने भी बिल्कुल सही बताया, जयंत टी नाशिकार पुष्पेंद्र सिंह बबलेश पवार सुदर्शन सिमरन अनीता मुखी आप सबने भी बिल्कुल सही सही पहचान लिया है। हम आपके हैं कौन, ये है वो फिल्म, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसने ये फिल्म नहीं देखी होगी, मैं तो उनमें से हूं जिसने ये फिल्म जितनी बार टीवी पे आती है और मैं उस समय अवेलेबल हूं, टीवी चल रहा है तो जरूर देखती हूं, बहुत ही मतलब मजेदार फिल्म है, और इसका गाना मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन इससे पहले अगला सवाल आपसे जरूर पूछूंगी। 90s में विक्रम भट्ट की एक एक्शन फिल्म आई जो कमर्शियली सक्सेसफुल रही, फिल्म फेयर अवार्ड्स में 6 नॉमिनेशंस इस फिल्म ने अपने नाम किए। ये कहानी है सिद्धार्थ और अलीशा की। सिद्धू यानी सिद्धार्थ एक बॉक्सर है। मेन लीड के अलावा फिल्म में दीपक तिजोरी, शरद सक्सेना, मीता वशिष्ठ, दलीप ताहिल और आशुतोष राणा भी हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग जो है का जौहर इसमें दिखाया है फिल्म में। एक और क्लू आपके लिए ये है कि हीरोइन की आवाज इस फिल्म में डब की गई थी, यानी कि जब हमने फिल्म देखी तो हीरोइन की ओरिजिनल वॉयस नहीं थी, वो डब्ड आवाज थी, और ऐसा कहा गया था कि जो उनकी ओरिजिनल वॉयस है वो उनके कैरेक्टर के साथ जा नहीं रही थी, इसलिए उसे डब कराया गया। अगर आपने पहचान ली है फिल्म का नाम तो आपको fmgoldairdelhi@gmail.com पर लिखकर भेजना है इस फिल्म के नाम को। और मैं आपको बता दूं कि हम आपके हैं कौन क्योंकि बहुत ही चर्चित फिल्म है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि इसमें माधुरी दीक्षित सलमान खान रहे और खूबसूरत इन लोगों ने अभिनय किया, इनके साथ मुनीश बैल अनुपम खेर आलोक नाथ ये सब भी रहे, और बहुत ही अच्छी कह सकते हैं कि फैमिली ड्रामा रोमांटिक फिल्म है। इसी से गाना सुनवा रहे हैं आपको, दीदी तेरा देवर दीवाना, लता जी और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में।

0: और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

बहुत सारे सही जवाब इस सवाल के भी हमें मिले हैं, और मजे की बात यह है कि इस बार जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले लोग हैं ना, वो सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो गया है। पहला सही जवाब दिया है इस बार संकेश पाटिल ने, इसके बाद ललित कुमार नोएडा से दूसरे नंबर पर आते हैं, और अमित नरूला हैं तीसरा सही जवाब देने वाले। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई, और बाकी श्रोताओं को भी बधाई जिनके नाम मैं अब शामिल करूंगी। रोहित ठाकुर हैं गुरुग्राम से, राजेश मानक लाल शाह, परिमल झा हैं हमारे साथ, इदरिस सैफी हैं, मुक्ता बरगोटा ने भी सही जवाब लिखकर भेजा है, भगवती सिंह हैं दिल्ली से, और प्रणव शिंदे मुंबई से सही जवाब लिखकर भेजते हैं, जगदीश बजाज विकासपुरी से, ईमान दे और रितेश कुमार शर्मा ने भी बिल्कुल सही बताया, गिरीश बम अजिंक्य बम, रंजीत कुमार, धीरज अरोड़ा गाजियाबाद से, तरुण गर्ग भी बिल्कुल सही जवाब देते हैं, सुदर्शन अनीता सिमरन मुखी सोनीपत से, जयंती नाशिकार नूतन है मुंबई से, डीबी राणा नेहरू विहार दिल्ली से, सुशील आर पठानिया और चंदा पठानिया हमीरपुर से सही जवाब देते हैं, पंकज कुमार का भी सही जवाब आया है, और अजीत भावसार हैं प्रमिला भावसार के साथ, बबलेश पवार बाड़मेर राजस्थान से, मोहम्मद सईद अबासी निगत परवीन शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान, और इदरिस सैफी का नाम शायद दूसरी बार मैं ले रही हूं, फारूक अली खान फैजी फराज फरहीन फाहिरा ताहिरा आपने भी बिल्कुल सही बताया, और राजकोट से जैमिन जैन ने बिल्कुल सही पहचान लिया है कि जवाब है गुलाम, जिसमें एक्टिंग की है रानी मुखर्जी और आमिर खान ने। आइए सुनते हैं ऐसी फिल्म का ये गाना।

0: आपको छोड़े जा रही हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक के साथ, यलगार फिल्म से। इसी के साथ अपराजिता को दीजिए यही विदा। अपना और अपनों का बहुत खास ख्याल रखिए, मौसम बदल रहा है, ख्याल रखने की जरूरत है।
1: मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूँ।
2: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

रिपीट की शायद जरूरत ना पड़े। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा करार दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा

0: ये खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग में मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है और ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल अब शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि यह योजना लोगों को सशक्त बना रही है। ये योजना भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 25,000 से अधिक केंद्रीय सरकारी भवन और 81,000 से अधिक राज्य सरकारी भवन अब छतों पर लगे सौर पैनल से संचालित हो रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार को बनाए रखा है। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी और एलएनजी की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सरकार परीक्षण अवसंरचना को और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल शुरू करेगी। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली में कहा कि ऐसी अवसंरचना से नमूनों के परीक्षण की लागत और कम होगी। इससे सटीकता और पता लगाने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक कम होकर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसा नला और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है। वर्ष 2014 में लगभग 3 गीगावाट की स्थापित क्षमता से आगे बढ़ते हुए 30 जून 2026 तक देश की सौर क्षमता 162 गीगावाट से भी अधिक हो चुकी है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 31 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। इसे भारत की सौर ऊर्जा क्षेत्र में एक नई और महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये भारत की सौर ऊर्जा क्षमता को किस प्रकार नई गति देगी, पिछले एक दशक में देश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कैसी प्रगति की है और स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा तथा विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ये पहल कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पिछले एक दशक में नीतिगत समर्थन, बुनियादी ढांचे के विकास, विनिर्माण और लोगों की भागीदारी ने मिलकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इस बदलाव को संभव बनाया है। सोलर पार्क, रूफटॉप सोलर प्रणाली और सौरीकृत कृषि पंप जैसी पहलों ने देश में सौर ऊर्जा के प्रसार को तेज किया है। भारत की इसी तेज प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये भारत के सौर क्षेत्र को किस तरह नई दिशा देगी।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के तहत जलाशयों पर 5000 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। इन परियोजनाओं में ऐसी व्यवस्था भी होगी जिससे सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली को कम से कम 2 घंटे तक की आपूर्ति के लिए सुरक्षित रखा जा सके। इसका लाभ ये होगा कि जब बिजली की मांग अचानक बढ़ेगी तभी सुरक्षित रखी गई बिजली का उपयोग किया जा सकेगा। इससे राज्यों को बिजली की आपूर्ति बेहतर ढंग से बनाए रखने में मदद मिलेगी और लोगों तक निर्बाध बिजली पहुंचाना आसान होगा। ये योजना मौजूदा जलाशयों और औद्योगिक तालाबों का उपयोग करेगी। इससे भूमि पर दबाव कम होगा और ऊर्जा भंडारण के साथ बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता भी बेहतर होगी। 5000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट वाली ये योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू की जाएगी। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा किए गए आकलन के अनुसार भारत के जलाशयों और उपयुक्त अंतरदेशीय जल निकायों में लगभग 102.18 गीगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता की संभावना है। इस योजना से हर वर्ष लगभग 10 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है। इस योजना के लागू होने से संबंधित क्षेत्रों में 16,000 से 17,000 तक रोजगार के अवसर पैदा होने की आशा है। फ्लोटेशन सिस्टम, पीवी सेल मॉड्यूल और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का लाभ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाएगा। इसके माध्यम से भारत की फ्लोटिंग सौर क्षमता वर्तमान में लगभग 700 मेगावाट से बढ़कर 5000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी।
0: श्रोताओं, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में कितनी महत्वपूर्ण है और इसे देश के ऊर्जा क्षेत्र को किस प्रकार लाभ मिलेगा, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आकाशवाणी समाचार ने वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश की जो सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनी है NTPC, उन्होंने अपने कई परियोजनाओं में फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाए। वहां पर उनके पास ऑलरेडी जल स्रोत उपलब्ध है, जल स्रोत उनके लिए जो राख है उसको ठंडा करने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां पर और क्या कोई इस्तेमाल हो सकता है। अब यही व्यवस्था पूरे देश भर में जितने भी जलाशय हैं, जितने भी नहर हैं, जितने भी औद्योगिक पार्क में जो जल स्रोत हैं उनके इस्तेमाल करने की बात है। और मैं बताऊं कि फ्लोटिंग सोलर पैनल एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके लिए सबसे सस्ती दर पर बिजली, आप कहेंगे कि सबसे सस्ती बिजली सौर ऊर्जा से, शायद कई लोगों को लगेगा कि नहीं, हो ही नहीं सकता क्योंकि सौर ऊर्जा महंगी कही जाती है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जमीन की जो लागत है वो इसमें आपको नहीं चुकानी है। दूसरा ये है कि कच्चे माल की कोई लागत नहीं चुकानी है। आपके पास आपने एक पैनल लगाया, आपके लिए प्रकृति ने जो आपको कच्चा माल दिया है उसका इस्तेमाल करना है। आप उन सभी चीजों को अगर घटा देंगे तो वास्तविक जो लागत होगी उसमें कमी आएगी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। 5000 मेगावाट की जो बात की जा रही है और हमारे यहाँ चूंकि अभी तक जो है वो ताप पे निर्भरता बहुत ज्यादा, जिसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, लेकिन हमें विकल्प के तौर पे भी चलना होगा क्योंकि हमारे यहाँ मांग बढ़ रही है।
0: श्रोताओं, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना भारत की सौर यात्रा का नया अध्याय है, लेकिन इस उपलब्धि की नींव पिछले एक दशक में रखी गई राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत के बाद सोलर पार्क योजना और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कार्यक्रम जैसी पहलों ने देश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया। आइए अब जानते हैं कि इस दौरान भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: वर्ष 2025 में भारत ने 37 गीगावाट नई सौर क्षमता जोड़ी और वार्षिक वृद्धि के मामले में अमेरिका से आगे निकल गया। इसी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर विकास बाजार बनकर उभरा है। आज

0: राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी हैं। देश में बड़ी सौर परियोजनाओं से लगभग 119 गीगावाट क्षमता जुड़ी है। वहीं रूफटॉप सोलर से लगभग 28 गीगावाट क्षमता विकसित की जा रही है। भड़ला सोलर पार्क, पावागढ़ सोलर पार्क और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट इस बदलाव की पहचान बन चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा। इस दौरान देश ने 44.61 गीगावाट नई सौर क्षमता जोड़ी, जो पिछले वित्त वर्ष में जोड़ी गई क्षमता से लगभग दोगुनी है। इसी अवधि में सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 2014 के लगभग 2.5 गीगावाट से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 172 गीगावाट तक हो गई। सरकार ने केवल बिजली उत्पादन पर ही नहीं बल्कि सौर उपकरणों के घरेलू निर्माण पर भी जोर दिया है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI योजना और अनुमोदित मॉडल और निर्माताओं की सूची यानी ALMM जैसी पहलों से देश में सौर उपकरणों का निर्माण बढ़ा है तथा आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी प्रगति हुई है। सौर ऊर्जा को हर घर और हर खेत तक पहुंचाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जून 2026 तक 43 लाख परिवार रूफटॉप सोलर से जुड़ चुके हैं। वहीं PM कुसुम योजना के माध्यम से करीब 11.5 लाख सौर कृषि पंप लगाए गए हैं और 21 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: श्रोताओं, भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इसके साथ ही देश स्वच्छ ऊर्जा और नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन सभी पहलुओं पर आकाशवाणी समाचार ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशालय से जुड़े डॉक्टर मोहम्मद रिहान से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: पिछले 10-12 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी से हम कहते हैं, जिसमें कि हम सोलर विंड इनको मानते हैं, उसके अंदर बहुत काम किया है और बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है हमारे ऊर्जा सिस्टम में। जो सोलर हमारे पास 10-12 साल पहले 1000 मेगावाट भी नहीं था, आज हम 180 हजार मेगावाट से ऊपर चले गए हैं और हमारे सामने एक बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड लक्ष्य है। 2030 तक हम कितना करेंगे, 35 तक, 2047 तक और 2070 तक। तो हमारी इसमें बड़ी स्ट्रांग और कंसिस्टेंट पॉलिसी थी और हमारे देश के जो इसमें लक्ष्य भी थे ना, वो बड़े एम्बिशियस रखे गए कि 175 2022 तक करना था, फिर 500 गीगावाट 2030 तक करना है, फिर 2047 का भी है। 2070 में आप जानते हो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत प्रॉमिस कहे हैं, उसमें से एक ये है कि 2070 तक हमें नेट जीरो का मतलब है कि हम एमिशन कम करेंगे अपने, और अगर कुछ होंगे भी तो उनको एनवायरमेंट में जाने से पहले ही कैप्चर कर लिया जाएगा। तो ये भी टारगेट है। तो इसमें क्या है कि जो बिजली हम बना रहे हैं सोलर और विंड से, उसको इस्तेमाल करके अगर हम हाइड्रोजन भी बनाएंगे, एक तो हमने बिजली के एमिशंस को खत्म कर लिया और दूसरे हमने जो हाइड्रोजन की वजह से एमिशंस हो सकते थे उन्हें खत्म किया। हमें एक अपनी ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के मामले में हम मोस्टली डिपेंडेंट थे यानी आयात के ऊपर, अब सौर ऊर्जा को कहीं से आयात नहीं करना है आपको, पवन ऊर्जा को कहीं से आयात नहीं करना, लेकिन उसके जो कंपोनेंट है, पैनल जो इस्तेमाल होते हैं, वो आपको बनाने, तो वो उसके ऊपर बड़ा काम हुआ है और पैनल में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं उस सेल में और दूसरे कंपोनेंट में।
1: श्रोताओं, आज भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसी पहलों के माध्यम से दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। देश के भीतर सौर ऊर्जा के बढ़ते विस्तार और वैश्विक स्तर पर बढ़ती भागीदारी दोनों ही भारत की दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा नीति को मजबूत आधार दे रहे हैं। भारत अपनी पंचामृत प्रतिबद्धताओं और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सौर ऊर्जा इस परिवर्तन की एक प्रमुख आधारशिला बनी रहेगी। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।

इदमियं आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। संसदा अद्य जन्म मरण पंजीकरण संशोधन विधेयकं पारितम्। ओडिशा राज्ये प्रमुख नदीनाम आप्लवन

0: ह्रासेन आपत् स्थिति शमम् उपैति। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रस्य बाग जनपदे पाकिस्तानी सेनायाः निरपराध नागरिका नालक्ष्य गोलिका प्रहारेण अशांतिः वर्धते। होमोर्स जलमार्गे व्यापारिक पोते नूतन आक्रमणेन अमेरिका ईरान देशयोः युद्ध समाप्तये प्रचलन्त्यां शांति वार्तायां अनिश्चितता उत्पन्ना। अपि च आसान नगरे आयोजितायां कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगितायां भारतीय क्रीडकाः स्वीय क्रीडां प्रारब्धवन्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसदा जन्म मृत्यु पंजीकरण सम्बद्धः उपयुक्तः विधेयकः 26th-2000 पारितः। अद्य राज्यसभयापि अस्य विधेयकस्य अनुमोदनं कृतम्। लोकसभया एतद् विधेयकं पूर्वमेव पारितम्। गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः उच्चसदने एतद् विधेयकं उपस्थापितवान्। विधेयकस्यास्य अनुमोदनानन्तरं राज्यसभा आदिनाय स्थगिता। इतः प्राग् यदा मध्याह्ने 12 प्रथम स्थगनानन्तरं राज्यसभा पुनः समवेता तदा सभापतिः सीपी राधाकृष्णन इत्यसौ विपक्षसदस्यानां कोलाहलस्य मध्ये एव प्रश्नकालं प्रारब्धवान्। अनेकैः सदस्यैः पृष्टानां प्रश्नानां मन्त्रिभिः उत्तराणि प्रदत्तानि। विपक्षीणां विरोधोद्घोषेषु सभापतिना कार्याचरणं 2 यावत् स्थगितम्। उच्चसदनस्य उपवेशनावधौ विपक्षनेता मल्लिकार्जुन खड्गे अयोध्या राम मन्दिरात् दानचौरस्य विषयम् उपस्थापितवान्। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजुः प्रावोचत् यत् अयोध्यायां राम मन्दिरस्य विरोधं कुर्वन्तौ कांग्रेस समाजवादी पक्षौ अद्य दानचौर्यस्य मिथ्यारोपैः जनसामान्यं भ्रामयितुं प्रयतेते। रिजिजुः अकथयत् यत् एतत् सदनं सर्वेषामस्ति, कांग्रेस दलं च उद्दिश्य समयस्य दुरुपयोगं एते कुर्वन्ति।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते। अपनी तरफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: अपरत्र लोकसभया अद्य विनियोग विषयकः विधेयकः 26th-2000 पारितं गतः। विधेयकस्य अनुमोदनानन्तरं लोकसभा आदिनाय स्थगिता। अत्रावसरे वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनित्येषा अद्य कराधान अन्य विधि विधेयकं 26th-2000 सदने प्रास्तवीत्। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणमधिकृत्य अन्येषु प्रकरणेषु च विपक्षीणां सतत अवरोधेन लोकसभायाः कार्याचरणं बाधितम् अभवत्। संसदी एनडीए दलस्य मंगल मिलन रणनीतिक उपवेशनं सम्पन्नम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह शीर्षनेतारः नवगठित एनसीपीआई दलस्य सांसदाः च उपस्थिताः आसन्। संसदी मंगल मिलन प्रसंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संघस्य मंत्रणा सभा अपि संजाता। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। ओडिशा राज्ये महानद्याः जलस्तरस्य ह्रासेन सह जलप्लावन स्थितिः शमम् उपैति। यद्यपि जलमग्न क्षेत्रेषु अद्यापि सहस्रशः जनाः जलावरोधस्य कष्टम् अनुभवन्ति, तथापि सर्वकारस्य आपद्रक्षक बलैः भोजन चिकित्सा सेवानाम् आपूर्तिः सुष्ठु क्रियते। आशास्यते यत् आगामी 2 दिवसेषु स्थितिः पूर्णतया सामान्यं रूपं धारयिष्यति। अपरत्र केरलराज्यस्य अष्टसु जनपदेषु अद्य अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना उद्घोषिता।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार एके भट्टाचार्य. एके भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस है जिसे लेकर मौजूद हैं निहारिका भुवानिया.
0: Before we move on to the stories, let's first take a look at the headlines for this evening. Benchmark domestic indices snap 4-day gaining streak. Sensex drops over 200 points. Nifty settles at 24,615. Global crude oil prices decline. And Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee to announce repo rate decision tomorrow.
1: घरेलू शेयर बाजार में पिछले चार सत्रों से जारी खरीदारी का सिलसिला आज थमा. सेंसेक्स 200 अंक से अधिक लुढ़का. निफ्टी 24,615 दर्ज हुआ. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम नीचे आए और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति कल रेपो दर फैसले के बारे में घोषणा करेगी.
0: And Manoj, I feel before we move forward, we should also make something very important known to our listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. And we further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment before taking any financial decision.
1: और आइए अब शुरू करते हैं घरेलू बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में लगातार चार दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला आज थम गया और प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 210 अंक यानी 0.27% घटकर 78,429 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक यानी 0.64% नुकसान के साथ 24,615 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% घाटे में रहा, जबकि खरीदारी से स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 0.2% की वृद्धि देखने को मिली.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन नेगेटिव जोन टुडे, स्नैपिंग अ 4-डे गेनिंग स्ट्रीक अहेड ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीट डिसीजन. The Sensex shed 210 points or 0.27% to close at 78,429. The Nifty dropped 159 points or 0.64% to settle at 24,615. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index fell by 0.3%, while the Small-Cap 100 Index gained 0.2%. Earlier, the markets opened on a mixed note following the implementation of the new closing auction session, which was introduced yesterday. The Nifty and Sensex witnessed divergent movements during the first half of the trading session. However, both indices remained under pressure in the latter half. The Nifty eased significantly in the final minute after the conclusion of the closing auction session.
1: आइए नजर डालते हैं सेंसेक्स पैक में सम्मिलित 30 कंपनियों के प्रदर्शन पर. आज 30 में से 16 कंपनियों के शेयर लाभ के साथ बंद हुए. सबसे अधिक बढ़त वाली कंपनियों में ट्रेंट और बजाज फाइनेंस के शेयर सम्मिलित रहे. इनमें 1.1% की वृद्धि देखने को मिली. भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स को 0.9% का और टाटा स्टील को 0.6% का मुनाफा हुआ. उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रही हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके शेयर 1.7% नीचे आकर बंद हुए. एनटीपीसी को 1.6% और एचडीएफसी बैंक के भाव 1.5% नीचे आकर बंद हुए.
0: With that, let's also take a look at the sectoral indices on the BSE. 19 out of 28 sectors ended in negative zone. Among the top underperformers, insurance plunged 2.1%. Realty as well as housing finance shed 1.2% and utilities dropped 0.6%. In contrast, capital goods gained 1%, metal rose 0.9% and industrials added 0.5%. The overall market breadth at the BSE was

0: negative as shares of 2,128 companies declined. 2,108 advanced and 196 remained unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 4 पैसे कमजोर हुआ. 95.38 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. एक ही भट्टाचार्य जी, सबसे पहले हम आज की जो गतिविधि रही है शेयर बाजार की, हलचल रही, उस पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. खासतौर से हमने पिछले कुछ सत्रों से, विशेष रूप से कल भी देखा और आज भी देखा, कि अंतिम क्षणों में बाजार में अपेक्षा के बदलाव काफी तेज रह रहा है. क्या प्रमुख कारण रह रहे हैं इसके?
2: देखिए, जो मार्केट का जो जो ट्रेंड जो है वो मैं समझता हूँ कि पिछले कई दिनों में, बल्कि कई सप्ताहों से, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुआ है. मैं समझता हूँ कि जो कल का जो मार्केट जो था उसमें जो चढ़ाव हुआ था उसमें उसका कारण भी इंटरनेशनल था, क्योंकि ट्रंप साहब का ऐलान में एक आशा था कि शायद ये एग्रीमेंट, सीज फायर एग्रीमेंट अब तय हो जाएगा, उसीलिए कल मार्केट चढ़ा रहा. पर आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि उसमें दो प्रश्न उठ रहे हैं. एक तो है कि कितनी जल्दी ये सीज फायर एग्रीमेंट रेजोल्यूशन होगा इसका, और दूसरा है कि क्योंकि उसमें डाउट से क्रूड ऑयल प्राइस में इंक्रीज हुआ है, दाम बढ़ गए हैं उससे. और तीसरी बात जो है डोमेस्टिक फैक्टर एक आया है उसमें, कि जो LIC जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो जिसको लिस्टिंग हुआ था एक दो साल पहले, उसका जो गवर्नमेंट के पास अभी भी उसका 96.5% शेयर सरकार के पास है, और सरकार ने आज से चालू तय किया है कि करीबन 6.5% और जो LIC का शेयर वो मार्केट में उसका वितरण ऑफर फॉर सेल में जाएगा. उससे काफ़ी LIC के ऊपर भी प्रेशर आया, क्योंकि उनका दाम करीबन 7% नीचे आ गया, और जिस प्राइस में वो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं शेयर्स, उस प्राइस में दाम वो आ गया है. और उसको खरीदने के लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी थोड़ी बहुत बिकवाली भी हुई है. सो ये विभिन्न कारणों के लिए मैं आज की तारीख में जो स्टॉक मार्केट में जो जो उतराव चढ़ाव जो हुआ है इसका कारण ये है. और अंतिम आधे घंटे में जो हो रहा है वो, जैसे आपने भी कहा कि एक जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है उसका, हालांकि वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए है सिर्फ, पर उसका एक प्रभाव ओवरऑल ट्रेडिंग में भी आया है.
0: So, do you identify any other triggers behind today's market movement in the benchmark indices, first of all? And second, perhaps now's the right time to simplify the closing auction session for our listeners. So, if you can briefly explain it in one or two lines for our listeners to understand that better.
2: Well, you know, as far as what impacted the stock market today, I've already said, and it is essentially a combination of external factors and domestic factors. External factors being little uncertainty over how the West Asian crisis will get resolved. And the domestic factors, there were two essentially. One was the offer for sale being starting for LIC, which is a huge big company, stocks. So 6.5% stocks going to be floated. That has put some pressure on the market. The second domestic factor is that tomorrow the Monetary Policy Committee will come out with its stance or rate decision. Although the market expects that there will be no rate increases, there is some sort of nervousness that has gripped the market. So these are the factors that influence the market developments today. As far as the closing auction session is concerned, this is a new device which is to ensure fair price discovery. दैट इज वन ऑफ द की ऑब्जेक्ट

0: has been changed, and it is an auction driven, and a cap has been kept that the price to be determined will have a minus plus minus of 3%. So you are not seeing so much of fluctuation. There is transparent price discovery, and this benefits particularly the passive index funds. So it doesn't really impact the people, investors, retail investors who are coming into the market. It is largely aimed at addressing the day traders' concerns and convenience.
1: आपने बहुत अच्छी तरह जो ये एक नई कह लें कि प्रथा शुरू हुई है बाजार में, यह कुल मिलाकर बाजार में जो एक अनिश्चितता थी और मैनिपुलेशन हो रहा था उसको रोकने की ये कवायद है. इसमें जो नीलामी की प्रक्रिया होगी, क्लोजिंग ऑक्शन, वो क्या दर्शाती है और उसका निर्णय कौन लेगा, कौन से पक्ष उसको तय करेंगे?
0: ये जो स्टॉक मार्केट जो है उनको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को उनको तय करना पड़ेगा. उनको ये जो आधे घंटे में जो सारी जो ट्रेड्स जो आएंगी उनकी एक एवरेज बनाया जाएगा. उसमें पहले जो वॉल्यूम बेस्ड जो एक एवरेज प्राइस निकालते थे वो अब वॉल्यूम बेस्ड नहीं होगा, और दामों की जो तय होगी वो 3% ऊपर या नीचे के अंदर ही रहेगा. इसका मतलब जो पहले जो होता था कि बहुत जो मार्केट में सारा दिन एक प्राइस गया और लास्ट मिनट में वो प्राइस बदल के जी, उसको इन्फ्लुएंस करता था मार्केट को, वो होना मैं समझता हूं कि वो कम हो जाएगा. और ये एक सुधार के तौर से, रिफॉर्म के तौर से एक काफी अच्छा एक कदम है
1: जी. यहाँ पर हम ये भी समझना चाहेंगे कि बाजार में चार दिनों से हम तेजी देख रहे थे, आज भी यदि हम देखें तो सेंसेक्स पैक की 30 में से 16 कंपनियां लाभ के साथ बंद हुई हैं. यदि हम नेशनल स्टॉक को देखें तो वहां पर मिड कैप 100 इंडेक्स में गिरावट है, लेकिन स्मॉल कैप 100 इंडेक्स थोड़ा सा बढ़त के साथ गया है, बंद हुआ है. तो कुल मिलाकर ये क्या दर्शा रहा, जो यानी बाजार है उसकी
0: बाजार में सही प्रश्न किया आपने. बाजार में जो सेक्टोरल स्टोरी जो है वो ज्यादा लगता है कि इम्पोर्टेंट है. जैसे आपने कहा कि मिड कैप में थोड़ी बहुत दुर्बलता नजर आई आज, बस कॉल स्मॉल कैप में
1: मजबूती
0: दिखी. आईटी में बहुत धक्का पहुंचा क्योंकि आईटी में जो एआई और जॉब्स एंड अर्निंग्स के ऊपर जो लग रहा है, और जो ब्रॉड सेक्टर्स जो हैं अगर आप देखें, क्योंकि कॉरपोरेट अर्निंग्स जो अभी तक जो आई है अगर आप देखें तो कॉरपोरेट अर्निंग्स उतनी खराब नहीं आ रही है. हालांकि शुरुआती दौर में बहुत अच्छी थी पर पिछले एक हफ्ते में अच्छी नहीं आ रही है. पर जो कॉरपोरेट अर्निंग्स की कैसी जो डायरेक्शन होगी उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि अगले कई दिनों में इसका रुख इसके ऊपर निर्भर करेगा. और ऑफ कोर्स जो कल का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो निर्णय होगा उसके ऊपर भी मार्केट थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस तो जरूर होगा
1: जी.
2: वेरी वेल, एंड विद दैट लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट स्टोरी फॉर दिस इवनिंग. भारती एयरटेल लिमिटेड टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल ईयर. The company's consolidated revenue from operations rose over 18% year-on-year to 58,539 crore rupees. The firm's consolidated net profit attributable to the owners increased over 37% to 8,167 crore rupees on an annual basis. And with that, it's also time to take a look at our story about crude oil. Global crude oil prices dropped today. Brent crude was trading 2.6% down at $81.57 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 3.3% lower at $77.65 per barrel when reports last came in.
1: खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया है. उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार बनाए रखा. इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी और एलएनजी की शत प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित की गई. नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

0: की परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये जानकारी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उपलब्ध कराई। उन्होंने बैठक के दौरान सदस्यों को देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों के बारे में जानकारी दी। श्री पुरी ने कहा कि इन उपायों में आयात करने वाले देशों की संख्या 27 से बढ़कर 41 पहुंच गई है। घरों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई। श्री पुरी ने यह भी कहा कि इन सब के अलावा उत्पाद शुल्क में कटौती, तेल विपणन कंपनियों से समर्थन और निरंतर निगरानी ने उपभोक्ताओं को वैश्विक मूल्य और आपूर्ति में अस्थिरता से और अधिक सुरक्षा प्रदान की।
1: Here's something that I would like to know on the movement of crude oil. So we've all been well aware of the West Asia crisis. Now, for an ordinary Indian, where does this crisis eventually show up? Is it petrol and diesel? Is it the LPG cylinder? Is it electricity costs, inflation, or is it elsewhere? And second, what is the typical lag between an international oil price shock and its impact on Indian consumers?
2: Well, to answer your last question first, the impact is immediate almost. If there is an international crude oil price increase, that happens, then the oil companies are immediately impacted, and their cost of operations take a hit. Now, what has happened in India is that the government has stepped in. The government has stepped in many ways. What we have seen since 28th February, when the problem erupted on West Asia and the Strait of Hormuz, and you have to recognize that almost 45% of India's total oil supplies come through the Strait of Hormuz. So now, when 45% of almost half your oil come from the Strait of Hormuz, and that is blocked, international crude oil prices have also gone up. So what the government did was applied and adopted a graded approach. Initially, the government decided to reduce the duties, the excise duty on petrol and diesel, so that there is no need for the oil companies to pass on that extra hit, mm-hmm. the additional, the cost increase that they had to incur. So that was number one. So as a result, what happened was then the first few weeks, there was no price increase, but there was a price of increase of around 8 rupees per liter, 10 rupees per liter actually, for both petrol and diesel. Now that happened after about a month and a half, but at the same time, what we did was that the sourcing of our petrol and diesel, that was diversified in a sense that earlier we bulk of our oil was coming from West Asia. We diversified our source. Russia once again became our number one supplier of crude oil. Russia used to be number three or number four. Early, mainly it used to be West Asia. Then we also started getting more oil from Venezuela and even the US. LNG supplies came from different countries other than Oman and UAE. So in short, we diversified our import sources. Along with that, we increased our domestic manufacturing of LPG so that the supply bottlenecks and shortages feared could be addressed. So in this way, we handled the crisis of oil.
0: यहाँ पर एक और सवाल कह लें कि हम श्रोताओं के हित में समझना चाहेंगे कि तेल के दाम बढ़ते हैं तो हमारी जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं, एक और तो उसका असर पड़ता है, लेकिन हम जो तेल के प्रोडक्ट का निर्यात करते हैं उससे किस रूप में अर्थव्यवस्था को सहायता मिलती है या क्या परिणाम निकल के आता है?
2: ये फॉरेन ट्रेड में जरूर परिणाम मिलता है क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, उससे हमारा विदेशी मुद्रा की आय होती है। और दूसरी बात यह है कि जो हम तेल जो हमारे देश में भी जो खनन करते हैं, जो बनाते हैं उसको, वो उसको हम इंटरनेशनल प्राइस में हम उसको बाहर बेच सकते हैं। तो एक तरफ फॉरेन ट्रेड में हमारी एक्सपोर्ट्स में इसकी सुविधा आती है और दूसरी तरफ हमारी जो डोमेस्टिक जो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो डोमेस्टिक हम से बना के हम जो डोमेस्टिक जो डिमांड जो है उसको भी हम मीट कर सकते हैं।
1: Very well, and with that, let's take a look at the next story. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard

0: operating procedure for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases.
1: यहाँ पर समझना चाहेंगे कि सरकार का जो ये कदम है इसके क्या आयाम निकलेंगे और किस रूप में फर्जीवारे को रोकने में या जो म्यूल अकाउंट है उनकी रोकथाम में सहायता मिलेगी.
2: देखिए ये जो कदम जो है ये जो हमारे देश की जो जो सबसे ऊंची जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट उनके ऑर्डर से आया है. उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक एक एक डायरेक्टिव दिया है जिससे कि जो म्यूल अकाउंट्स जो हैं जैसे कि आपके अकाउंट में जैसे जनधन के बाद बहुत लोगों के पास बहुत सारे अकाउंट आ गए उन अकाउंट में लोग पैसे कम हैं पैसे भी नहीं हो तभी वो अकाउंट हैं तो उन अकाउंट की जो दुरुपयोगिता बढ़ जाती है बहुत लोग उन म्यूल अकाउंट्स को जो जो उनके अंदर कोई पैसे नहीं है पर उसका एक अकाउंट होल्डर है और वो अकाउंट है उसका दुरुपयोग करते हैं और जो फर्जी काम आपके किसी से चोरी करना या आप जो ड्रग्स की जो पैसे होते हैं टेररिज्म के पैसे होते हैं वो आपके जो अकाउंट होल्डर हैं उनको वो जानते भी शायद नहीं होंगे पर उनकी अकाउंट से का इस्तेमाल करके वो बैंकिंग सिस्टम से उसका फाइनेंसिंग होता है.
1: जी, जी.
2: तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के से कड़ी शब्दों में ये कहा है कि उसको एक नया सिस्टम ऐसा चालू करना है जिससे कि जो ये म्यूल अकाउंट सिस्टम जो है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक एक रोकथाम रोक हो सके और उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर बनाने का एक डायरेक्टिव दिया गया है.
1: जी.
0: And our next story links to the mention of RBI's monetary policy meeting, which begins tomorrow. The meeting of Reserve Bank's Monetary Policy Committee began yesterday. My apologies. RBI Governor Sanjay Malhotra is slated to announce the policy statement tomorrow. We have a report on the same.
3: In the last Monetary Policy Committee meeting, the Reserve Bank of India kept the key repo rate unchanged at 5.25% for the third time in a row. At the same time, RBI revised its GDP growth forecast for the current financial year downward by 30 basis points BPS to 6.6% and raised its CPI inflation projection by 50 BPS to 5.1%, highlighting growing concerns over inflation risk. RBI's primary mandate is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. In the current context, India's retail inflation rose to 4.38% year-on-year in June, slightly above RBI's target of 4%, but still within its mandated tolerance band of 2% to 6%. With geopolitical tensions persisting and crude oil prices remaining volatile, the RBI's policy decision will be closely watched. Ayushi Singh for Market Mantra.
1: क्या आसार हैं कल की घोषणा में? क्या बाजार की अपेक्षाएं और
2: अपेक्षाएं हैं ये हैं कि जो जो रेट जो है जिसे हम रेपो रेट कहते हैं जिस रेट से बैंकों को जो कॉस्ट ऑफ मनी होती है उसमें कोई परिवर्तन शायद ना हो पर इम्पॉर्टेंट चीज जो मार्केट जो देखेगी और या समझने की कोशिश करेगी कि आरबीआई की स्टेटमेंट के अंदर इकोनॉमी की जो ग्रोथ की जो आउटलुक जो है या इन्फ्लेशन की जो फोरकास्टिंग है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन आया है कि नहीं. जैसे आयुषी सिंह जी ने कहा कि पहले अभी तक जो इन्फ्लेशन जो फोरकास्ट जो है वो अभी भी टॉलरेंस बैंड के अंदर है.
1: जी, जी.
2: क्या इस वक्त इस कल की जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में आरबीआई अपना इन्फ्लेशन का आउटलुक में ऐसा परिवर्तन करता है जिससे कि वो बैंड के ऊपर जाए और ग्रोथ का जो असेसमेंट है रेट के हिसाब से मैं समझता हूं कि ज्यादा कोई अपेक्षाएं नहीं है पर आरबीआई की असेसमेंट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन में कैसी होगी उसके ऊपर बहुत उनकी हमारी सबकी आंखें लगी रहेगी.
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार जहां दक्षिण कोरिया का कोस्पी आज 1.6% लाभ के साथ बंद हुआ. जापान के निक्की 225 सूचकांक में 0.3% की वृद्धि हुई है. यूरोपीय जोन की ओर चलें तो वहां प्रमुख शेयर बाजारों में समाचार तैयार किए जाने तक का तेजी दिख रही थी. अंतरदिवसीय कारोबार में जर्मनी का डैक्स 0.7% और

0: लंदन का फुटसी 100 0.4% ऊपर कारोबार कर रहे थे।
1: As for the US markets, Wall Street ended higher yesterday as signs of easing tensions between the United States and Iran pushed oil prices and treasury yields lower. Among the major indices, the Nasdaq Composite surged 2.1%, the S&P 500 climbed 1.5%, and the Dow Jones Industrial Average gained 1.3%, closing at a record high of 53,178. Market participants will focus on quarterly earnings reports and the employment data due later this week.
0: यहाँ पर अमेरिकी शेयर बाजार और कह लें इसके बहाने पूरी अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वह किस दिशा में जाती दिख रही अब?
2: देखिए जो वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने को दिख रहा है। उनकी जो इन्फ्लेशन जो है वो चिंता का विषय बन गया है और जो फेड जो है उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए और ये मैं समझता हूँ कि हालांकि पॉलिटिकल प्रेशर केविन वॉश के ऊपर काफ़ी है कि वो इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए पर मुझे लग रहा है कि शायद इस बार ना हो तो अगली बार शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें और उसका जो एक इम्पैक्ट हमारी अर्थनीति के ऊपर होगा वो हमें समझना होगा क्योंकि ज्यों ही वहाँ का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है
0: जी
2: पैसे जो है यहाँ से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ से लेकर वहां पे जाकर वो जमा करते हैं जिससे कि उनमें वहां पे एक सिक्योर्ड इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो यूएस की अर्थनीति हमारे लिए ये इसीलिए बहुत बहुत
0: मायने
2: रखती है।
1: एंड लेट्स टेक अ लुक एट गोल्ड एंड सिल्वर। In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.8% up at 1,44,170 rupees per 10 grams, while silver was also trading 2.1% higher at 2,21,740 rupees per kilogram a short while ago.
0: आइए श्रोताओं आपको हम लिए चले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी सोने और चांदी के मूल्यों में आज समाचार तैयार किए जाने तक तेजी दिख रही थी। अगस्त अनुबंध वाले सोने का मूल्य 1% बढ़त के साथ 1,42,551 रुपए प्रति 10 ग्राम पर समाचार तैयार किए जाने तक कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध यानी सितंबर में आपूर्ति वाली चांदी भी 2% बढ़त के साथ 2,21,448 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से एके भट्टाचार्य जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
2: नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे मिस्टर भट्टाचार्य। एंड बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस स्नैप 4-डे गेनिंग स्ट्रीक, सेंसेक्स ड्रॉप्स ओवर 200 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,615, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन एंड Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee to announce repo rate decision tomorrow. With that, it's a wrap on today's Market Mantra. We'll see you in the next one. Take care.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छुपा नहीं सकते।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है और न ही वो मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन करती है। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से अधिक परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का लाभ मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में भी गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार बनाए रखा। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी और एलएनजी की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों और बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक लुढ़ककर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रूपये के पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री मांडविया ने कहा कि 36,000 करोड़ रूपये की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसांगना और चालो एम्पोन चारोइन केतामोर्न को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधानों और उनके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य 20 वर्ष पुराने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान प्रणाली में विलंब दूर करना और विवाद समाधान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस विधेयक के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
3: धन्यवाद।
2: दिलीप जी, ये जो बिल आया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन

0: विधेयक 2026, इसके महत्व को आप कैसे आंकते हैं पूरे एमएसएमई सेक्टर में मजबूती बढ़ाने के लिए? और इसी संदर्भ में अगर आप हमें ये भी बता सकें कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसका हमारे अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है?
1: धन्यवाद। अगर आप देखें तो पहले वो करीब 31% जो है देश के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा अगर आप देखें तो 48.5% एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अगर देखें खासतौर में तो 35.4% जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो भी एमएसएमई सेक्टर के द्वारा एक शेयर है। और सबसे ज्यादा एक लगभग 40 करोड़ व्यक्ति एमएसएमई में एम्प्लॉयड है और ये एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा श्रेय है। ये एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन इकोनॉमी में। तो अगर संक्षेप में बताऊं कि इकोनॉमी में क्या है, ये चार आंकड़े हैं, जीडीपी का 31%, मैन्युफैक्चरिंग में जो है और 39.6% ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट, ये अगर आप देखें, और 48.5% एक्सपोर्ट्स, तो ये आंकड़े हैं।
0: तो इसलिए इसको रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है हमारी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडियन इकोनॉमी में। और आपने इसी जुड़ा हुआ सवाल था कि ये जो बिल लाया गया है और जो राज्यसभा ने इसको पास किया है, इसकी क्या महत्वपूर्ण है इस पूरे होल सेक्टर में? तो जो एमएसएमई सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत है, जो हर एमएसएमई एंटरप्रेन्योर बेशक गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स में करें या कुछ भी करें, वो है डिलेड पेमेंट। तो ये डिलेड पेमेंट के लिए कई साल पहले उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम किया था, ट्रेड रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, उसको हम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म करते हैं। उस प्लेटफॉर्म में उन्होंने पहले तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। अभी उन्होंने जो भी कंपनी 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर में है वो वहां पे रजिस्टर करना जरूरी है। और जितने भी एमएसएमईज के जो बिल्स हैं, जो उनके सप्लाईज हैं, वो बिल्स जो एमएसएमईज उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे डिस्काउंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक लार्ज कंपनी है और मैंने आपको 1000 रुपए का सामान दिया है, तो मैं 1000 रुपए का बिल अपलोड करूंगा और उसके बदले थोड़ा से पैसे वो ट्रेड प्लेटफॉर्म रखेगा, बाकी मुझे कर देगा, तो मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है ट्रेड प्लेटफॉर्म का। और इस के अंतर्गत जो ये जो बिल में जो संशोधन लाए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: सो जैसे आपने कहा कि कोई भी एमएसएमई होता है उनके लिए जो पेमेंट समय पर मिलना बहुत जरूरी होता है, लिक्विडिटी उनकी जो फ्लो बना रहे वो बहुत जरूरी होता है। सो आपको लगता है कि जो ये नया अमेंडमेंट बिल आया है, ये पुराने जो एक्ट था 2006 का 20 वर्ष पुराना, उसमें जो बदलता परिवेश है उसके मुताबिक संशोधन करके लिक्विडिटी फ्लो को ज्यादा स्मूथ करेगा?
1: बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। देखिए, एक तो पहला जो है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, इस बिल का जो सारा जो फोकस है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे है और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडर पब्लिक एंटरप्राइजेस पे है। ट्रेड्स अभी प्लेटफॉर्म ही एक नया ही प्लेटफॉर्म है, उसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ का एनुअल टर्नओवर होता है। उसमें जो है वो एमएसएमई का ट्रांजैक्शन का छोटा सा हिस्सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर आप देखें तो ये डिलेड पेमेंट्स जो एमएसएमई को कैपिटल ब्लॉक करता था उसको एड्रेस करता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो मार्केट से पैसा लेते थे हाई इंटरेस्ट रेट पे। और सबसे बड़ा जो संशोधन आया है इस बिल में, वो जो अगर डिस्प्यूट हो जाता था तो वो नॉर्मल कोर्ट के प्रोसेस में सालों लगते थे एक लीगल प्रोडक्शन के लिए, तो चार जो है और कैश फ्लो का जो पूरा परिस्थिति पैदा हो जाती थी क्योंकि पेमेंट्स ब्लॉक हो जाते थे। तो इन चार चीजों को सॉल्व करने में एक ये बहुत बड़ा कदम है।
0: तो जैसा आपने कहा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि कोई भी विवाद है उसका समाधान, उसमें बहुत समय लगता था, तो अब जो टाइम बाउंड उन्होंने बताया है, साइकिल बताई है कि पहले मध्यस्थता होगी, मीडिएशन होगी जो 90 दिन के अंदर खत्म होनी है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती तो 30 दिन में अपील मैक्सिमम और फिर 90 दिन में आर्बिट्रेशन, तो ये थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो तीन स्टेजेस हैं ये किस तरह से एक जो कॉमन एमएसएमई ओनर है, एक मान लीजिए एक माइक्रो एंटरप्राइज का ओनर है, वो कैसे इन स्टेजेस को समझे?
1: तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। और अगर आप देखें तो कोई लीगल डिस्प्यूट होता है तो सबसे कम जो खर्चा होता है और सबसे कम टाइम में जो रेजोल्यूशन हो सकता है वो मीडिएशन द्वारा, और वो एक उसमें लॉयर्स की जरूरत नहीं है, आप आपस में बैठ करके एक मीडिएटर के द्वारा बैठ करके आप अग्री कर सकते हैं। और अगर आप दोनों ने मीडिएशन अग्रीमेंट को अग्री कर
0: दिया, कोर्ट से बाहर
1: मीडिएशन सेंटर्स कोर्ट्स के साथ भी लगे हुए हैं, जैसे अगर दिल्ली में तो हर कोर्ट के साथ लगा हुआ है, तो वो मीडिएशन अग्रीमेंट अगर साइन करते हैं तो वो एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है। आगे जो लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, कई लोग सोचते हैं कि मीडिएशन में नहीं होगा, तो जो आर्बिट्रेशन है, और उन्होंने नया आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट लेके आए थे, उसको मीडिएशन एक्ट के अंदर ही एक आर्बिट्रेशन एक्ट है और एक मीडिएशन एक्ट है। सो आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि अगर आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट है तो आप ज्वाइंटली एक आर्बिट्रेटर या तीन आर्बिट्रेटर, डिपेंड करता है, उसको अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन जो है एक कोर्ट के द्वारा फंक्शन करता है, लेकिन एविडेंस रूल और सिविल प्रोसीजर कोड वगैरह अप्लाई नहीं करते हैं, तो सिंप्लीफाइड सिस्टम है, लेकिन वो एक जजमेंट है और वो जजमेंट बाइंडिंग है, उसको अपील करना मुश्किल अगर कोई प्रोसीजरल गैप है, या नॉर्मली कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इसके जो तीन जो आंकड़े बोले थे, पहले तो मीडिएशन, अगर मीडिएशन ना हो तो फिर आप आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो आर्बिट्रेशन जो है, ये बिल कहता है कि 30 दिन के अंतर्गत ही आर्बिट्रेशन शुरू हो जाना चाहिए, और अगर आर्बिट्रेशन शुरू हो गया, जब आर्बिट्रेशन शुरू हो गया 90 डे में उसका अवार्ड आना चाहिए। तो यानी कि 120 या 6 महीने में, और मीडिएशन के 2 महीने लगा लो, तो 8 महीने में कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल कमर्शियल कोर्ट में भी जाएं तो 8 महीने में या 6 महीने में आपके 2 तारीख मिलेंगे और कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो ये सालों चलते थे अर्ली डिस्प्यूट, तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है और टाइम की बचत है, सबसे ज्यादा बचत टाइम है। और नॉर्मल केसेस में तो अजर्नमेंट्स होते हैं, कुछ होता है, नॉर्मली मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में अजर्नमेंट्स नहीं होते।
0: सो इस तरह से जो आप कह रहे हैं कि एकदम टाइम बाउंड कर दिया है कि इतने समय में समाप्त होना ही होना है विवाद और उसका कुछ निर्णय निकलना है, सो ये बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है। बिकॉज नॉर्मली जैसा आप कह रहे हैं कि कई बार बहुत लंबे चलते हैं केसेस, आगे बढ़ते जाते हैं। सो इसको आप इस अमेंडमेंट बिल का एक बहुत बड़ा एक पहलू कहेंगे?
1: हाँ, वो तो एक बड़ा पहलू है, लेकिन एक इसके बाद एक बहुत ही और छुपा हुआ एक पहलू है। ये उन्हें बिल ने ये कहा है कि आप इसको ऑनलाइन मीडिएशन या ऑनलाइन आर्बिट्रेशन और डिजिटल प्रोसेसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर 2 घंटे लगाते थे आर्बिट्रेशन सेंटर पहुंचने में या कुछ, वो आपका टाइम बच जाता है। और इससे अच्छा है कि अगर 6 महीने से ज्यादा आपका केस पेंडिंग है तो 50% अवार्ड अमाउंट जो है वो एमएसएमई को मिलना चाहिए। तो ये पूरा एक सिंप्लीफाई कर दिया है और एक प्रोसेस बना दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक ये बहुत ही बड़ा पहलू है।
0: सो ऐसा लगता है जैसे कि अभी तक जो आपने पहलू डिस्कस किए हैं कि ये एमएसएमई फ्रेंडली अमेंडमेंट बिल है, ताकि एक कोलैबोरेटिव आपको लगता है अप्रोच लिया है सरकार ने?
1: बिल्कुल कोलैबोरेटिव अप्रोच लिया है, एमएसएमई फ्रेंडली अप्रोच है, लेकिन आप एमएसएमई की भूमिका जो देश की इकोनॉमी में है इतनी बड़ी है कि इकोनॉमी फ्रेंडली एक बिल है। और इसमें उन्होंने एक अच्छी चीज भी की है जो खासतौर लोग ध्यान ही देते
0: जी।
1: पहले अगर आपको एमएसएमई की डेफिनेशन अमेंड करनी होती थी ना, तो आपको एक्ट में अमेंड करनी चाहिए। इस बिल में उन्होंने बोला कि एक्ट के बाहर आप उसको अमेंड कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है।
0: सो ये फ्लेक्सिबिलिटी की जो आप बात करें वो बहुत जरूरी भी है। जैसा हम जानते हैं कि आजकल जो हमारा पूरा वातावरण है, खासकर टेक्नोलॉजी की वजह से, बहुत तेजी से बदल रहा है। सो जरूरत अनुसार जो एक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू कहेंगे आप?
1: बिल्कुल सही। तो अगर देखें तो पहला जो है लिक्विडिटी इंप्रूव होगा, दूसरा जो एमएसएमई के पैसे हैं उनको बहुत जल्दी मिलेंगे, तीसरा अगर उनको पेमेंट मिलेंगे तो बैंक के ऊपर डिपेंडेंस कम होगा, चौथा तो बेटर वर्किंग कैपिटल जो मैंने आपको कहा था। और जो अभी जो है एमएसएमई में लोग काम करने से थोड़ा सा हिचकिचाते थे, क्योंकि ये डिलेड पेमेंट्स के सैलरी इस टाइम पे नहीं मिलते थे, रॉ मटेरियल्स नहीं मिलते, जीएसटी में डिफॉल्ट हो जाता था, और ये पूरा लोअर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। और न्याय का ये एक फास्टर रूट है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस जो अनसर्टेनिटी निकाल देती है, और सप्लायर्स जो है उनका कॉन्फिडेंस होगा कि लार्जर सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग सप्लाई करे और लार्जर कंपनी सप्लाई करे। तो ये एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था।
0: और एक डीक्रिमिनलाइजेशन के ऊपर भी सरकार ने, हमेशा वर्तमान सरकार ने बल दिया है। सो यहाँ पर जो प्रावधान लाए गए हैं, ग्रेडेड सिस्टम ऑफ वार्निंग्स एंड मॉनेटरी पेनल्टीज, आपको लगता है कि ये भी जो डर का एक, अभी आपने डर शब्द यूज किया, वो कम होता है और ज्यादा एक फ्रेंडली एनवायरमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलता है?
1: डीक्रिमिनलाइजेशन का एक पहलू बहुत आगे पहले से चल रहा था, जन विश्वास 1.0 और जन विश्वास 2.0 हमने उस पर भी चर्चा की थी।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर आप देखें तो इसमें जो है डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है, बट वो ऐसे इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन टाइम फ्रेम और नॉन पेनल्टीज और वार्निंग्स जो लार्जर कंपनीज के लिए है वो एक है। तो इसमें जो वो इम्पोर्टेंट सिग्नल जो क्या है ना, सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना चाहिए। अगर आपने किसी सप्लायर ने माल बेचा है और आप उसको पैसा देना, आप प्लीज उसको पैसा दीजिए, क्योंकि एमएसएमई होगा। दूसरा है कि डिले तो अब अनएक्सेप्टेबल है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस टाइम में, ठीक है, पहले ये नहीं था। और तीसरा है जो एमएसएमईज का जो कमर्शियल जस्टिस है वो एक टाइम बाउंड होना चाहिए, श्योर होना चाहिए, अश्योर्ड होना चाहिए, और मिनिमम इनकन्वीनियंस से डिजिटल मीडिएशन, डिजिटल आर्बिट्रेशन। तो ये अगर आप तीन इंपॉर्टेंट चीजें इस बिल को ले जाएं, और जो एमएसएमई के डेफिनेशन में ही फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है।
0: तो डिजिटलाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन जो करने होती है एमएसएमईज को, उसमें भी वो उनको सहूलियत होगी, अब एक इंसेंटिवाइज होंगे कि और एमएसएमईज भी उभर के आए। एक आपको लगता है कि ग्रोथ ऑफ एमएसएमईज या स्केलिंग अप जो है एमएसएमईज की, उसको भी बढ़ावा मिलेगा?
1: पहले जो है अगर आप देखें तो एमएसएमईज का जो डेफिनेशन बढ़ा गया है, पहले लोग छोटा रहते थे और छोटा से ग्रो करने से हेजिटेट करते थे क्योंकि कंप्लायंस ज्यादा है। तो वो डेफिनेशन चेंज करने का एक बहुत बड़ा ग्रोथ पैटर्न है। दूसरा जो आपने कहा था कि आप पूरा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एमएसएमईज बिजनेस नहीं कर सकते थे, और एमएसएमई को कहां रजिस्टर करें, तो एक उद्यम पोर्टल रजिस्टर किया था, अभी उसमें 8.9 करोड़ लगभग एमएसएमईज रजिस्टर्ड है। और अभी कंपनीज एक्ट में भी अगर आप देखें, आप लार्ज कंपनी और मैं, आप एमएसएमई आपके साथ रजिस्टर्ड हूं, तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हमारे पास ड्यूज नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरा जो आप देखें तो जेम गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, उसमें एमएसएमईज बिजनेस कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और गवर्नमेंट परचेसेस में। ट्रेड ई फाइनेंसिंग के लिए ट्रेड्स है, तो ये अलग अलग ई प्लेटफॉर्म, अगर वहां देखें तो ई नैम भी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है, ओएनडीसी भी आ रहा है। तो डिजिटल इकोनॉमी, और सबसे बड़ा जो फायदा एमएसएमईज के लिए यूपीआई है, और जो हमारा फाइनेंशियल स्टैक है, तो डिजिटली एमएसएमईज को काफी अच्छा होना चाहिए। और अब एआई आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने एमएसएमईज के लिए एआई के भी काफी एक सुविधा की है, तो वो डिजिटली अवेयर रहे और डिजिटली उसको यूज कर सके।
0: सो एमएसएमईज जो सेक्टर है उसका बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ है पिछले 12 वर्षों में। आपको लगता है कि ये जो विकसित भारत का हमारा जो लक्ष्य है 2047 तक, उसमें एमएसएमईज का बहुत बड़ा रोल होने वाला है?
1: देखिए, अगर एमएसएमईज 31% ऑफ द इकोनॉमी है, और अगर हमें ग्रो करना है, तो अगर ये 31% ग्रो नहीं करेगा तो विकसित भारत का लक्ष्य बिल्कुल असंभव है। और ये 31% को वो दूसरे परसेंट से ज्यादा ग्रो करने का एक सुविधा दें, तो विकसित भारत का लक्ष्य आगे सामने नजर आता है।
0: सो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ये जो संशोधन बिल आया है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026, आपको लगता है कि ये समय की मांग है और बहुत ही उपयुक्त समय पर ये लाया गया है?
1: बिल्कुल उपयुक्त समय पे लाया गया है, और गवर्नमेंट जो है निरंतर एमएसएमई सेक्टर के लिए स्टेप वाइज प्रोग्रेस कर रही है। और ये जो अभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे है, शायद ये आगे जाके स्टेट अंडरटेकिंग्स पे लागू करे और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स पे लागू करे, तो ये स्टेप वाइज एक इंटीग्रेशन और एक डेवलपमेंट है, ये बहुत अच्छा कदम है।
0: दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एमएसएमई इकोसिस्टम के लिए जो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है, उसके विभिन्न पहलुओं पर हमसे बात करने के लिए
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधानों और उनके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और ये वक्त है सांस झले का। सांस झले में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।

जी हाँ, सावन आ चुका है। आ सावन अपने साथ ढेर सारा प्यार, ढेर सारी मस्ती और ढेर सारी भक्ति भी, जो है सावन का महीना अपने साथ लेकर आता है। और एफएम गोल्ड क्या लेकर आता है? एफएम गोल्ड आपके लिए बेहतरीन जानकारी और बेहतरीन नगमों का तोहफा लाता है। फिलहाल ये सिलसिला शुरू हो चुका है और एक और बेहतरीन सा गीत आप सुनेंगे। लेकिन जो गीत अभी आपने सुना फिल्म सावन को आने दो से ही था, और जो आवाज़ आपने सुनी वो जसपाल सिंह जी की थी। आइए दूसरा गीत आप सभी के लिए मिलके सुनते हैं इस प्यारे से मौसम में।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

तकरीबन तकरीबन कहते हैं ना कि एक अलग सा समा बांधने का इस गीत ने काम किया। ऐसा लग रहा था ना कि जैसे गीत कभी ख़त्म ना हो, बस मधुर मधुर चलता रहे, लेकिन वक्त कहता है कि आपको यहीं अब विराम लगाना है और थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार। फिलहाल मैं आप सभी के लिए एक प्यारे सा गीत के साथ अनुमति लेना चाहती हूँ और ये जो गीत आप सुनेंगे दो आँखें 12 हाथ फिल्म से। फिलहाल विमलेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया। मतदाता सूची का सत्यापन 17 अगस्त तक जारी। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, अब तक 3,300 से अधिक निक्षय मित्र टीबी मरीजों के सहयोग के लिए सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं। दिल्ली मेरठ मार्ग पर नमो भारत ट्रेन में 3 अगस्त को एक ही दिन में

0: लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की और युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के कार्यक्रम में संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन 17 अगस्त तक जारी रहेगा। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र को भी भर सकते हैं। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 6ठा सत्र शुक्रवार को सुबह 11 बजे पुराना सचिवालय स्थित विधानसभा सदन में प्रारंभ होगा। इसकी जानकारी आज दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दी। श्री गुप्ता ने कहा कि सदन की बैठकें 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित होंगी और हर बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। उन्होंने बताया कि सदन के समक्ष उपलब्ध कार्य के अनुसार बैठक की अवधि आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है। श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने सत्र के सुचारू और व्यवस्थित संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं, साथ ही नियमों के अंतर्गत आवश्यक सभी सूचनाएं नेवा पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रस्तुत की जाएंगी। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अब शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी स्थित डीएम कार्यालय में इस योजना के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। इसी कड़ी में आज विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने कार्यालय में योजना की पात्र महिलाओं के आवेदनों का सत्यापन कर उन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये योजना महिलाओं के सम्मान, उनके आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं श्री सिरसा ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य राजधानी की महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक संबल को बढ़ावा देना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली सचिवालय में टीबी हारेगा भारत जीतेगा राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत आयोजित जनप्रतिनिधियों की सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप में मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रही थीं। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा टीबी उन्मूलन अभियान से संबंधित विभिन्न सूचना और जागरूकता स्टॉलों का अवलोकन किया गया।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष रूप से निक्षय मित्र अभियान से जुड़े स्टॉल का निरीक्षण करते हुए टीबी रोगियों को उपलब्ध कराई जा रही पोषण सहायता, सामुदायिक सहयोग, जनभागीदारी, मरीजों के पुनर्वास और डिजिटल माध्यम से सहयोग उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने इस अभियान को प्रत्येक वार्ड, विधानसभा और स्थानीय स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि राजधानी में अब तक 3,300 से अधिक निक्षय मित्र टीबी मरीजों के सहयोग के लिए सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं, साथ ही उनके सहयोग से 1,20,000 से अधिक पोषण आहार टीबी मरीजों को वितरित किए जा चुके हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि टीबी का समय पर पता लगने और उपचार पूरा होने पर इसका पूर्ण इलाज संभव है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जांच, उपचार तथा परामर्श से वंचित न रहे। श्री सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से टीबी उन्मूलन अभियान एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेगा। आदित्य के रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली मेरठ मार्ग पर नमो भारत ट्रेन ने 3 अगस्त को एक ही दिन में 15 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये एक दिन में

0: अब तक की सबसे अधिक यात्री संख्या है। इससे पहले इस साल 8 जून को 12 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम अकादमी ने आज शास्त्री पार्क कैंपस में कंक्रीट संरचना की मरम्मत, पुनर्वास और रेट्रोफिटिंग पर एक दिवसीय तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जयपुर मेट्रो और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम तथा दूसरे प्रमुख अवसंरचना संगठनों सहित 35 भारी संगठनों ने हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली मेट्रो ने बताया कि इसमें इंजीनियरों, शिक्षाविदों, इंडस्ट्री के जानकारों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल्स को एक साथ लाकर कंक्रीट की मरम्मत, सुधार और रेट्रोफिटिंग में हुई नई तकनीकी पर चर्चा की गई। साथ ही CSIR, CBRI रुड़की और IIT मद्रास जैसे प्रमुख संस्थानों और उद्योग के बड़े संगठनों के जानकारों ने तकनीकी सत्र लिए। इस सत्र में संरचनात्मक मूल्यांकन, टिकाऊपन बढ़ाने, मरम्मत के आधुनिक और उन्नत पदार्थ, जंग से बचाव और रेट्रोफिटिंग की नई तकनीकों जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि सत्र में तकनीकी जानकारी साझा करने, पेशेवर नेटवर्किंग और उद्योग शिक्षा जगत सहयोग के लिए एक बेहतर मंच प्रदान किया गया, जिससे इंजीनियरिंग शिक्षा में क्षमता निर्माण के प्रति दिल्ली मेट्रो ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक ने किया। इस अवसर पर दिल्ली मेट्रो के निदेशक, कार्यकारी निदेशक, विभागाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC, सराय काले खान नमो भारत स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज पर गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चला रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नवनिर्मित और आधुनिक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को स्वच्छ, सुंदर और यात्रियों के अनुकूल बनाए रखना है। एक रिपोर्ट।
2: इस अभियान के दौरान यात्रियों को सार्वजनिक जगहों पर साफ सफाई बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के विरुद्ध लागू प्रावधानों के अनुसार जुर्माना भी लगाया जा रहा है। साथ ही 30 जुलाई 2026 तक सराय काले खां FOB पर मेट्रो रेल अधिनियम 2002 की धारा 59 के अंतर्गत कुल 56 चालान काटे जा चुके हैं। NCRTC सतत जागरूकता अभियानों और स्वच्छता नियमों के प्रभावी परिवर्तन के माध्यम से यात्रियों में जिम्मेदार नागरिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली नगर निगम के नेता सदन जय भगवान यादव और स्थायी समिति अध्यक्षा सत्या शर्मा ने आज दिल्ली नगर निगम मुख्यालय से दिल्ली परिवहन निगम DTC की एक नई बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये नई बस सेवा निगम मुख्यालय से बांकनेर गांव तक आरंभ की गई है, जिससे इस मार्ग पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा। इस अवसर पर नेता सदन जय भगवान यादव ने कहा कि दिल्ली वासियों को सुलभ, सुरक्षित और किफायती सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना सरकार और संबंधित संस्थाओं की प्राथमिकता है। वहीं स्थायी समिति अध्यक्षा सत्या शर्मा ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना एक विकसित और आधुनिक दिल्ली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने ओखला लैंडफिल साइट का निरीक्षण कर बायो माइनिंग कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान निगमायुक्त ने ओखला लैंडफिल साइट कचरे के निस्तारण की प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की। श्री खिरवार ने ओखला लैंडफिल साइट पर बचे कूड़े के शीघ्र निस्तारण के काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लैंडफिल साइट के प्रवेश मार्ग को पक्का करने के आदेश दिए हैं, जिससे लैंडफिल साइट पर भारी वाहनों का सुगमता से आवागमन होता रहे। आयुक्त संजीव खिरवार ने ओखला लैंडफिल साइट पर हर रोज आने वाले नए कूड़े के निस्तारण कार्य में भी तेजी लाने के आदेश दिए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश भर में 50 लाख से अधिक परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का लाभ मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि यह योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में भी गति प्रदान कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली बिल अब शून्य हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने एक संगठित अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में राजस्थान और मध्य प्रदेश से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि आरोपी व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर लोगों से पैसे कमाने का लालच देकर ठगी करते थे।
3: कंप्लेनेंट ने बताया था कि व्हाट्सएप पे उनके पास मैसेज आता है और कमीशन बेसिस पे अमेज़न के रिप्रेजेंटेटिव की तरह बताते हैं कि इसमें कमीशन बेसिस पे आपको टास्क दिए जाएंगे और आपको इसमें पैसा कमाने का मौका मिलेगा। हमने FIR रजिस्टर करी रेलेवेंट सेक्शंस में BNSS के और डेडिकेटेड टीम बनाई जिन्होंने फाइनेंशियल ट्रेल्स को देखते हुए CCTVs की एनालिसिस करी और UPI ट्रांजेक्शन को देखते हुए आइडेंटिफाई करा। इस पूरे प्रकरण में 6 मोबाइल फोन की रिकवरी हुई और बाकी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस भी मिले हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित एक अभिनंदन समारोह में पदक विजेताओं को स्वर्ण पदक के लिए 30 लाख रुपए, रजत पदक के लिए 20 लाख रुपए और कांस्य पदक के लिए 10 लाख रुपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए डॉ मांडविया ने उनसे अपने खेल करियर से आगे बढ़कर भारतीय खेलों की अगली पीढ़ी में योगदान देने का आग्रह किया।
4: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और ये लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: दिल्ली के शिक्षा और खेल मंत्री आशीष सूद ने नई दिल्ली में रायसीना बैडमिंटन अकादमी और पिकल बॉल एरेना का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश कर रही है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम अच्छा रहा और राजधानी के कई क्षेत्रों में तेज बारिश भी हुई। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया। मतदाता सूची का सत्यापन 17 अगस्त तक जारी। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, अब तक 3,300 से अधिक निक्षय मित्र टीबी मरीजों के सहयोग के लिए सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं। दिल्ली मेरठ मार्ग पर नमो भारत ट्रेन में 3 अगस्त को एक ही दिन में 15 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। उच्च सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं।

इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थम्बीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है, ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था, जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था, जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो। ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है, ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम

1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में ये विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से ये अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है। ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किराएदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है।
उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से होने वाले लेनदेन की जांच

के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब SDRF और NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हालिया गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध FDI वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमरीकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध FDI प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि SEZ की क्षमता का बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है, ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। डूरंड कप फुटबॉल के रोमांचक मुकाबले में एससी दिल्ली ने जमशेदपुर एफसी को हराया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को भी खेल मंत्री ने सम्मानित किया। पुनीत मनोहर ने अंडर 14 टेनिस मास्टर्स डबल्स का खिताब जीता और अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल से अमेरिका के यूजीन में शुरू। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां आज खिलाड़ियों का जो है प्रदर्शन मिला जुला रहा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है मिला जुला भी रहा और कई खिलाड़ियों ने क्वालिफायर्स में तो

0: कई अन्य खिलाड़ियों ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मुकाबला किया है। आज कल भी भारत के कई खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशाल शर्मा। विशाल, लगातार एक के बाद एक बैडमिंटन टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं, ऐसे में कई युवा प्रतिभाओं को अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका भी मिल रहा है। कोरिया मास्टर्स भी एक ऐसा ही मंच है जहां भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्ग में प्रतिस्पर्धा की। तो विशाल, कैसा रहा आज का दिन खिलाड़ियों का?
1: जी प्रशांत, आपने सही कहा कि युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के लिए कोरिया मास्टर्स का मंच बेहद अहम है। प्रशांत, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का दिन मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में कृष्ण प्रसाद गार्गा और पृथ्वी कृष्ण मूर्ति रॉय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड की छठी वरीयता प्राप्त जोड़ी चेलोमपोन चेरोन कितामोन और वोरापोल थोंगसा एनगा को सीधे गेम में हराकर उलटफेर करते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। प्रशांत, भारतीय जोड़ी ने अपने से बेहतर रैंकिंग वाली जोड़ी को सिर्फ 42 मिनट में 21-16 21-18 से हराया और अब कृष्ण प्रसाद और पृथ्वी अगले दौर में जुनसुके कुबो और जिया हाओ होविन वोंग की सिंगापुर की जोड़ी तथा यंग युक किम और तेई योंग शिन की कोरिया की जोड़ी के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से भिड़ेंगे।
0: जी विशाल, ये तो आज का मुकाबला हुआ जिसमें आपने पुरुष डबल्स के बारे में बताया, इसके अलावा और अलग अलग वर्ग में आज कैसा किया खिलाड़ियों ने प्रदर्शन?
1: प्रशांत, पुरुष डबल्स में कृष्ण प्रसाद गार्गा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय को मिली जीत आज के दिन की एकमात्र जीत रही। अन्य मुकाबलों की बात करें तो आज भारत को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में अच्युतादित्य राव डोडावारप्पू और अर्जुन रेड्डी पोचाना की भारतीय जोड़ी को कोरिया के सोल ग्यू चोई और मलेशिया के वी शेम गोह की जोड़ी के खिलाफ एकतरफा मुकाबले में 3-21 10-21 से हार झेलनी पड़ी। और महिला डबल्स की बात करें तो प्रिया कोजिंग बाम और श्रुति मिश्रा को भी रेरिना हिरामोतो और कोकोना इशिकावा की जापान की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी के खिलाफ 15-21 13-21 से हार का मुंह देखना पड़ा। और प्रशांत, पुरुष सिंगल्स क्वालिफायर के पहले दौर की बात करूं तो भारत के तुषार सुवीर ने कनाडा के शौर्य गुलाइया को 21-15 21-12 से हराया, लेकिन अगले दौर में जापान के शोगो ओगावा के खिलाफ 10-21 17-21 से हार गए और प्रतियोगिता से बाहर हो गए।
0: विशाल, कृष्णा और पृथ्वी ने तो इस प्रतियोगिता में आगाज कर दिया है और विशाल कल भी कई खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे, किन खिलाड़ियों पर नजरें होंगी विशाल?
1: प्रशांत, तन्वी ने पिछले ही रविवार को ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता था और इस प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व भी कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है सबकी निगाहें एक बार फिर तन्वी शर्मा पर हैं। इसके अलावा अलग अलग वर्ग में खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगर पुरुष सिंगल्स की बात करें तो सनीथ दयानंद जापान के युदाई ओकिमोतो से खेलेंगे, वहीं थारून मन्नेपल्ली का मुकाबला कोरिया के यो तेई बिन से होगा। रौनक चौहान भी कल कोर्ट पर खेलते नजर आएंगे। रौनक कोरिया के जियोन योग जिन से खेलेंगे, वहीं अनुभवी किदाम्बी श्रीकांत इसराइल के डेनिल डुबो वेंको से मुकाबला करेंगे और किरण जॉर्ज कोरिया के पार्क सेंग यांग से खेलेंगे। पुरुष सिंगल्स के अन्य मुकाबले में मिथुन मंजुनाथ और चीन के झू स्वान चिन कोर्ट पर आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स की बात की जाए तो प्रशांत, कल एक ही मुकाबला होगा जिसमें विश्व तेज गोबुरु और भार्गव राम एरिगेला की भारतीय जोड़ी चीन की अरुणताई और आरुंचिया से खेलती नजर आएगी।
0: विशाल, ये तो हुई पुरुष वर्ग की बात, महिला वर्ग और मिक्स डबल्स में कौन कौन से खिलाड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं कल?
1: जी प्रशांत, कल के मुकाबले में ताइपे ओपन विजेता तन्वी शर्मा पर सबकी निगाहें होंगी। महिला सिंगल्स में कल तन्वी शर्मा का मुकाबला चीन की युआन आन शी से होगा, सभी प्रशंसकों की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी होंगी। इसके अलावा महिला वर्ग में ईशा रानी बरुआ का मुकाबला कोरिया की ली सो युल से होगा और तान्या हेमनाथ जापान की हिना आकेचाई से खेलेंगी। रक्षिता श्री रामराज कोरिया की ए योन यू और मानसी सिंह कोरिया की किम जो युन से खेलती नजर आएंगी। अब मिक्स डबल्स का जहां तक बात है तो ईशान भटनागर और श्रुति शर्मा की जोड़ी सात्विक रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा से खेलेगी। वहीं एक अन्य मुकाबले में ध्रुव रावत और मनीषा की जोड़ी मलेशिया की लू बिंग कुन और नुरा किला मायसरा से मुकाबला करेंगी। जी प्रशांत, फिलहाल तो यही जानकारी।
0: विशाल, बहुत

0: तो बहुत धन्यवाद इस विस्तृत जानकारी के लिए। चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। डुरंड कप जो कि रांची में खेला जा रहा है, रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए डुरंड कप मुकाबले में रोमांचक खेल देखने को मिला। हमारी रांची संवाददाता ने बताया कि जमशेदपुर एफसी ने शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन दूसरे हाफ में एससी दिल्ली ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया।
1: डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में एससी दिल्ली ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराकर 3 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने पहले हाफ में बढ़त बनाई। टीम के खिलाड़ी सनन ने गोल कर जमशेदपुर एफसी को 1-0 से आगे कर दिया। हाफ टाइम तक जमशेदपुर एफसी की बढ़त कायम रही। दूसरे हाफ में एससी दिल्ली ने आक्रामक खेल दिखाते हुए शानदार वापसी की। नामते ने लगातार 2 गोल दाग कर अपनी टीम को 1-0 की पिछड़ने की स्थिति से 2-1 की बढ़त दिला दी। निर्धारित समय तक एससी दिल्ली की बढ़त बरकरार रही और टीम ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। नामते के 2 गोलों की बदौलत एससी दिल्ली ने डुरंड कप में अहम 3 अंक दर्जित किए। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रूपये के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रूपये की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
2: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर्ड करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने खेल मंत्री मनसुख मांडविया के दिए गए आश्वासन पर खुशी व्यक्त की।
3: काफी अच्छा लग रहा है, हमारा एयरपोर्ट पे इतना अच्छा स्वागत किया है और अभी आज हम मनसुख मांडविया सर से भी मिले हैं। आगे के लिए भी उन्होंने पूरा सपोर्ट करने के लिए बोला है, तो जब एक एथलीट ऐसा सुनता है एक सपोर्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, तो हमारा अंदर से ही रहता है कि नहीं, हमें और आगे अच्छा करना।
0: जैस्मिन ने ओलंपिक 2028 को अपना प्रमुख लक्ष्य बताया।
3: मेन टारगेट तो वही है, लेकिन बीच में जितने भी हमें कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे वो भी काफी अच्छे हैं उस प्रिपरेशन के लिए, और बिल्कुल हम सब हर कॉम्पिटिशन में हर चीज को भी उठा के चलते कि हाँ ये पर्टिकुलर है, इसमें अपना बेस्ट देना है, यहाँ से सीखना है और जो चीज हमने सीखी है वो यहाँ पे यूटिलाइज करनी है। तो मेन तो हमारा LA20 है।
0: उधर खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज दिल्ली में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले युवा खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली अनाहत सिंह और कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष जूनियर टीम के आर्यवीर दीवान, युशा नफीस और गुरविंद सिंह को सम्मानित किया। 18 वर्ष की अनाहत पिछले सप्ताह कैनेडा में वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। ये अनाहत का विश्व चैंपियनशिप में दूसरा पदक है। उन्होंने पिछले वर्ष काहिरा में कांस्य पदक जीता था। डॉक्टर मांडविया ने युवा खिलाड़ियों से बातचीत करके एशियाई खेल 2026 और ओलंपिक खेल 2028 के लिए प्रोत्साहित किया। अनाहत को उनकी इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई देते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि उनकी ऐतिहासिक जीत लाखों युवा भारतीयों को स्क्वाश खेलने के लिए प्रेरित करने वाली है। स्वदेश लौटने के बाद अनाहत ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के साथ खेलने से आत्मविश्वास बढ़ता है।
4: 4 years that I've played it, and I've always ended up being really close to it, but not, you know, overturning it. So yeah, I'm really glad that I was able to do it this year. Grown up playing Egyptians for since I've started playing sports, so it doesn't really affect me so much when I go into court. It's just like playing another opponent, no matter what the nationality is. But yeah, I mean, doing it and getting close to doing it after Joshna, like you said, she's growing up, like looking at her playing the tournaments and, you know, watching her play squash, and I've really been inspired by her. So I think just getting to do it after is something that I'm really happy. Talking to my coaches about it and seeing, you know, playing more of the senior events now because I'm not a junior anymore, so I think just going and doing that and getting more experience and traveling around the world and playing the top players. I have 2 events in the PS in the professional circuit before I go for the Asian Games, so I think I'm just focusing on that right now. But of course Asian Games has been in the picture since the last one ended, so just focusing on that and building up to it as well.
0: और श्रोताओं, अभी अभी हमें जानकारी मिली है

0: पुनीत मनोहर ने जर्मनी के ड्यूरेन में आयोजित 49वें इंटरनेशनल डाइचे टेनिस मिस्टर शाफ्टन अंडर 14 में डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस इवेंट को टेनिस यूरोप सुपर कैटेगरी के 5 बहुप्रतिष्ठित सुपर कैटेगरी इवेंट्स में से एक माना जाता है।
1: साउथ कोरिया के मिंजी योन चोई के साथ जोड़ी बनाकर पुनीत ने इस बड़े टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल जीता। राउंड ऑफ 32 से आगे बढ़ने के बाद इस जोड़ी ने राउंड ऑफ 16 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड के पुन्नापत निम्नु आंकुल और कोरिया के हिम वोंग को सीधे सेटों में 6-3, 6-1 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने कोलम्बिया के मैथियास लानोस अस्टुडिलो और अर्जेंटीना के मैनुअल पनियागुआ एलेक्सी निसेर की चुनौती को पार करते हुए 6-4, 6-2 से जीत हासिल की। इसके बाद इस जोड़ी ने सेमीफाइनल में इटालियन जोड़ी यूलिस बारी और रुगेरो कोंडोरेली के खिलाफ 6-4, 6-2 की शानदार जीत के साथ चैंपियनशिप मैच में अपनी जगह पक्की की। ग्रैंड फिनाले में इस जोड़ी का मुकाबला मैक्सिको के पैट्रिसियो अल्वारेज शावेज और ब्राजील के विटोर मार्केस मोरेस से हुआ। पुनीत और मिंजियोन ने आक्रामक शुरुआत की और पहले सेट में 1-0 की बढ़त बनाकर मैच पर शुरुआती पकड़ बना ली थी। तभी उनके प्रतिद्वंदियों को खिताबी मुकाबले से हटना पड़ा। इसी के साथ पुनीत और मिंजियोन की जोड़ी ने खिताब अपने नाम किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और चलते चलते बात एथलेटिक्स पर भी कर लेते हैं। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल से अमेरिका के यूजीन में शुरू हो रही है। भारत ने इस प्रतियोगिता में 36 सदस्यीय दल भेजा है। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 23 पुरुषों और 13 महिलाओं की टीम की घोषणा की है, जो हेवर्ड फील्ड में 5 दिनों तक चलने वाले 18 ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगी। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत स्प्रिंट, मध्यम दूरी की स्पर्धाओं, बाधा दौड़, कूद, थ्रो, रेस वॉक और रिले स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना

0: दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
3: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहां पर इस मंच से उठाए गए

0: विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
1: पंजाब पुलिस ने आईएसआई समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
2: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीआई ने पिछले महीने 236.60 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
4: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर्ड करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा

0: शिक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2-3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। पार्लियामेंट पासेस रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल टू मेक डिलेड रजिस्ट्रेशन मोर स्ट्रिंजेंट। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू प्रिपेयर एंड सर्कुलेट SOP फॉर डीलिंग विद म्यूल अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट्स लिंक टू साइबर फ्रॉड। 274 फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स ब्रॉट बैक टू इंडिया फ्रॉम 36 कंट्रीज बिटवीन 2019 एंड 2026, सेज होम मिनिस्ट्री। New Delhi terms so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce. Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia felicitates Indian medal winners after successful Glasgow Commonwealth Games campaign. And in badminton, Indian pair of Krishna Prasad Garaga and Prithvi Krishnamurthy Roy advances to the men's doubles second round at Korea Masters Tournament in Assam. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityananda Rai moved the bill in the Upper House, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. We have more from a correspondent.
3: The objective of this bill is to prevent delays in the registration of births and deaths and to encourage people to register in a timely manner. The bill provides that if a birth or death is reported to the registrar more than 1 year but within 2 years, it may be registered only with the approval of the district magistrate, sub-divisional magistrate or an executive magistrate. The bill further states that if a birth or death is reported to the registrar more than 2 years, it will be registered only on the order of the judicial magistrate of the first class. The bill also mandates that the designated authority must verify the authenticity of the the reported birth or death before granting permission for delayed registration. The registration of births and deaths is mandatory and the certificate issued provides legal identity to an individual. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News.

0: मंथन।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ते उपयोग और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रोनेन्द्र सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार, मैं हूं मनोज पाठक और मंथन कार्यक्रम का ताजा अंक लेकर हम हाजिर हैं। आज हम देश में ईवी क्रांति पर चर्चा करेंगे और विशेष रूप से ईवी क्रांति के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं, क्या सब चुनौतियां हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं देश के ऑटो सेक्टर के जाने माने विशेषज्ञ रोनेन्द्र सिंह। रोनेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: थैंक यू मनोज जी।
2: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि भारत में ईवी क्रांति के लिए वर्तमान में उपलब्ध बाजार का आकार क्या है और इस बाजार में मांग तथा आपूर्ति की क्या स्थिति है।
3: इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो जर्नी है वो भारत में करीबन 2007-08 से शुरू हुई थी। उस वक्त ज्यादा सपोर्टिव पॉलिसी नहीं थे तो इसकी वजह से वो दोबारा फिर वो थोड़ा सा मार्केट जो है वो डंप पड़ गई। बट उसके बाद अभी 2014-15 के बाद क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है अलग अलग स्कीम ले आए, जैसे शुरू में फेम स्कीम ले आए जिसमें हालांकि कमर्शियल व्हीकल्स का ज्यादा कुछ नहीं था बट पैसेंजर व्हीकल्स और आपके टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स का बहुत ज्यादा महत्व था उसमें। तो उसके अंदर भी काफी गाड़ियां बिकी जिसमें हमारे जो पैसेंजर व्हीकल्स थे वो भी इंक्लूडेड थे जिस स्कीम के अंदर, और उसमें काफी फायदा भी हुआ कंपनीज को एज वेल एज यू नो कस्टमर्स को। बट उसके बाद फेम के बाद जो पीएम ई ड्राइव जो पुश हुआ 2014 से, जैसे फेम खत्म हो रहा था तो इसको हम फेम टू के बाद फेम थ्री भी कह सकते थे, लेकिन उसका गवर्नमेंट ने नाम चेंज करके पीएम ई ड्राइव रख दिया, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव करके ई ड्राइव करके रख दिया। उसके अंडर अभी जो है काफी बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद से क्या हो रहा है कि जो हम लोग 5% और पहले साल में 2.5% जो थ्री व्हीलर्स और टू व्हीलर्स को दे रहे थे उसकी वजह से काफी सेल्स पिकअप हुई है पिछले 2 सालों में। अगर थोड़ा आंकड़े रखे तो जैसे अभी जो है हर महीने करीबन 2 लाख टू व्हीलर्स बिक रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा है मुताबिक यू नो कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और उसके पहले जो लास्ट ईयर करीबन 1 लाख भी टच नहीं हो पाए थे और लास्ट ईयर करीबन 1 लाख टच हुआ था पर महीना। तो अभी क्या हो रहा है पर महीना जो है रूटीन 2 लाख के करीब बिक रहा है। हम लोग जो जून मंथ जो था वो जून 2026 जो था वो बेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मंथ था जिसमें काफी गाड़ियां बिकी है, इलेक्ट्रिक कार्स कह लो या थ्री व्हीलर्स कह लो टू व्हीलर।

0: सारे पिकअप हुए और बसेस भी काफी पिकअप हुई। हालांकि नंबर आंकड़े बहुत कम है एज कम्पेयर टू आपके अदर सेगमेंट्स के, बट काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है नंबर्स में, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स भी अब अलग अलग स्कीम्स लेकर आ रहे हैं अपने। जैसे जीरो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गया, आपको उसके लिए कोई रजिस्ट्री कॉस्ट नहीं देना पड़ता गाड़ी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल हो तो। ऊपर से जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है उसके साथ वो मर्ज करके उनको फायदा दे रहे हैं कस्टमर्स एज वेल एज यूजर्स को, तो इसके वजह से जो है काफी अभी बढ़ोतरी हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में।
1: यहाँ पर रोनेंद्र थोड़ा सा हम और समझना चाहेंगे, विशेष रूप से जो नए श्रोता हैं और ईवी गाड़ियों को लेकर थोड़े से आशंकित रहते हैं, सरकार की नीतियां विशेष रूप से उपभोक्ताओं को किस रूप में उन्हें आकर्षित करने के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं, साथ ही जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए क्या योजना है, यह यदि आप बता सकें तो मुझे लगता है कि श्रोता अधिक लाभान्वित होंगे और जो नई अपनी गाड़ी को लेकर विचार कर रहे हैं उन्हें अपना फैसला करने में सुविधा होगी।
0: सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स को जो फायदा हो रहा है वो अंडर पीएम ई ड्राइव स्कीम एज वेल एज अभी जो पीएलआई स्कीम जो लॉन्च हुई है उसमें काफी फायदा हो रहे हैं। जैसे अगर आप 50% डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड अगर मटेरियल डालते तो आपको काफी बढ़िया उसमें से गवर्नमेंट उसको आपको टैक्स रिबेट देती है ऊपर से सबसे पहले। फिर उसके बाद फिर अब जीएसटी जो 5% हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उसकी वजह से भी काफी फायदा हुआ है मैन्युफैक्चरर्स को, मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज कस्टमर्स दोनों को।
1: जी
0: उसी कारण जो है अभी जो इतना जो जंप हुआ है पिछले 5-6 महीने में, जो सेप्टेम्बर से मतलब जो 5% जीएसटी लागू किए थे उसके बाद से ही इतनी बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी अब कट करेंगे तो मैन्युफैक्चरर्स भी उसी हिसाब से अपनी गाड़ी का अपना अनुमान लगा देते हैं कि भाई इसमें अगर हमको इतना परसेंट देना है कस्टमर्स को, हम भी अपने प्राइस को इतना कर सकते हैं। तो इसके कारण जो है क्या हो रहा है कि प्राइसेस जो है काफी पहले के मुताबिक काफी अब अफोर्डेबल बनते जा रहे हैं। ऊपर से क्या कर रही है कुछ कुछ कंपनीज क्या कर रही है कि आप जो है ना आपको लाइफ टाइम बैटरी का वारंटी दे रही है, जिस कारण कस्टमर्स को भी अब ये लग रहा है कि भैया देखो अगर मैं गाड़ी 15 साल के लिए भी यूज करूंगा, चाहे 8 साल के लिए भी अगर मेरे को गाड़ी के लिए बैटरी के लिए अभी लाइफ टाइम दे रहे हैं तो मेरे लिए काफी है। क्योंकि आपने भी खुद भी आपने देखा होगा कि कस्टमर जो है 7-8 साल से ज्यादा गाड़ियां नहीं रखती हैं।
1: जी,
0: ऊपर से ये भी कर दिया है कि अभी कुछ कुछ गाड़ियों में ये कर दिया कि ओईएम्स ने क्या कर दिया कि अभी पूरे उम्र भर के लिए मतलब फॉर द लाइफ गाड़ी का बैटरी जो है वो उसको बोला कि वारंटी दे दिया उसका कि कुछ भी वेयर एंड टीयर होगा तो हम लोग जिम्मेदार रहेंगे। प्लस उसमें से और क्या हुआ है कि अगर ये भी नहीं तो उन्होंने कहा कि अगर आपको 3-4 साल बाद भी अगर आपको नहीं लगती है कि अच्छा मेरे को मैं ईवी यू नो मैं ज्यादा दिन तक नहीं रख पाऊंगा मुझे अच्छी नहीं लगी क्या नहीं, तो आपको अशॉर्ट बाय बैक ऑफर भी दे रहे हैं कस्टमर्स को। उसमें क्या होगा कि जैसे आपकी गाड़ी आपने मान लो 15 लाख की खरीद ली तो आपको अशॉर्ट बाय बैक 3 साल के अंदर आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि बोलेंगे भैया ठीक है आपने 3 साल चला ली जो गाड़ी की वैल्यू होगी मार्केट की वो हम आपको देंगे, गाड़ी आप हमें वापस कर दीजिए। तो ये कंपनीज की तरफ से अगर ऐसा ऑफर आ रहा है तो मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि यू नो इसमें तो हमारे लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, मतलब दे डोंट सी उनको नहीं लगता कि इससे कुछ उनको नुकसान होगा। तो इस कारण जो है वो नंबर जो है काफी जंप हो रहे हैं इस साल के शुरुआत से।
1: यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो नंबर निकल के आ रहे हैं गाड़ियों की बिक्री के, वह किस सेगमेंट में सबसे अधिक दिख रहा है, पैसेंजर कार में या टू व्हीलर में या थ्री व्हीलर में? आपने पहले ही बताया कि जो कमर्शियल यानी व्हीकल हैं उसमें अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम आंकड़ा है, लेकिन बाकी में क्या स्थिति है, कौन बाजार सबसे तेज गति से बढ़ रहा है?
0: सबसे तेज गति से जो बढ़ रहा है वो तो जाहिर है कि वो टू व्हीलर ही है।
1: जी
0: जो शुरू से ही मतलब टू व्हीलर जो है वो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट जब सेटअप ही नहीं थी तब से टू व्हीलर का ही पहले सबसे ज्यादा चलन चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। तो अभी भी टू व्हीलर ही है जो करीबन 2 लाख के करीब बिक रहे हैं महीने का। उसके बाद आता है थ्री व्हीलर, क्योंकि इसमें ये क्या हो रहा है कि टू और थ्री व्हीलर में जो है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और सब्सिडीज है वो कंटिन्यू चल रही है सेम टाइम से। तो चाहे फेम वन हो फेम टू हो और अभी इवन पीएम भी ड्राइव हो, उस कारण क्या हो रहा है कि टू व्हीलर जो मार्केट है और थ्री व्हीलर मार्केट है वो बढ़ते जा रहे हैं।
1: यहाँ पर यदि हम ये समझना चाहें कि इन गाड़ियों का टू व्हीलर का थ्री व्हीलर का पेनिट्रेशन महानगरों में है, छोटे शहरों में है, राज्यों की राजधानियों में है, या जो छोटे कस्बा हैं छोटे कह लें कि शहर हैं वहां भी हम थ्री व्हीलर का टू व्हीलर का विकास देख रहे हैं?
0: ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी जो है थ्री व्हीलर जो सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो आपके छोटे छोटे शहरों में भी उसका बढ़ोतरी हो रहा है अभी। और टू व्हीलर जो भी है वो महानगर के अलावा जो टीयर टू हमारे टीयर थ्री टाउन्स हैं वहां भी उनका ज्यादा चलन चल रहा है। और थ्री व्हीलर में भी इंटरेस्टिंगली जो हमारे जो कमर्शियल थ्री व्हीलर जो 1 टन के नीचे आते जो छोटा ट्रक जिसको बोलते हैं छोटा टेम्पो टाइप जो होता है वो भी बहुत सारे बिक रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है आजकल ई कॉमर्स कंपनी जो है अपने ट्रांसपोर्ट के लिए वो भी एनवायरमेंट के लिए थोड़ा बहुत अपना वो दिखा रहे हैं कि वी ऑल्सो केयर फॉर एनवायरमेंट, उस वजह से वो लोग भी ये थ्री व्हीलर या छोटा फोर व्हीलर टेम्पो जो है छोटे ट्रक से उसको अपना रहे हैं जो इलेक्ट्रिक के हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि उसकी सेल्स भी बढ़ोतरी हो रही है, जो हम L1 कैटेगरी बोलते हैं जिसको। तो इसमें क्या हो रहा है कि टू व्हीलर थ्री व्हीलर के सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है, उसके बाद आता है फोर व्हीलर जो अपने पैसेंजर व्हीकल्स हैं, वो करीबन 30,000-32,000 के करीब बिक रहे हैं हर महीने, जो कि बहुत ज्यादा आता है क्योंकि हम महीने में करीबन 4 लाख गाड़ियां बेच रहे हैं साल महीने का
1: जी।
0: तो उसमें से अगर 30-40 हजार भी अगर लोग खरीद रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल।
0: और अभी ट्रक्स और बसेस का है कि ट्रक्स का अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ट्रक्स का अभी भी कुछ कुछ टेस्टिंग फेज चल रहा है और पीएम ड्राइव में भी ट्रक्स के उसमें ज्यादा अभी लोगों का होमोलोगेशन नहीं हुआ है, इस वजह से ट्रक्स का अभी कमी है। लेकिन बसेस का ये है कि कमर्शियल बसेस और जो हमारे ट्रांसपोर्ट बसेस है जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपनी तरफ से लॉन्च कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, उसमें ये हो रहा है कि बसेस की भी अभी तादाद अभी बढ़ते जा रहे हैं स्टेट्स में, चाहे छोटे हो या बड़े हो, चाहे हमारे असम हो गया हो, महाराष्ट्र हो गया हो, आपका गुजरात हो गया हो, तमिलनाडु हो गया हो, अपने दिल्ली में आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री ने भी हमारे दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च देवी करके जो जो बसेस जो छोटे हैं जो 32 सीटर होते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वो भी इलेक्ट्रिक के रूप में निकल रहे हैं अभी, अपार्ट फ्रॉम जो बड़े बसेस हो गए JBM या टाटा अशोक लेलैंड के। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो बढ़ोतरी हो रही है वो चारों तरफ से होने जा रही है, अभी छोटे शहरों से बड़े शहरों से सब मिलके और मेट्रो सिटीज बोल लीजिए वहां से सब बढ़ के ज्यादा अभी बढ़ते जा रहे हैं।
1: यानी वास्तविक अर्थों में हम कहें तो वास्तव में हम क्रांति की दिशा में ईवी वाहन सेगमेंट में देख रहे हैं। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि जैसे हमने शिफ्ट किया था CNG की तरफ, उसके बाद हम ईवी में जा रहे हैं, अभी चार्जिंग सिचुएशन क्या महानगरों और छोटे शहरों में है और इसको लेकर सरकार की क्या नीतियां हैं?
0: सरकार ने ऑलरेडी पीएम ड्राइव के अंदर भी जो पॉलिसी लॉन्च की थी उसमें ऑलरेडी ये भी मेंशन था कि चार्जिंग स्टेशंस का भी हम लॉन्च करेंगे और स्पेशली ऑन द हाईवेज जहां पे लोगों को चाहे मतलब आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम आधा घंटा लगता है फास्ट चार्जिंग करने में, उसमें क्या होता है कि आपके 80% जो गाड़ी जो है वो चार्ज हो जाती है, सो आप अपने नेक्स्ट जर्नी में आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए भी जो ऑयल कंपनी से हमारे जैसे इंडियन ऑयल हो गए, भारत पेट्रोलियम हो गए, इन सबके साथ भी गवर्नमेंट टाई अप करके वहां पे भी अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं। उसमें क्या होगा कि अभी जो थोड़ा सा माइंड में ये रहता है कि मैं दिल्ली से अगर मैं लखनऊ जाता हूं तो मैं कितनी बार रुकूं हाईवे पे,
1: बिल्कुल,
0: तो उसके लिए अभी क्या हो गया कि अभी जो आप गाड़ी खरीदेंगे उसमें आपके साथ एप्स भी लॉन्च हो गए हैं, उस एप्स में आप ये पता भी कर सकते हैं कि जो मैं जा रहा हूं तो मेरे को कितनी बार रुकना पड़ेगा, आप किलोमीटर काउंट कर लेते हो और आपको कितनी बार चार्ज करना पड़ेगा, और ये भी दिखा देता है कि वहां पे जो चार्जर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है वो अभी खाली पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ, और ये भी कर दिया अपार्ट फ्रॉम जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है उसके अलावा ये भी कर दिया कंपनी जो कुछ कुछ कंपनीज है, आई थिंक मेरे ख्याल से ज्यादातर सारी कंपनीज है इंक्लूडिंग लग्जरी व्हीकल कंपनी जैसे मर्सिडीज हो गए, BMW हो गए, इनके ऐप में ये होता है कि उनका जो नियरेस्ट आपको जो डीलरशिप है, चाहे आपको जैसे हाईवे में सपोज आपको नहीं मिला तो आपको कैलकुलेट करके दे देगा, अगर आपको वहां नहीं मिला तो आप हमारे डीलर में जाके कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये प्रोवाइड कर देते हैं। और अभी रूरल की बात करें तो मैं कहता हूं कि रूरल में सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि चार्जिंग स्टेशन लगाने के, वहां पे आपको कोई यहां किसी से आपको आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कुछ कुछ इलाकों में दिल्ली जैसे शहरों में जैसे NCR नोएडा हो गया जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो RWs हैं वो लोग मना कर देते हैं, कभी भी केसेस आए कि उन्होंने बोला कि हम इसकी आप चार्जिंग पॉइंट लगाओगे तो इसकी वजह से बिल्डिंग में आग लग सकती है, हालांकि जो इंजीनियर्स होते हैं वो सारा चेक करके लगा के वो तभी इंस्टॉल करता है कि देख के भैया वायर में कोई कहीं भी शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगा या कभी, वो सब सेफ्टी मेजर्स लगा के करते हैं, बट फिर भी लोगों के माइंड में ही रहता है कि ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाएंगे तो कभी भी यहाँ पे आग भी लग सकती है, तो सेफ्टी हजार्ड्स की वजह से भी वो लोग काफी अभी उसमें भी क्वेश्चंस करते हैं। बट रूरल एरिया में ये होता है कि ज्यादातर सबके पास अपना अपना गाड़ी पार्किंग स्पेस होता है घर के आंगन में घर के साइड में, तो वहां उनको सबसे ज्यादा इसनेस आ रहा है कि रूरल एरिया में सबसे ज्यादा उनको अच्छा लग रहा है कि वहां पे कोई हमें किसी से आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, अपना अपना घर है, उनका मकान है, उसके साथ साथ अपना अपना चार्जिंग पॉइंट लगा के इजीली आप अवेल कर सकते हैं। स्पेशली टू व्हीलर्स में भी ऐसे हो रहा है, टू व्हीलर्स में एक तो स्वैपिंग ऑफ बैटरी ऑलरेडी है ही, और ये कि घर के साथ में आंगन में आप अपने चार्जिंग लगा सकते हैं स्कूटर को या टू व्हीलर को।
1: जी, बहरहाल हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं रोनेंद्र ईवी पूरा सेगमेंट को आगे बढ़ने में, और कब तक हम उम्मीद करें कि ये पेट्रोल या डीजल गाड़ियों के पैरेलल भले ना आए लेकिन उन्हें चुनौती देने की स्थिति में धीरे धीरे आ जाएं?
0: देखिए, चुनौती तो ऑलरेडी अभी शुरुआत हो चुकी है, जैसे कुछ कुछ कंपनीज की गाड़ियां ले लो तो आजकल जो उस सेगमेंट की गाड़ियां हैं वो आपके पेट्रोल व्हीकल के करीबन जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है, जैसे किसी में 10-20 हजार रुपए का बस फर्क होगा जो कि हमारे CNG और पेट्रोल व्हीकल में जैसे होता है या डीजल व्हीकल में होता था
1: जी।
0: तो अभी वो गैप जो है वो अभी बहुत ज्यादा क्लोज हो रहा है, और उसके बाद ये हो रहा है कि कॉस्ट जो है, जो आपका जो यूजर पैटर्न पे डिपेंड करता है कि आप कितना एसी चला रहे हो, कितने स्पीड में चला रहे हो, ये भी बहुत मायने रखता है। और जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये है कि आप सिटी में जितना चला रहे होंगे उसमें आपको ज्यादा कहीं रेंज मिल जाएगी।

0: उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें ये होता है कि आप जितनी बार ब्रेक मारोगे बैटरी भी थोड़ी बहुत चार्ज होती रहती है। तो अगर वो 200 का क्लेम करती है तो 200, 190 तक, 195 तक वो सिटी में दे ही देती है। हाईवे में फर्क इसलिए थोड़ा पड़ जाता है कि आप जैसे हाई स्पीड में चला रहे होंगे, एसी ऑन होगा आपका, तो ये होता है कि उसमें थोड़ा बहुत कम रेंज मिल सके। इसलिए सबसे ज्यादा अभी हाईवे के लिए तैयारी कर रहे हैं कि आप हाईवे में जाएंगे तो आपको कहीं दिक्कत ना हो। जैसे आप कहीं कॉफी पीने के लिए रुकते हैं आधा घंटे के लिए, आजकल 40 मिनट तो आप रुक ही लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि जब तक आप चाय कॉफी पी रहे हो तब तक आपकी गाड़ी भी चार्ज हो जाए 80%। तो ऐसा कर करके आप जो है हाईवे का जर्नी आराम से आप कवर कर सकते हो। और हाईवे में ये हो गया कि आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने भी इतने बढ़िया बढ़िया हाईवे बना दिए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती कि आपको आराम से रेंज मिल जाता है और आपको ब्रेक लेके आराम से आप तब तक अपना गाड़ी भी चार्ज कर सकते हैं। और जो गाड़ियां जो करीबन 500 किलोमीटर की रेंज दे रही है वो तो आराम से, मतलब एक तरफ की जर्नी तो मतलब जो 300 किलोमीटर होंगे 350, एक तरफ की जर्नी तो एक चार्ज में ही कवर कर लेता है। और आप जहां भी रुके होंगे तो वहां पे भी आप अगर चार्जिंग स्टेशन होगा तो वहीं पे आप चार्ज करके, आपको हाईवे में रुकने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको 350 किलोमीटर कवर करना है तो आप उसी को चार्ज करके दोबारा उस सिटी से वापस आके अपने पॉइंट में भी पहुंच सकते हैं।
1: श्रोताओं, ईवी क्रांति हो चुकी है, आप इसके सहयात्री कब बनेंगे ये फैसला आपको करना है। देश में प्रदूषण बढ़ रहा है और उसमें ईवी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। आप सभी श्रोताओं की ओर से हम अपने विद्वान विशेषज्ञ रोनेन्द्र सिंह को श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
2: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ते उपयोग और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रोनेन्द्र सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
5: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
6: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं।

0: मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार इथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nithyananda Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest of the NEET paper leak issue. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases. India has brought back 274 fugitive criminals from 36 countries between 2019 and 2026. The Minister of Home Affairs said that to strengthen action against fugitives, the government enacted the Fugitive Economic Offenders Act in 2018. It added that India has developed an integrated intelligence-led and technology-driven model to combat fugitive criminals. The ministry said that before 2014, India had extradition treaties with only 37 countries and there was also no dedicated law to deal with economic fugitives or to confiscate their assets. In Jharkhand, students protesting over alleged paper leaks in Jharkhand Public Service Commission and other recruitment examinations today demanded an inquiry by an independent panel of retired High Court judges from outside the state, saying that they no longer trust the ongoing CID investigation. The protesters have been staging an indefinite sit-in in Ranchi since 29th of July. India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce, saying such hollow exercises cannot hide reality. Briefing media New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal pointed out

0: that the real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. He added that Pakistan must be held accountable and the world should see Pakistan's hypocritical lecturing on human rights. On media interaction by former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina, the spokesperson said that the interaction has been organized by a private media entity. The Election Commission has revised the schedule of the ongoing Special Intensive Revision SIR of the electoral roll in Delhi and Maharashtra. According to the revised schedule, the house-to-house verification of booth-level officers will continue till the 17th of this month. The draft electoral roll will be published on the 24th of this month, while the final electoral roll will now be published on the 27th of October. Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandavia, today felicitated Indian athletes who returned from the Commonwealth Games 2026 after delivering historic performances in boxing, judo and para-athletics. During the felicitation ceremony held in New Delhi, the medal winners were presented cash awards of 30 lakh rupees for gold, 20 lakh rupees for silver and 10 lakh rupees for bronze. Interacting with the athletes, Dr. Mandavia asked the athletes to think beyond the playing careers and become contributors to the next generation of Indian sport. In badminton, unseeded Indian pair of Krishna Prasad Garaga and Prithvi Krishnamurthy Roy upset six-seeded C. Charo N. Ketamon and W. Thongsa Naga of Thailand 21-16, 21-18 to advance to the men's double second round at the Korea Masters Tournament in Asan today. However, India's other men's doubles pair of Achyuta Aditya Rao and Doda Varapu and Arjun Reddy Pochana lost 3-21, 10-21 to second seeds Choi Sol Gyu of Korea and Go Vee Sham of Malaysia. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। होर्मुज जलडमरू मध्य में एक और जहाज पर फिर से हमला। अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता बढ़ी। यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष में हवाई हमलों का नया दौर। दोनों पक्षों के 5-5 लोगों की मौत। मोरक्को से हजारों प्रवासियों के स्पेन के सेउटा में घुसने के बाद यूरोपीय संघ के गृह मंत्रियों ने आपातकालीन बैठक की। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जनप्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जनप्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्सटेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
2: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
1: भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यार्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। पिछली सरकारों में भगोड़ों को वापस लाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, लेकिन वर्तमान सरकार ने भगोड़ों के प्रत्यर्पण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुअरों के लिए भारत की पहली स्वदेशी MA-104 सेल लाइन आधारित जीवित क्षुणित अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन समर्पित की है। ये दुनिया भर में घरेलू और जंगली सुअरों को प्रभावित करने वाली सबसे विनाशकारी पशु बीमारियों में से एक है। मंत्रालय ने कहा कि यह वैक्सीन पशु चिकित्सा अनुसंधान में एक बड़ी सफलता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त है। वैक्सीन 8 सप्ताह से अधिक आयु के स्वस्थ सुअरों के लिए अनुशंसित है और इसे 1 मिलीलीटर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। इसके बाद प्राथमिक टीकाकरण के 14 दिन बाद बूस्टर खुराक दी जाती है। इस अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव राजीव रंजन सिंह उपस्थित थे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका ईरान संघर्ष का समाधान खोजने के लिए राजनयिक प्रयास तेज किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच बातचीत और प्रस्तावों के आदान प्रदान में सहयोग देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कतर ओमान के मध्यस्थता प्रयासों का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है और उसे उम्मीद है कि आने वाले घंटों या दिनों में समझौता हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है। इसकी पुष्टि करते हुए अधिकारियों ने कहा कि मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच संदेश पहुंचाना और मसौदा समझौतों का आदान प्रदान करना जारी रखे हुए हैं। इस बीच अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने आशा व्यक्त की कि प्रगति शीघ्र हो सकती है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए ईरान के साथ आज या कल तक समझौता कर सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इस बीच ब्रिटिश समुद्री निगरानी एजेंसी ने बताया कि होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय एक मालवाहक जहाज पर अज्ञात मिसाइल से हमला हुआ। इस हमले में एक चालक दल का सदस्य लापता हो गया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने यह कहा कि घटना तब घटी जब पोत ओमान के अल खसाब से लगभग 23 मील उत्तर पूर्व में था। रूस के मॉस्को क्षेत्र में यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 5 लोग मारे गए और 10 घायल हो गए। वहीं यूक्रेन में रूस के हवाई हमलों में 5 नागरिक मारे गए। मॉस्को क्षेत्र में अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन हमलों के कारण चेखोव जिले के नोवोसेल्की औद्योगिक क्षेत्र में आग लग गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वायु रक्षा बलों ने रात भर में यूक्रेन के 320 ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन में अधिकारियों ने बताया कि रूस के हमलों में माइकोलाइव में एक बुजुर्ग महिला, सूमी क्षेत्र में 3 नागरिक और खार्किव क्षेत्र में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। मोरक्को से स्पेन के सेउटा क्षेत्र में हजारों प्रवासियों के अराजक रूप से प्रवेश के बाद यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने सीमा सुरक्षा पर एकजुट कार्रवाई का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ के गृहमंत्रियों ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपातकालीन वार्ता की। इस वार्ता में स्थिति पर चर्चा की गई और एक साझा दृष्टिकोण पर समन्वय स्थापित किया गया। आयरलैंड के न्याय, गृह मामलों और प्रवासन मंत्री जिम ओ कैलाघन ने कहा कि यूरोपीय संघ एकजुट है और संकट के दौरान स्पेन का समर्थन करने के लिए तैयार है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को लिखे पत्र में सुश्री उर्सुला फॉन डेर लायन ने संकट से निपटने के लिए उनकी

सरकार द्वारा किए गए त्वरित प्रयासों की सराहना की। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रूपये के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रूपये की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसा एनगा और चालो एम्पोन चारो एन कितामोर्न को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। यह प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। होर्मुज जलडमरू मध्य में एक और जहाज पर फिर से हमला। अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता बढ़ी। यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष में हवाई हमलों का नया दौर। दोनों पक्षों के 5-5 लोगों की मौत। मोरक्को से हजारों प्रवासियों के स्पेन के सेउटा में घुसने के बाद यूरोपीय संघ के गृहमंत्रियों ने आपातकालीन बैठक की। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आ गए हैं हम वो हसीन मुस्कान लेकर, आ गए हैं हम वो हसीन मुस्कान लेकर, अपनी वही खुशनुमा पहचान लेकर। स्वागत करते हैं आपका तहे दिल से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज का हर श्रृंगार अर्पणा के साथ। वक्त हो गया है 10:31:17। तो चलिए शुरू करते हैं हर श्रृंगार की एक म्यूजिकल जर्नी जो 30 मिनट तक आपके साथ चलेगी। रफी और सुमन कल्याणपुरी की आवाज में फिल्म जब जब फूल खिले से ये शुरुआत होती है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।

ये प्यार और मोहब्बत होती तो ऐसी ही चीज है, आप जितना भी ना ना ना ना करते रहें, अगर वो होनी है तो हाँ हाँ हाँ कब हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता। सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वक्त के साथ खामोश जरूर हो जाती है। सच्ची मोहब्बत मिले भले ही ना, लेकिन हम उसे कभी भूल नहीं सकते हैं। अगला गीत लता और किशोर की आवाज में, फिल्म का नाम है जूली।

दोस्तों जरा सोचिए और ये बताइए कि प्यार मोहब्बत हो या रिश्ते निभाने की बात हो तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिश्तों को निभाना, वादों को बताना या फिर भरोसा। अब एक छोटी सी बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। वादों की जरूरत नहीं होती उन रिश्तों में, वादों की जरूरत नहीं होती उन रिश्तों पर जहां निभाने वाले पर भरोसा होता है। तो क्या जरूरी है, वादे निभाना जरूरी है या भरोसा जरूरी है? अगला गीत एक बार फिर से लता जी और किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है आ गले लग जा।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

10:47 और 28 सेकेंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर श्रृंगार, और हर श्रृंगार में आज अर्पणा आपके साथ है।

दिल तो दिल है, दिल का क्या है, अब इस दिल को क्या कह सकते हैं। तुमने देखे होंगे हजारों ख्वाब, मैंने तो बस तुमको देखा है। उनके हजारों ख्वाब और आप उनके लिए कितने खास हैं, या वो आपके लिए कितने खास हैं, ये तो आप ही जानते होंगे। फिलहाल अगला गीत शब्बीर कुमार और आशा जी की आवाज आखिरी गुलाम फिल्म से होगा। और इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। समाचारों के बाद 11:10 पर होगा पुनः प्रसारण मार्केट मंत्रा का। 11:10 पर आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा का पुनः प्रसारण और 11:40 पर होगा आप सभी के लिए गीत मेरे मनमीत। संग्रह होंगी आपके मैं अर्पणा। फिलहाल इस गीत का आनंद लीजिए। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz सही है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार एके भट्टाचार्य. एके भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं निहारिका भुवानिया.
0: Before we move on to the stories, let's first take a look at the headlines for this evening. Benchmark domestic indices snap 4-day gaining streak. Sensex drops over 200 points. Nifty settles at 24,615. Global crude oil prices decline, and Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee to announce repo rate decision tomorrow.
1: घरेलू शेयर बाजार में पिछले चार सत्रों से जारी खरीदारी का सिलसिला आज थमा. सेंसेक्स 200 अंक से अधिक लुढ़का. निफ्टी 24,615 दर्ज हुआ. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम नीचे आए और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति कल रेपो दर फैसले के बारे में घोषणा करेगी.
0: And Manoj, I feel before we move forward, we should also make something very important known to our listeners, that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. And we further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment before taking any financial decision.
1: और आइए अब शुरू करते हैं घरेलू बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में लगातार चार दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला आज थम गया और प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 210 अंक यानी 0.27% घटकर 78,429 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक यानी 0.64% नुकसान के साथ 24,615 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% घाटे में रहा, जबकि खरीदारी से स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में 0.2% की वृद्धि देखने को मिली.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन नेगेटिव जोन टुडे, स्नैपिंग अ 4-डे गेन.

0: falling streak ahead of RBI monetary policy meet decision. The Sensex shed 210 points or 0.27% to close at 78,429. The Nifty dropped 159 points or 0.64% to settle at 24,615. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index fell by 0.3%, while the Small-Cap 100 Index gained 0.2%. Earlier, the markets opened on a mixed note following the implementation of the new closing auction session, which was introduced yesterday. The Nifty and Sensex witnessed divergent movements during the first half of the trading session. However, both indices remained under pressure in the latter half. The Nifty eased significantly in the final minute after the conclusion of the closing auction session.
1: आइए नजर डालते हैं सेंसेक्स पैक में सम्मिलित 30 कंपनियों के प्रदर्शन पर। आज 30 में से 16 कंपनियों के शेयर लाभ के साथ बंद हुए। सबसे अधिक बढ़त वाली कंपनियों में ट्रेंट और बजाज फाइनेंस के शेयर सम्मिलित रहे। इनमें 1.1% की वृद्धि देखने को मिली। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स को 0.9% का और टाटा स्टील को 0.6% का मुनाफा हुआ। उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रही हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके शेयर 1.7% नीचे आकर बंद हुए। एनटीपीसी को 1.6% और एचडीएफसी बैंक के भाव 1.5% नीचे आकर बंद हुए।
0: With that, let's also take a look at the sectoral indices on the BSE. 19 out of 28 sectors ended in negative zone. Among the top underperformers, insurance plunged 2.1%, realty as well as housing finance shed 1.2%, and utilities dropped 0.6%. In contrast, capital goods gained 1%, metal rose 0.9%, and industrials added 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,128 companies declined, 2,108 advanced and 196 remained unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 4 पैसे कमजोर हुआ, 95.30 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। एक ही भट्टाचार्य जी, सबसे पहले हम आज की जो गतिविधि रही है, शेयर बाजार की हलचल रही है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। खासतौर से हमने पिछले कुछ सत्रों से, विशेष रूप से कल भी देखा और आज भी देखा, कि अंतिम क्षणों में बाजार में अपेक्षा के बदलाव काफी तेज रह रहा है। क्या प्रमुख कारण रह रहे हैं इसके?
2: देखिए, जो मार्केट का जो ट्रेंड जो है, वो मैं समझता हूँ कि पिछले कई दिनों में, बल्कि कई सप्ताहों से, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो कल का जो मार्केट जो था, उसमें जो चढ़ाव हुआ था, उसमें उसका कारण भी इंटरनेशनल था, क्योंकि ट्रंप साहब का ऐलान में एक आशा था कि शायद ये एग्रीमेंट, सीज फायर एग्रीमेंट अब तय हो जाएगा, उसीलिए कल मार्केट चढ़ा रहा। पर आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि उसमें दो प्रश्न उठ रहे हैं। एक तो है कि कितनी जल्दी ये सीज फायर एग्रीमेंट रेजोल्यूशन होगा इसका, और दूसरा है कि क्योंकि उसमें डाउट से क्रूड ऑयल प्राइस में इंक्रीज हुआ है, दाम बढ़ गए हैं उससे। और तीसरी बात जो है, डोमेस्टिक फैक्टर एक आया है उसमें, कि जो LIC जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो जिसका लिस्टिंग हुआ था 1-2 साल पहले, उसका जो गवर्नमेंट के पास अभी भी उसका 96.5% शेयर सरकार के पास है, और सरकार ने आज से चालू तय किया है कि करीबन 6.5% और जो LIC का शेयर, वो मार्केट में उसका वितरण ऑफर फॉर सेल में जाएगा। उससे काफ़ी LIC के ऊपर भी प्रेशर आया, क्योंकि उनका दाम करीबन 7% नीचे आ गया, और जिस प्राइस में वो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं शेयर्स, उस प्राइस में दाम वो आ गया है, और उसको खरीदने के लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी थोड़ी बहुत बिकवाली भी हुई है। सो ये विभिन्न कारणों के लिए मैं आज की तारीख में जो स्टॉक मार्केट में जो

0: जो उतराव चढ़ाव जो हुआ है इसका कारण ये है। और आधे घंटे में जो अंतिम आधे घंटे में जो हो रहा है वो जैसे आपने भी कहा कि एक जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है उसका, हालांकि वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए है सिर्फ, पर उसका एक प्रभाव ओवरऑल ट्रेडिंग में भी आया है।
1: So, do you identify any other triggers behind today's market movement in the benchmark indices, first of all? And second, perhaps now's the right time to simplify the closing auction session for our listeners. So, if you can briefly explain it in one or two lines for our listeners to understand that better.
0: Well, you know, as far as what impacted the stock market today, I've already said, and it's essentially a combination of external factors and domestic factors. External factors being little uncertainty over how the West Asian crisis will get resolved. And the domestic factors, there were two essentially. One was the offer for sale being starting for LIC, which is a huge big company, stocks. So 6.5% stocks going to be floated. That has put some pressure on the market. The second factor, domestic factor, is that tomorrow the Monetary Policy Committee will come out with its stance or rate decision. Although the market expects that there will be no rate increases, there is some sort of nervousness that is gripped the market. So these are the factors that influence the market developments today. As far as the closing auction session is concerned, this is a new device which is to ensure fair price discovery. That is one of the key objectives of the closing price auction system. Other is also to prevent market manipulation. And what used to happen earlier was that in the last 30 minutes of trading, there was a lot of fluctuations take place because the system was to arrive at the futures and option pricing on the basis of average volume-based price. So last 1 or 2 minutes, there will be a lot of orders will be placed at a certain price to influence, because the volumes will be high since it is a volume based. Now that has been changed and it is an auction driven, and a cap has been kept that the price to be determined will have a minus plus minus of 3%. So you are not seeing so much of fluctuation. There is transparent price discovery. And this benefits particularly the passive index funds. So it doesn't really impact the people, investors, the retail investors who are coming into the market. It is largely aimed at addressing the day traders' concerns and convenience.
2: आपने बहुत अच्छी तरह जो ये एक नई कह लें कि प्रथा शुरू हुई है बाजार में, यह कुल मिलाकर बाजार में जो एक अनिश्चितता थी और मैनिपुलेशन हो रहा था उसको रोकने की ये कवायद है। इसमें जो नीलामी की प्रक्रिया होगी क्लोजिंग ऑक्शन, वो क्या दर्शाती है और उसका निर्णय कौन लेगा, कौन से पक्ष उसको तय करेंगे?
0: ये जो स्टॉक मार्केट जो है उनको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को उनको तय करना पड़ेगा। उनको ये जो आधे घंटे में जो सारी जो ट्रेड जो आएंगी उनकी एक एवरेज बनाया जाएगा। उसमें पहले जो वॉल्यूम बेस्ड जो एक एवरेज प्राइस निकालते थे वो अब वॉल्यूम बेस्ड नहीं होगा, और दामों की जो तय होगी वो 3% ऊपर या नीचे के अंदर ही रहेगा। इसका मतलब जो पहले जो होता था कि बहुत जो मार्केट में सारा दिन एक प्राइस गया और लास्ट मिनट में वो प्राइस बदल के उसको इन्फ्लुएंस करता था मार्केट को, वो होना मैं समझता हूं कि वो कम हो जाएगा। और ये एक सुधार के तौर से, रिफॉर्म के तौर से एक काफी अच्छा एक कदम है।
2: जी, यहाँ पर हम ये भी समझना चाहेंगे कि बाजार में 4 दिनों से हम तेजी देख रहे थे, आज भी यदि हम देखें तो सेंसेक्स पैक की 30 में से 16 कंपनियां लाभ के साथ बंद हुई हैं। यदि हम

0: नेशनल स्टॉक को देखें तो वहां पर मिड कैप 100 इंडेक्स में गिरावट है, लेकिन स्मॉल कैप 100 इंडेक्स थोड़ा सा बढ़त के साथ गया है, बंद हुआ है। तो कुल मिलाकर ये क्या दर्शा रहा, जो यानी बाजार है उसकी
1: बाजार
0: जी?
1: बाजार में सही प्रश्न किया आपने। बाजार में जो जो सेक्टोरल स्टोरी जो है वो ज़्यादा लगता है कि इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि मिड कैप में थोड़ी बहुत दुर्बलता नज़र आई आज, पर
0: जी
1: स्मॉल कैप में
0: मजबूती दिखी।
1: मजबूती दिखी। आईटी में बहुत धक्का पहुंचा, क्योंकि आईटी में जो एआई और जॉब्स एंड अर्निंग्स के ऊपर जो लग रहा है, और जो ब्रॉड सेक्टर्स जो हैं अगर आप देखें, क्योंकि कॉरपोरेट अर्निंग्स जो अभी तक जो आई हैं, अगर आप देखें तो कॉरपोरेट अर्निंग्स उतनी खराब नहीं आ रही है।
0: जी।
1: हालांकि शुरुआती दौर में बहुत अच्छी थी, पर पिछले एक हफ्ते में अच्छी नहीं आ रही है। पर जो कॉरपोरेट अर्निंग्स की कैसी जो डायरेक्शन होगी उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि अगले कई दिनों में इसका रुख इसके ऊपर निर्भर करेगा। और ऑफ कोर्स जो कल का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो निर्णय होगा
0: जी
1: उसके ऊपर भी मार्केट थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस तो जरूर होगा।
0: जी
2: वेरी वेल। एंड विद दैट लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट स्टोरी फॉर दिस इवनिंग। भारती एयरटेल लिमिटेड टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल ईयर। द कंपनीज कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज ओवर 18% ईयर ऑन ईयर टू 58,539 करोड़ रुपीज। The firm's consolidated net profit attributable to the owners increased over 37% to 8,167 crore rupees on an annual basis. And with that, it's also time to take a look at our story about crude oil. Global crude oil prices dropped today. Brent crude was trading 2.6% down at $81.57 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 3.3% lower at $77.65 per barrel when reports last came in.
0: खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार बनाए रखा। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलपीजी और एलएनजी की शत प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित की गई। नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये जानकारी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उपलब्ध कराई। उन्होंने बैठक के दौरान सदस्यों को देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों के बारे में जानकारी दी। श्री पुरी ने कहा कि इन उपायों में आयात करने वाले देशों की संख्या 27 से बढ़कर 41 पहुंच गई है। घरों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई। श्री पुरी ने यह भी कहा कि इन सब के अलावा उत्पाद शुल्क में कटौती, तेल विपणन कंपनियों से समर्थन और निरंतर निगरानी ने उपभोक्ताओं को वैश्विक मूल्य और आपूर्ति में अस्थिरता से और अधिक सुरक्षा प्रदान की।
2: Here's something that I would like to know on the movement of crude oil. So we've all been well aware of the West Asia crisis. Now, for an ordinary Indian, where does this crisis eventually show up? Is it petrol and diesel? Is it the LPG cylinder? Is it electricity costs, inflation, or is it elsewhere? And second, what is the typical lag between an international oil price shock and its impact on Indian consumers?
1: Well, to answer your last question first, the impact is immediate almost. If there is an international crude oil price increase, that happens, then the oil companies are immediately impacted, and their cost of operations take a hit. Now, what has happened in India is that the government has stepped in. The government has stepped in many ways. What we have seen since 28th February, when the problem erupted on West Asia and the Strait of Hormuz, and you have to recognize that almost 45% of India's total oil supplies come through the Strait of Hormuz. So now, when 45% of almost half your oil come from the Strait of Hormuz, and that is blocked, international crude oil prices have also gone up. So what the government did was applied and adopted

0: a graded approach. Initially, the government decided to reduce the duties, the excise duty on petrol and diesel, and so that there is no need for the oil companies to pass on that extra hit, mm-hmm. the additional the cost increase that they had to incur. So that was number one. So as a result, what happened was then the first few weeks there was no price increase, but there was a price of increase of around 8 rupees per liter, 10 rupees per liter actually, for both petrol and diesel. Now that happened after about a month and a half, but at the same time what we did was that the sourcing of our petrol and diesel, that was diversified in a sense that earlier we bulk of our oil was coming from West Asia. We diversified our source. Russia once again became our number one supplier of crude oil. Mm-hmm. Russia used to be number three or number four. Early, mainly it used to be West Asia. Then we also started getting more oil from Venezuela and even the US. LNG supplies came from different countries other than Oman and UAE. So in short, we diversified our import sources. Along with that, we increased our domestic manufacturing of LPG so that the supply bottlenecks and shortages feared could be addressed. So in this way, we handled the crisis of oil.
1: यहाँ पर एक एक और सवाल कह लें कि हम श्रोताओं के हित में समझना चाहेंगे कि तेल के दाम बढ़ते हैं तो हमारी जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं एक और तो उसका असर पड़ता है लेकिन हम जो तेल के प्रोडक्ट का निर्यात करते हैं उससे किस रूप में अर्थव्यवस्था को सहायता मिलती है या क्या परिणाम निकल के आता है
0: ये फॉरेन ट्रेड में जरूर परिणाम मिलता है क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं उससे हमारा विदेशी मुद्रा की आय होती है और दूसरी बात यह है कि जो हम तेल जो हमारे देश में भी जो खनन करते हैं जो बनाते हैं उसको वो उसको हम इंटरनेशनल प्राइस में हम उसको बाहर बेच सकते हैं तो एक तरफ फॉरेन ट्रेड में हमारी एक्सपोर्ट्स में इसका इसकी सुविधा आती है और दूसरी तरफ हमारी जो डोमेस्टिक जो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो डोमेस्टिक हम से बना के हम जो डोमेस्टिक जो डिमांड जो है उसको भी हम मीट कर सकते हैं
2: Very well, and with that, let's take a look at the next story. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies, and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money, and improve the handling of digital fraud cases.
1: यहाँ पर समझना चाहेंगे कि सरकार का जो ये कदम है, इसके क्या आयाम निकलेंगे और किस रूप में फर्जीवारे को रोकने में या जो म्यूल अकाउंट हैं उनकी रोकथाम में सहायता मिलेगी?
0: देखिए ये जो कदम जो है, ये जो हमारे देश की जो सबसे ऊँची जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उनके ऑर्डर से आया है। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक डायरेक्टिव दिया है जिससे कि जो म्यूल अकाउंट जो हैं जैसे कि आपके अकाउंट में जैसे जनधन के बाद बहुत लोगों के पास बहुत सारे अकाउंट आ गए उन अकाउंट में लोग पैसे कम हैं आपके पैसे भी नहीं हो तभी वो अकाउंट हैं तो उन अकाउंट की जो दुरुपयोगिता बढ़ जाती है बहुत लोग उन म्यूल अकाउंट्स को जो उनके अंदर कोई पैसे नहीं है पर उसका एक अकाउंट होल्डर है और वो अकाउंट है उसका दुरुपयोग करते हैं और जो फर्जी काम आपके किसी से चोरी करना या आप जो ड्रग्स की जो पैसे होते हैं टेररिज्म के पैसे होते हैं वो आपके जो अकाउंट होल्डर हैं उनको वो जानते भी शायद नहीं होंगे पर उनकी अकाउंट से का इस्तेमाल करके वो बैंकिंग सिस्टम से उसका फाइनेंसिंग होता है
1: जी, जी.
0: तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के से कड़ी शब्दों में ये कहा है कि उसको एक नया सिस्टम ऐसा चालू करना है जिससे कि जो ये म्यूल अकाउंट सिस्टम जो है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक रोकथाम हो सके और उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर बनाने का एक डायरेक्टिव दिया गया है
1: जी.
2: And our next story links to the mention of RBI's monetary policy meeting, which begins tomorrow. The meeting of Reserve Bank's Monetary Policy Committee began yesterday. My apologies. RBI Governor

0: Jay Malhotra is slated to announce the policy statement tomorrow. We have a report on the same.
1: In the last Monetary Policy Committee meeting, the Reserve Bank of India kept the key repo rate unchanged at 5.25% for the third time in a row. At the same time, RBI revised its GDP growth forecast for the current financial year downward by 30 basis points BPS to 6.6%. And raised its CPI inflation projection by 50 BPS to 5.1%, highlighting growing concerns over inflation risk. RBI's primary mandate is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. In the current context, India's retail inflation rose to 4.38% year-on-year in June, slightly above RBI's target of 4%, but still within its mandated tolerance band of 2% to 6%. With geopolitical tensions persisting and crude oil prices remaining volatile, the RBI's policy decision will be closely watched. Ayushi Singh for Market Mantra.
2: Kya aasar hain kal ki ghoshna mein? Kya bazaar ki apekshaen aur kya
3: apekshaen hain? Ye hain ki जो रेट जो है, जिसे हम रेपो रेट कहते हैं, जिस रेट से बैंकों को जो कॉस्ट ऑफ मनी होती है उसमें कोई परिवर्तन शायद ना हो, पर इम्पॉर्टेंट चीज जो मार्केट जो देखेगी और या समझने की कोशिश करेगी कि आरबीआई की स्टेटमेंट के अंदर इकोनॉमी की जो ग्रोथ की जो आउटलुक जो है या इन्फ्लेशन की जो फोरकास्टिंग है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन आया है कि नहीं. जैसे आयुषी सिंह जी ने कहा कि पहले अभी तक जो इन्फ्लेशन जो फोरकास्ट जो है वो अभी भी टॉलरेंस बैंड के अंदर है.
2: जी, जी.
3: क्या इस वक्त इस कल की जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में आरबीआई अपना इन्फ्लेशन का आउटलुक में ऐसा परिवर्तन करता है जिससे कि वो बैंड के ऊपर जाए और ग्रोथ का जो असेसमेंट है रेट के हिसाब से मैं समझता हूं कि ज्यादा कोई अपेक्षा ही नहीं है, पर आरबीआई की असेसमेंट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन में कैसी होगी उसके ऊपर बहुत उनकी हमारी सबकी आंखें लगी रहेगी.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर, जहां दक्षिण कोरिया का कोस्पी आज 1.6% लाभ के साथ बंद हुआ. जापान के निक्की 225 सूचकांक में 0.3% की वृद्धि हुई है.
0: एंड लेट्स टेक अ लुक एट गोल्ड एंड सिल्वर. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.8% up at 1,44,170 rupees per 10 grams, while silver was also trading 2.1% higher at 2,21,740 rupees per kilogram a short while ago.
2: आइए श्रोताओं आपको हम लिए चले मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी सोने और चांदी के मूल्यों में आज समाचार तैयार किए जाने तक तेजी दिख रही थी. अगस्त अनुबंध वाले सोने का मूल्य 1% बढ़त के साथ 1,42,551 रुपए प्रति 10 ग्राम पर समाचार तैयार किए जाने तक कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध यानी सितंबर में आपूर्ति वाली चांदी भी 2% बढ़त के साथ 2,21,448 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से एके भट्टाचार्य जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे.
3: नमस्कार. थैंक यू. धन्यवाद.
0: थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे मिस्टर भट्टाचार्य. एंड बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस स्नैप 4-day गेनिंग स्ट्रीक, सेंसेक्स ड्रॉप्स ओवर 200 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,615, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन, एंड Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee to announce repo rate decision tomorrow. With that, it's a wrap on today's Market Mantra. We'll see you in the next one. Take care.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। पहले जो गीत आपके लिए लेकर आई हूं उनके बारे में बता दूं, सबसे पहला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में, शंकर जयकिशन का संगीत है, फिल्म का नाम है चोरी चोरी। इसके बाद आप सुनेंगे दिल्ली का ठग फिल्म से गीत, किशोर कुमार और आशा जी की आवाज है, संगीत होगा रवि का। और साथ ही वक्त भी मिला लें, 11:41 और 20 सेकंड हो चुके हैं। यह है गीत मेरे मनमीत, संग है आपके अर्पणा।

0: एनसीआर ईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: एनसीआर ईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

शैलेंद्र का लिखा गीत, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध ये गीत अनाड़ी फिल्म से अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला गीत जो है उसे संगीतबद्ध किया है सलिल चौधरी ने, गीत लिखा है राजेंद्र किशन ने और आवाज होगी लता मंगेशकर तलत महमूद की। फिल्म का नाम है छाया। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पना को दे इजाजत, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मांगी है। यह राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जायेगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर एक से दो दिन में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाजों के निकलने के बाद कीमतों में और कमी आ सकती है। इसका असर ऊर्जा के साथ साथ उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादों और औद्योगिक गैसों पर भी पड़ेगा। अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण अमरीका का अंतिम लक्ष्य है, जबकि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना तत्काल प्राथमिकता है। इस बीच कतर ने पुष्टि की है कि अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के प्रयास जारी हैं। दोनों पक्षों के बीच संभावित समझौते के मसौदे पर बातचीत चल रही है ताकि क्षेत्र में तनाव को और बढ़ने से रोका जा सके। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि इसमें हर किसी के हिस्से में कोई ना कोई कहानी जरूर आती है। कभी मुस्कुराहटों से भरी हुई, तो कभी इंतजार से सजी हुई, तो कभी किसी की याद में चुपचाप सिमटी हुई। जी हाँ, मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही होती है। कभी अल्फाज में बयां हो जाती है, तो कभी खामोशियों में कुछ कह जाती है। और यही छोटे छोटे एहसास हमारी जिंदगी को खास बना देते हैं। और इन्हीं एहसासों को, अनकही बातों को, दिल छू लेने वाले लम्हों को जब सुरों में और गीतों में पिरोया जाता है बड़ी खूबसूरती के साथ, और हम सजा लाते हैं गीतों के माध्यम से, तो चलिए आगाज करते हैं बॉबी फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे आवाज दी है शैलेंद्र सिंह ने।

कभी कभी प्यार को आवाज की जरूरत नहीं होती, कई रिश्ते बिना पुकारे भी दिल तक पहुंच ही जाते हैं। शिकायतें होती हैं, हल्की सी नाराजगी भी होती है, लेकिन अगर मोहब्बत सच्ची हो तो एक खामोशी के बाद भी हजार अल्फाज खामोशी में ही बयां हो जाते हैं। और इन्हीं मीठे एहसास और प्यार भरी नोकझोंक को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयां करता हुआ अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। कहते हैं कि कुछ रिश्ते बनते नहीं, वो पहले से ही लिखे होते हैं और ये बात महसूस होती है। दो अलग अलग राहें, दो अलग अलग सपने और फिर एक ऐसा मोड़ जहां दोनों का सफर एक हो जाए। शायद यही प्यार की सबसे खूबसूरत बात है, जहां मैं और तुम का फासला मिटकर हम हो जाता है।

कभी कभी जिंदगी में यूं भी होता है कि चलते चलते राहें अचानक अलग हो जाती हैं, फासले बढ़ जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सच्चा प्यार दूरियों से कभी नहीं मिटता। कुछ रिश्ते बिछड़कर भी दिल में वैसे ही बसते हैं जैसे पहली मुलाकात की कोई मीठी याद। जुदाई का दर्द, याद की कसक और मोहब्बत की गहराई को बेहद खूबसूरती से एक दिल ही समझ सकता है।

0: रिश्तों में कभी प्यार होता है तो कभी रूठना मनाना भी। कई बार नाराजगी बस जबान तक रहती है, लेकिन दिल चाहता है कोई रोक ले, कोई मना ले। मोहब्बत की यही मीठी अदा रिश्तों को और भी ज्यादा खास बना देती है।
1: तो हम चलते हैं।

इसी गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। 1:10 पर गीत सुहाने में होगी हमारी और आपकी एक बार फिर से मुलाकात। और अब सुरभि को दीजिए इजाजत, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जायेगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर 1 से 2 दिन में होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाजों के निकलने के बाद कीमतों में और कमी आ सकती है। इसका असर ऊर्जा के साथ साथ उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादों और औद्योगिक गैसों पर भी पड़ेगा। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूर औलैया पर हुए हमले की निंदा की है। हमले के बाद पोत डूब गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमनी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होगा। रखरखाव के कारण हर सोमवार उद्यान बंद रहेगा। प्रवेश निःशुल्क होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। केरल, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिन में ऐसी ही स्थिति रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कल राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रूपये पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रूपये की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house. This bill amends the Registration of Births and Deaths Act 1969 to prevent delays and encourage timely registration of births and deaths. If a birth or death is reported to the registrar between 1 and 2 years late, it requires the approval of a district, subdivisional or executive magistrate for registration. The Lok Sabha also passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 yesterday. With this, the lower house was also adjourned for the day. The Supreme Court has directed the central government to develop a pilot project linking fuel sales to valid third-party motor insurance, proposing that uninsured vehicles be denied fuel. Justices Sanjay Karol and Prashant Kumar Mishra noted that nearly 56% of vehicles on Indian roads are uninsured, calling the situation shocking. The court directed the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the Centre to pilot automatic number plate recognition, that is ANPR-based insurance verification, to identify uninsured vehicles and improve compliance with the Motor Vehicles Act. The court also asked the centre to launch pilot projects on selected national highway corridors to replace conventional toll plazas with automatic vehicle detection systems to reduce congestion and improve traffic flow. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MSV Fazlnoor Olia, which sank in the Red Sea off the coast of Yemen yesterday. The Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It stated that the Indian Embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities to ensure the crew's safety and security. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. Expressing concern over the ongoing attacks on commercial shipping in the region, the ministry emphasized that such targeting must end. Election Commission has revised the schedule of the ongoing Special Intensive Revision, that is SIR, of the electoral roll in Delhi and Maharashtra. According to the revised schedule, the house-to-house verification by booth-level officers will continue till the 17th of this month. The draft electoral roll will be published on the 24th of this month, while the final electoral roll will now be published on the 27th of October. Andhra Pradesh Chief Electoral Officer Vivek Yadav held an all-party meeting yesterday at the State Secretariat in Amravati. He distributed soft copies of the draft electoral rolls for all 175 assembly constituencies published on the 31st of last month. The draft roll, prepared with July 1st as the qualifying date, lists over 3.72 crore electors, including service voters. India has brought back 274 fugitive criminals from 36 countries between 2019 and 2026. The Ministry of Home Affairs said the government enacted the Fugitive Economic Offenders Act in 2018 to strengthen action against fugitives. It added that India has developed an integrated, intelligence-led and technology-driven model to combat fugitive criminals. India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce, saying such hollow exercises cannot hide reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Radhi Jaiswal pointed out that the real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. He added that Pakistan must be held accountable and the world should see Pakistan's hypocritical lecturing on human rights. Union Minister of State for Rural Development Dr. Pema Sani Chandrasekhar has reviewed the progress of Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushal Yojana 2.0 and key digital reforms in New Delhi. During the meeting yesterday, it was emphasized that all possible measures needed to be taken for timely completion of training and placement as per the targets allocated under the Yojana. In badminton, unseeded Indian pair Krishna Prasad Garg and Prithvi Krishnamurthy Roy upset 6 seeds Chloe Mbon, Croy Kittamon and Vorapol Thongsanga of Thailand.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत खूब कहा है किसी ने कि मेरे साथ तुम भी दुआ करो, मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा ना हो। मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा ना हो, कहीं और ना हो ये हादसा, कोई रास्ते में जुदा ना हो। मेरे घर से रात की सेज तक, मेरे घर से रात की सेज तक वो एक आंसू की लकीर है, जरा बढ़ के चांद से पूछना, वो इसी तरफ से गया ना हो, कहीं और ना हो ये हादसा, कोई रास्ते में जुदा ना हो। मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा ना हो। वो फरिश्ते आप ही ढूंढिए कहानियों की किताब में, जो बुरा कहें ना बुरा सुने, कोई शख्स उनसे खफा ना हो, कहीं और ये हादसा ना हो, कहीं रास्ते में कोई जुदा ना हो। मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा ना हो।

0: अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गजल की पलकें सवार लूं, अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गजल की पलकें सवार लूं, मेरा लफ्ज़ लफ्ज़ हो आईना तुझे आईने में उतार लूं। कई अजनबी तेरी राह के मेरे पास से यूं गुजर गए, जिन्हें देख कर ये तड़प हुई तेरा नाम लेकर पुकार लूं। अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गजल की पलकें सवार लूं, मेरा लफ्ज़ लफ्ज़ हो आईना तुझे आईने में उतार लूं।
1: तू तुम्हें
2: हाँ
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है
1: कह

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। 1:22 और हो गए हैं पूरे 34 सेकंड। बात खूब लिखा है किसी ने कि मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती न मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर इसके बाद मुझे कोई अजनबी न मिला। खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही न मिला। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, खुदा से इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही न मिला।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। खुदा से रोज तुमको मांगता हूँ, मेरी चाहत इबादत हो गई है। वो चेहरा चांद है, आंखें सितारे, जमी फूलों की जन्नत हो गई है। ये दुनिया खूबसूरत हो गई है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, चले भी आओ कि मुद्दत हो गई है। खुदा से रोज तुमको मांगता हूँ, मेरी चाहत इबादत हो गई है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है।

कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की खूबसूरत शाम हो जाए, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जले जब शाम हो जाए।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, पलकें भी चमक उठती हैं सोते में हमारी, आंखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते।

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म

0: तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। यह बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दो दिन की इस बैठक में 3 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श होगा। अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता होने पर 1 से 2 दिन में होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खाड़ी में फंसे सैकड़ों जहाजों के निकलने के बाद कीमतों में और कमी आ सकती है। इसका असर ऊर्जा के साथ साथ उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादों और औद्योगिक गैसों पर भी पड़ेगा। भारत ने लाल सागर में यमन के तट के पास भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूर औलैया पर हुए हमले की निंदा की है। हमले के बाद पोत डूब गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर बनाए हुए है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमनी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। केरल, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिन में ऐसी ही स्थिति रहेगी। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होगा। रखरखाव के कारण हर सोमवार उद्यान बंद रहेगा। प्रवेश निःशुल्क होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The Lok Sabha already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house. This bill amends the Registration of Births and Deaths Act 1969 to prevent delays and encourage timely registration of births and deaths. If a birth or death is reported to the registrar between 1 and 2 years late, it requires the approval of a district, subdivisional or executive magistrate for registration. The Lok Sabha also passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 yesterday. With this, the lower house was also adjourned for the day. The Supreme Court has directed the central government to develop a pilot project linking fuel sales to valid third-party motor insurance, proposing that uninsured vehicles be denied fuel. Justices Sanjay Karol and Prashant Kumar Mishra noted that nearly 56% of vehicles on Indian roads are uninsured, calling the situation shocking. The court directed the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the Centre to pilot automatic number plate recognition, that is ANPR-based insurance verification, to identify uninsured vehicles and improve compliance with the Motor Vehicles Act. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MSV Faiz Noor Olia, which sank in the Red Sea off the coast of Yemen yesterday. The Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It stated that the Indian embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities to ensure the crew's safety and security. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. Expressing concern over the ongoing attacks on commercial shipping in the region, the ministry emphasized that such targeting must end. An Air India flight AI-2379 operating from Phuket to Delhi yesterday experienced brief in-flight turbulence, resulting in a momentary change in altitude. The aircraft landed safely in Delhi and all 137 passengers and 8 crew members disembarked safely. 13 passengers and 4 crew members sustained injuries and were taken to the hospital for medical evaluation. Air India confirmed that there have been no serious injuries as of now. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has stated that ethanol is a big opportunity for the farming sector, provided its policy is farmer-centric and the correct price of the crop reaches the farmer directly. During a meeting with the delegation of the All India Kisan Coordination Committee held in New Delhi yesterday, Mr. Chauhan listened to all the suggestions from farmer leaders and assured them that the government will seriously consider their views on ethanol. He added that ethanol will strengthen both the country's energy security and farmers' economic well-being. In Sri Lanka, heavy rains have triggered floods and mudslides in tea-growing mountainous regions, leaving at least 7 people dead and forcing the closure of some schools. Over the past 2 days, heavy downpours have flooded homes, fields and roads across many parts of the country, with the central mountainous areas being the worst hit, according to the government's Disaster Management Center. Its spokesperson Pradeep Kodipilli reported that at least 5 people died after being buried in mudslides that overran 2 houses in that central region, while 2 others died in floods. 3 additional people have been injured. He added that 291 houses have been damaged and nearly 3,500 people have been evacuated. India Meteorological Department IMD has issued a red color warning for very heavy to extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya for today. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar and parts of Northeast India during the next 2 days. Similar weather conditions are expected over Kerala, Mahe, Rajasthan, Tamil Nadu, Puducherry and Uttar Pradesh during the next 2 to 3 days. The Met Department also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, Karaikal, Karnataka, Jharkhand, Odisha and Andaman and Nicobar Islands for today. In badminton, unseeded Indian pair Krishna Prasad Garg and Prithvi Krishnamurthy Roy upset 6th seed Kloempon Kroyekitamon and Warapol Thongsak Enga of Thailand to advance to the men's double second round. And that is the end of this news bulletin.

रात सुरमई लेकर एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ, आपके बीच सुरभि। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। तो चलिए आपको सुनवाने जा रहे हैं सबसे पहला गीत, फिल्म है मुद्दत और आवाज मोहम्मद अजीज और आशा भोसले की है।

कहते हैं कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें इंसान को खुशियां देती हैं, लेकिन दिल को सुकून अक्सर मोहब्बत से ही मिलता है। जब किसी अपने का साथ हो तो हर लम्हा खास लगता है, और जब वही साथ ना हो तो हर खुशी भी अधूरी महसूस लगती है।

कभी कभी ये दिल बिना किसी आहट के मचलने लगता है। किसी की एक मुस्कान, एक नजर या एक छोटी सी मुलाकात, अचानक उसका हर ख्याल उसी के इर्द गिर्द समटने लगता है। शायद ये वही पल होता है जब एहसास होता है कि ये दिल किसी की मोहब्बत में अब गिरफ्तार हो गया है और डूबने लगा है।

और चलिए रात सुरमई में आपको डॉन फिल्म का ही गीत सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या खूब कहा किसी ने कि सौ खुलूस बातों में सब करम ख्यालों में, सौ खुलूस बातों में सब करम ख्यालों में, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। रात तेरी याद ने दिल को

सुन ली जो खुदा ने वो दुआ तुम तो नहीं हो, दरवाजे पे दस्तक की सदा तुम तो नहीं हो। महसूस किया तुमको तो गीली हुई पलकें, भीगे हुए मौसम की अदा तुम तो नहीं हो। इन अजनबी राहों में नहीं कोई भी मेरा, किसने मुझे यूं अपना कहा तुम तो नहीं हो।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अब सुरभि को दीजिए इजाजत और आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक स्वतंत्र पैनल द्वारा जांच की मांग की और कहा कि उन्हें अब चल रही अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य सरकार जांच को सीआईडी को सौंपकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय लेनदेन का आरोप लगाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच की मांग दोहराई। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 2 दिन की इस बैठक में 3 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श होगा। इनमें रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उद्योग, कॉपीराइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और सांस्कृतिक संपत्तियों की वापसी तथा संस्कृति, जलवायु और सतत विकास शामिल हैं। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। ये प्रतियोगिता आज से 9 अगस्त तक अमेरिका के ओरेगन के यूजीन हेवर्ड फील्ड में आयोजित होगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इस बार विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 147 देशों के 1800 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुडा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house. This bill amends the Registration of Births and Deaths Act 1969 to prevent delays in and encourage timely registration of births and deaths. If a birth or death is reported to the registrar between 1 and 2 years late, it requires the approval of a district, subdivisional or executive magistrate for registration. The Lok Sabha also passed the Appropriation No. 3 Bill 2026. With this, the lower house was also adjourned for the day. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MSV Faiz Noor Olia, which sank in the Red Sea off the coast of Yemen yesterday. The Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It stated that the Indian Embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

मुमकिन नहीं है कि सब कुछ मिल जाए इस एक जिंदगी में, मुमकिन नहीं है कि सब कुछ मिल जाए इस एक जिंदगी में, जितनी चाहते हैं उसमें तो कई जिंदगियां लगेंगी, पर चाहत यही है और आगे भी रहेगी, पर चाहत यही है और आगे भी रहेगी कि पूरी हों सभी चाहते इसी एक जिंदगी में। 3:19 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

लता मंगेशकर जी की आवाज में कभी रात दिन हम दूर थे। रहते हैं उदास बिना किसी बात के, रहते हैं उदास बिना किसी बात के, उदासी का यह मंजर मेरी समझ में नहीं आया। उलझे हैं खुद ही बेकार की उलझनों में, उलझे हैं खुद ही बेकार की उलझनों में, वरना किसी ने मुझे कहां सताया। 3:27 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

बने रहने दीजिए कुछ अरमान अधूरे भी इस जिंदगी में, बने रहने दीजिए कुछ अरमान अधूरे भी इस जिंदगी में, सभी अरमान पूरे यहाँ कौन ही कर पाता है। हो गए जो पूरे सारे अरमान, हो गए जो पूरे सारे अरमान, तो फिर जिंदगी जीने का मजा कहाँ आता है। 3:40 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

की जान लोगी क्या इरादा है। हमको तो बर्बाद किया है और

कुछ ऊपर कुछ नीचे भी चलती है ये जिंदगी है, कभी एक सी नहीं चलती है। उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं इस जिंदगी में, आराम आराम से ही सही, बस ये जिंदगी के साथ चलते रहो, तब जाकर ये जिंदगी संवरती है।

चाहते हो खुद के लिए सम्मान, चाहते हो खुद के लिए सम्मान तो कुछ सम्मान दूसरों का भी करना सीख लो। अकड़े रहते हो हर जगह, अकड़े रहते हो हर जगह, कभी कभी कहीं झुकना भी सीख लो। 3:52 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग

0: नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक स्वतंत्र पैनल द्वारा जांच की मांग की और कहा कि उन्हें अब चल रही अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य सरकार जांच को सीआईडी को सौंपकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय लेनदेन का आरोप लगाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच की मांग दोहराई। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आज से भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 6 अगस्त तक चलेगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। इस दौरान उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होगा। रखरखाव के कारण हर सोमवार उद्यान बंद रहेगा। प्रवेश निःशुल्क होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। केरल, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिन में ऐसी ही स्थिति रहेगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। ये प्रतियोगिता 5 से 9 अगस्त तक अमेरिका के ओरेगन के यूजीन हेवर्ड फील्ड में आयोजित होगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इस बार विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 147 देशों के 1800 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house. This bill amends the Registration of Births and Deaths Act 1969 to prevent delays and encourage timely registration of births and deaths. The Lok Sabha also passed the Appropriation No. 3 Bill 2026. With this, the lower house was also adjourned for the day. The Supreme Court has directed the central government to develop a pilot project linking fuel sales to valid third-party motor insurance, proposing that uninsured vehicles be denied fuel. Justices Sanjay Karol and Prashant Kumar Mishra noted that nearly 56% of vehicles on Indian roads are uninsured, calling the situation shocking. The court directed the Insurance Regulatory and Development Authority of India and the Centre to pilot automatic number plate recognition, that is ANPR-based insurance verification, to identify uninsured vehicles and improve compliance with the Motor Vehicles Act. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel MSV Faiz Noor Aulia, which sank in the Red Sea off the coast of Yemen yesterday. The Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It stated that the Indian Embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities to ensure the crew's safety and security. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. Expressing concern over the ongoing attacks on commercial shipping in the region,

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 4:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा।

कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। आइए शुरू करते हैं मोहम्मद रफी जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत।

दिन रात उलझनों के बारे में सोचोगे तो फिर उलझते ही चले जाओगे। दिन रात उलझनों के बारे में सोचोगे तो फिर उलझते ही चले जाओगे। सब कुछ छोड़कर बैठो जरा सुकून से कुछ पल। सब कुछ छोड़कर बैठो जरा सुकून से कुछ पल। धीरे धीरे देखना खुद को सुलझा हुआ पाओगे। 4:19 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

उड़ना भले ही सीख लो आसमान में सबसे ऊपर, उड़ना भले ही सीख लो आसमान में सबसे ऊपर, पर नीचे अपनी जमीन का भी ख्याल रखना। आना ही पड़ेगा एक दिन जमीन पर तुमको नीचे, आना ही पड़ेगा एक दिन जमीन पर तुमको नीचे, सारी जिंदगी कोई हवा में नहीं रहता। 4:25 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

मोहम्मद रफी जी की आवाज में ना जा कहीं अब ना जा। रात तो हर रोज एक जैसी ही होती है, रात तो हर रोज एक जैसी ही होती है, इंतजार तो हमें उस सुबह का रहता है जिसके साथ आज दिन कुछ नया होगा। 4:32 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

हासिल तो बहुत कुछ हुआ है इस जिंदगी से हमें, हासिल तो बहुत कुछ हुआ है इस जिंदगी से हमें, पर हम रोना उसी का रोते हैं जो मिला नहीं। और निकल कर देखा जब घर से बाहर, और निकल कर देखा जब घर से बाहर, तब पता चला जो हमें मिला है वो बहुतों को आज तक मिला ही नहीं। 4:39 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही, बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही, सारी पूरी हो जाएं ये जरूरी तो नहीं। सुकून ए जिंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा, सुकून ए जिंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा, क्योंकि ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं।

4:56 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं और वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास और सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान सहयोग, नवाचार और स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक में भाग लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने कल विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और वित्तीय लेनदेन का आरोप लगाते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच की मांग की दोहराई। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गारागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में 36 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेगी। ये प्रतियोगिता 5 से 9 अगस्त तक अमेरिका के ओरेगन के यूजीन हेवर्ड फील्ड में आयोजित होगी। भारतीय दल में 23 पुरुष और 13 महिला खिलाड़ी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। 5:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। करते रहिए कोशिशें हजारों, एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता। लगातार प्रयास करते रहने से एक न एक दिन जरूर है हासिल होता। पर हासिल हो जाए कुछ तो उस पर घमंड मत करिए, पर हासिल हो कुछ तो उस पर घमंड मत करिए, क्योंकि ये वो घमंड ही है जो हमसे सब कुछ है वापस ले लेता। 5:11 हो चुके हैं, कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और फिर से मैं ही हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम।

कुछ गलत काम करने से लाख गुना बेहतर है कुछ भी ना करना। कुछ गलत काम करने से लाख गुना बेहतर है कुछ भी ना करना, क्योंकि गलती से की गई गलतियां तो सुधारी जा सकती हैं, पर जानकर किए गए गलत कामों को सुधारना अक्सर मुश्किल होता है।

मेहरबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर ही रखें। जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, ये रास्ते आपको कहीं नहीं पहुंचाते। 5:25 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।